हम स्वागत करते हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 10 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। समाचारों के तुरंत बाद सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को। कृपया कुछ पल कीजिए प्रतीक्षा।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के

0: 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारत।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, विदुर नीति शतकम के अनुसार सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्षते। अर्थात सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है और कुल की रक्षा चरित्र द्वारा होती है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। झरोखा के ठीक बाद सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 255।

सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी आज प्रसारित की जाएगी, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक ये कार्यक्रम सुन सकेंगे सुबह 8:30 से। सुबह 9:30 से सुनिएगा आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गायिका गीता दत्त पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, इसके अंतर्गत फिल्म निर्देशक लेखिका नाटककार पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग सुन सकेंगे। संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से रंग तरंग, दिन में 12:05 से यादों की महफिल सुरीला सफर, इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 1 बजे से। दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी।

सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम सुन सकेंगे दोपहर 2:30 से, सखी सहेली दोपहर 3 बजे से, शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत सुनेगा सेहतनामा, इसके अंतर्गत प्रोस्टेट और अन्य बीमारियां, इस विषय पर डॉक्टर उमेश ओझा से जो यूरोलॉजिस्ट हैं से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छायागीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5 बजे से, तराने नए पुराने शाम 5:30 से सुनिएगा। झरोखा शाम 6:30 से, 6:35 से संध्या रंजन, शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला, शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, इसके अंतर्गत आज की फिल्म है दो बदन। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनेगा हास्य नाटिका पड़ोसी का नाता, लेखन दिलीप सिंह का, निर्देशन कुमुद नागर का।

रात 8:15 से चित्रलोक आपके लिए ये कार्यक्रम सुन सकेंगे रात 9 बजे से। रात 9:30 से आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात 10 बजे से छाया गीत, आलेख एवं स्वर जयंत पात्रिकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। रात 10:30 से आपको सुनवाएंगे ढलती जाए रात, और रात 11 बजे से रंग तरंग। आपको याद दिला दें, सुबह 9:30 से आज के फनकार आप सुनेंगे, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गायिका गीता दत्त पर, और रात 9:30 से जो आज के फनकार सुनेंगे वो केंद्रित होगा अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 255।

रावण के साथ श्रीराम की कुटी के समीप पहुंचकर मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लेता है। उस अत्यंत विचित्र और सुंदर हिरण को देख सीता जी के मन में उसकी खाल प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो उठती है। उनके आग्रह करने पर श्रीराम उनकी रखवाली का दायित्व लक्ष्मण को सौंपकर स्वर्ण मृग के आखेट को निकल पड़ते हैं। जिन प्रभु की महिमा का बखान करने में वेद भी असमर्थ हैं, वही एक कपट मृग के पीछे भाग रहे हैं। भागता छिपता मृग रूपी मारीच उन्हें बहुत दूर ले जाता है। अंत में श्रीराम तीक्ष्ण वाण से मारीच की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। मन ही मन श्रीराम का स्मरण करते हुए मारीच घोर गर्जन के साथ लक्ष्मण को पुकारता है। विपत्ति सूचक पुकार सुनकर सीता जी के मन में आशंका उत्पन्न होती है। वह लक्ष्मण की अनुनय विनय की अवहेलना करके उन्हें बड़े भाई की सुधि लेने के लिए जाने को बाध्य कर देती है।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन गाए बजाए जाने वाले रागों की चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रही हैं मशहूर गायिका आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की आठवीं और अंतिम कड़ी में आज सुनिए राग श्री।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं को आरती अंकलीकर का प्यार भरा प्रणाम। श्रोताओं, हम इस संधि प्रकाश रागों की चर्चा के अंतिम चरण में आ पहुंचे हैं। इसके पहले मैं आप श्रोताओं से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये मेरी खुशनसीबी समझती हूं कि मैं आज यहां आके हमारे अभिजात संगीत के बारे में थोड़ी कुछ बातें आपको बता सकी, और इसी श्रृंखला का ये आखिरी भाग जो है रागश्री, बहुत ही खूबसूरत। और ये ऐसा राग है कि जिसके स्वर राग पूर्या धनाश्री से मिलते जुलते हैं, बिल्कुल मिलते ही हैं, लेकिन इसका चलन बिल्कुल अलग है और इसका रंग बिल्कुल अलग है पूर्या धनाश्री से। इस राग में भी रिखब और धैवत कोमल हैं, मध्यम तीव्र है। रागश्री जो है संधि प्रकाश राग, पूर्वी ठाट से इसका जन्म होता है। इसकी जाति ओडव संपूर्ण है और इसका वादी स्वर है रिखब और संवादी है पंचम। जब पंचम और रिखब एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं तब रागश्री खिलता है। इसका आरोह अवरोह इस प्रकार है।

0: अभी आप सुन रहे थे सायंकालीन संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला की आठवीं और अंतिम कड़ी। इसे प्रस्तुत किया प्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर ने। तबला संगति ओंकार गुलवाड़ी की थी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सुधीर नाइक। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज सुप्रसिद्ध गायिका गीता दत्त जी की पुण्यतिथि है। आज भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त जी के द्वारा ही गाए गए कुछ चुनिंदा गीत। प्रोग्राम की शुरुआत में लीजिए सुनिए गीता दत्त द्वारा गाया हुआ गीत हावड़ा ब्रिज फिल्म से। कमर जलालाबादी के हैं बोल, ओपी नैयर की है तर्ज।

हमारी अगली पेशकश गीता दत्त और साथियों की आवाजों में लाजवंती फिल्म से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं एसडी बर्मन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त और सखियों की आवाजों में लाजवंती फिल्म का गाना। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बोले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
5: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
6: जी।
5: जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण।

0: ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्फिडेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए गीता दत्त की आवाज में हिल स्टेशन, फिल्म का गाना। SH बिहारी हैं, गीतकार और संगीतकार हैं हेमंत कुमार।

आपने ट्यून की है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में CID फिल्म का गाना, जहां निसार अख्तर हैं गीतकार और संगीतकार हैं ओपी नैयर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन,
6: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
7: मुबारक हो सबको समाए सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम,
8: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
9: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए शैलेंद्र का लिखा और SD बर्मन का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है गीता दत्त की, फिल्म का नाम मुनीम जी।

Don't let them. No, don't let him touch me.

0: चुपके में तू हमारा हो जया अपना हमें बना अब नदी दुखा किसी की जान से न खेल रिया नारी दे दया तू ले ले यूं नहीं तो चुपके में अनाड़ी अनाड़ी अनाड़ी रे।
1: और अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गीता दत्त और लता मंगेशकर की आवाजों में पंचायत फिल्म से शकील नुमानी हैं गीतकार और इकबाल कुरैशी हैं संगीतकार।

अभी हमारे श्रोता विविध भारती के कार्यक्रमों को सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:30 हुए हैं, लेकर हाजिर हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

दैनिक कार्यक्रम नमस्ते रोहतास सुनने वाले सभी श्रोताओं को स्वागत है हमारे आकाशवाणी के सासाराम केंद्र। श्रोताओं, स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज इस अंक के साथ है आपका रेडियो दोस्त विनोद। शुरुआत करते हैं इस सुविचार से। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलने वाला मनुष्य चाहे जितना जतन कर ले, वह कभी सच्ची खुशी और हंसी नहीं प्राप्त कर सकता। ये कथन है महात्मा बुद्ध का।

श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्ते रोहतास को देते हैं गति और नजर डालते हैं आज के इतिहास पर।

ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 20 जुलाई वर्ष का 201वां दिन, लीप वर्ष में यह 202वां दिन है। साल में अभी और 164 दिन शेष हैं। 20 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नज़र डालें तो आज ही के दिन 1997 को तिस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत बांग्लादेश में समझौता हुआ था, और आज ही के दिन 1999 को स्पेन में प्रथम बौद्ध स्तूप का उद्घाटन किया गया था, और आज ही के दिन 2017 को रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। अब हम नज़र डालेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जो आज के दिन इस दुनिया में पहला कदम रखा यानी जन्म लिया। इसमें पहला नाम आ रहा है 1989 को जन्मे अरुणिमा सिन्हा का, जो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला है। उनका जन्म आज ही के दिन 1989 को हुआ था, और आज ही के दिन जन्म हुआ था 1950 को नसीरुद्दीन शाह का, जो भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध तथा प्रतिभाशाली अभिनेता रहे। नसीरुद्दीन शाह का जन्म आज ही के दिन 1950 को हुआ था, और आज ही के दिन जन्म हुआ था 1929 को राजेंद्र कुमार का, वो भी हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध सदाबहार अभिनेता हैं। उनका भी जन्म आज ही के दिन 1929 को हुआ था, और आज के दिन जन्म हुआ था 1921 को शामता प्रसाद का, जो भारतीय प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार एवं तबला वादक रहे। उनका भी जन्म आज ही के दिन 1921 को हुआ था। अब नज़र डालते हैं निधन हुए व्यक्तियों पर, उन व्यक्तियों पर जो आज के दिन इस दुनिया को छोड़ चले गए और अपना पदचिन्हों का निशान देकर इस दुनिया से अलविदा कह गए। इसमें पहला नाम आ रहा है 1920 को गुलाम मोहम्मद शाह का निधन हुआ, जो जम्मू और कश्मीर के भूतपूर्व 8वें मुख्यमंत्री रहे। उनका जन्म आज ही के दिन 1920 को गुलाम मोहम्मद शाह का हुआ था, और आज ही के दिन जन्म हुआ था, माफ कीजिएगा, निधन हुई थी आज ही के दिन 1920 को निधन हुई थी शारदा देवी का, जो रामकृष्ण परमहंस की जीवनी संगनी थी। उनका निधन आज ही के दिन 1920 को हुआ था, और आज ही के दिन निधन हुआ था 1965 को बटुकेश्वर दत्त का, जो भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक रहे। बटुकेश्वर दत्त, उनका भी निधन आज ही के दिन 1965 को हुआ था, और आज ही के दिन निधन हुआ था 1972 को गीता दत्त का, जो प्रसिद्ध पार्श्व गायिका रहीं। उनका भी निधन आज ही के दिन 1972 को गीता दत्त का हुआ था, और निधन हुआ था

असम राज्य के प्रथम सहयोगी और असम में कांग्रेस के संस्थापकों में से एक चंद्रनाथ शर्मा का उनका निधन आज ही के दिन 1922 को हुआ था और आज ही के दिन निधन हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक रहे बालकृष्ण भट्ट का, उनका निधन आज ही के दिन 1914 को हुआ था। और निधन हुआ था भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी का, उनका भी निधन आज ही के दिन 1966 को हुआ था, जो भारत की पहला महिला न्यायाधीश बनी थी। और निधन हुआ था आज ही के दिन केरल के पूर्व राज्यपाल एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का, उनका निधन आज ही के दिन 2019 को हुआ था।

ये रहा आज का इतिहास। अब कार्यक्रम में सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है, फिल्म है एक फूल चार कांटे।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम में अभी आपने सुना लता मंगेशकर को फिल्म एक फूल चार कांटे से। श्रोताओं, अब नजर डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। खरीफ मौसम 2026-27 के दौरान रोहतास जिले के किसानों को उर्वरकों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला कृषि पदाधिकारी प्रभाकर कुमार ने जानकारी दी है कि जिले में यूरिया सहित अन्य सभी आवश्यक उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और विभिन्न कंपनियों द्वारा लगातार आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। किसी भी प्रकार की उर्वरकों के लिए शिकायत के लिए जारी किए गए हेल्प नंबर इस प्रकार है। किसानों की सुविधा के लिए विभाग ने जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी किए हैं। किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तुरंत इस नंबरों पर दी जा सकती है। जिला कृषि पदाधिकारी का नंबर है 9031644282। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का नंबर है 9031644371। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी विक्रमगंज का नंबर है 9031644370 और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी डेहरी का नंबर है 9431644373। तो नंबर इस प्रकार है। इसके अलावा विभाग ने जिला कृषि नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर 9471458498 और दूरभाष संख्या 06184226072 भी जारी किए हैं, जहां किसान कार्यालय अवधि सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल ने रेल परिचालन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंडल ने 18 जुलाई को 24 घंटे के अवधि में 439 मालगाड़ियों का इंटरचेंज कर चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 का अपना सर्वोच्च प्रदर्शन दर्ज किया है। नवनिर्मित 200 बेड वाले मॉडल सदर अस्पताल के लिए साउंडलेस जनरेटर सेवा की निविदा कड़े पात्रता मापदंडों के कारण विवादों में आ गई है। आरोप है कि निविदा में जनरेटर सेवा का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य किए जाने के कारण अधिकांश इच्छुक एजेंसी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकी। प्रतिस्पर्धा समिति होने के कारण अंततः पूरी निविदा प्रक्रिया को ही रद्द करना पड़ा। कैमूर जी

जिले में गेल इंडिया की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुकी है। मोहनिया से गुजरने वाली गेल की मुख्य पाइपलाइन से भभुआ और मोहनिया के घरों तक पाइपलाइन नेचुरल गैस पीएनजी पहुंचाने का जिम्मा इंडियन ऑयल को मिला है। पिछले दो वर्षों से वन विभाग की एनओसी में आ रही अड़चनों के कारण यह परियोजना रुकी हुई थी, लेकिन अब सभी तकनीकी बाधाएं दूर होने के बाद कार्यों में तेजी लाई गई है।

सूर्यपुरा प्रखंड के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। प्रखंड मुख्यालय स्थित राज राजेश्वरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल विद्यालय का वर्चुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय से किया।

बिहार में 551 सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में डिजिटल माध्यम के जरिए इस विद्यालयों का राज्यव्यापी उद्घाटन किया। इसी क्रम में रोहतास जिले में सभी 19 प्रखंडों में भी एक एक सरस्वती विद्या निकेतन का उद्घाटन हुआ। जिले के 19 प्रखंडों में खुले आदर्श विद्यालय। कैमूर पहाड़ी की चोटी पर स्थित ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किला के विकास की वकायदा तेज हो गई है। रविवार को डीएम दीपक कुमार मिश्र, एसपी रोशन कुमार और डीडीसी विजय पांडे के साथ जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किला और रोहितेश्वर धाम मंदिर का दौरा किया। भ्रमण के दौरान डीएम ने किला परिसर में स्थित देवी मंदिर और बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी की। किला परिसर में आदिवासी महिलाओं ने डीएम का पारंपरिक स्वागत किया। डीएम ने कहा कि प्रकृति के गोद में बसा रोहतासगढ़ किला अत्यंत भव्य और अद्भुत है। उन्होंने घोषणा की कि इस किले को सड़क मार्ग और रोपवे के जरिए मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। साथ ही रेहल से चौरासन मंदिर तक 15.5 यानी 15.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हर हाल में कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है।

इसी कड़ी में सुन लेते हैं एक और खूबसूरत सा गाना, नितिन मुकेश, शाबिर कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और एस सिंह की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म है हमसे ना टकराना।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में पहुंचते हुए नजर डालते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज लगभग सभी अखबारों ने इस खबर को प्राथमिकता दिया है और अपने अपने तरीके से सचित्र छापा है। प्रभात खबर इस खबर को लिखता है, बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर बनेगी यूनिवर्सिटी। इसी खबर को दैनिक जागरण अपने तरीके से लिखा है, बेगूसराय में दिनकर के नाम पर बनेगा विश्वविद्यालय। इस खबर को प्राथमिकता दिया है दैनिक भास्कर ने भी और अपने तरीके से सचित्र छापा है। लिखता है, दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय, सिमरिया से भागलपुर तक मरीन ड्राइव बनेगा। इसी खबर को हिंदुस्तान अपने तरीके से लिखता है बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय खुलेगा। और अखबारों ने खबर को प्राथमिकता देते हुए पहले पन्ने पर जगह दिया है और हिंदुस्तान लिखता है कि विधानमंडल का मानसून सत्र आज से, 13 विधेयक पेश होंगे। इस खबर को भी सचित्र छापा है पहले पन्ने पर जगह देते हुए। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली नदी जोड़ योजना, बागमती बूढ़ी गंडक जुड़े। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना रविवार को शुरू हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेलवा मीनापुर लिंक कैनाल का उद्घाटन किया। ये खबर है दैनिक भास्कर से। दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को प्राथमिकता देते हुए अपने पहले पन्ने पर जगह दिया है और लिखता है, बिहार में चार्जिंग की टेंशन नहीं, 4000 पेट्रोल पंपों पर मार्च 2027 तक लगेंगे 10000 चार्जिंग पॉइंट। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन रखने वाले के लिए अच्छी खबर है, अब सफर के दौरान बैटरी डिस्चार्ज होने की टेंशन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मार्च 2027 तक राज्य के करीब 4000 पेट्रोल पंपों पर 10000 से अधिक चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। इससे हर दिन 2 लाख से अधिक ईवी आसानी से चार्ज हो सकेंगे। अगली खबर लेते हैं दैनिक जागरण से। दैनिक जागरण लिखता है, नदी जोड़ो परियोजना विकसित बिहार के संकल्प को करेगी साकार। ये खबर है दैनिक जागरण से ही। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्राथमिकता देते हुए पहले पन्ने पर जगह दिया है और लिखा है, वंदे मातरम के अपमान

मान पर होगी 3 वर्ष का जेल। सांस्कृतिक राष्ट्रवादी को हमेशा अपने राजनीतिक एजेंडे में लेकर चली भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में महत्वपूर्ण बदलाव करने का तैयारी में है। संशोधन विधेयक में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी शामिल किया गया है। अगली खबर लेते हैं प्रभात खबर से। प्रभात खबर लिखता है 2532 यानी 2532 पदों पर सहायक प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए इंटरव्यू, आज से 8034 अभ्यर्थी होंगे शामिल। राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से संविदा आधारित सहायक प्रधानाध्यापक भर्ती प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार सोमवार यानी आज से शुरू होगा। आयोग ने सभी 6 विषयों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी कर शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के कॉल लेटर समर्थ पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आयोग ने संशोधन अधिसूचना जारी करते हुए प्रत्येक विषय में 422 पद निर्धारित किए हैं। इस प्रकार कुल 2532 संविदा सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र विषयों के लिए 40,000 से अधिक आवेदन मिले थे। श्रोताओं, सरसरी नज़र से ले लेते हैं कुछ मौसम समाचारों के बारे में। पटना समेत 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई, जिसमें उसम और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विज्ञान विभाग केंद्र पटना ने अगले 24 घंटे के लिए पटना सहित 14 जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास से दीजिए अनुमति अपने रेडियो दोस्त विनोद को। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

अभी हमारे श्रोता आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने वाले हैं अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात, थोड़ी देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
1: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा

0: में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से ये अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
3: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
4: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी, और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
3: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी।

0: किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मॉल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमेरिका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
1: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार आठवीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
2: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
3: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
4: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
5: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में

0: भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर की राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अभी हमारे श्रोता आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात सुना। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं एक देशभक्ति संगीत। इस संगीत को हमने लिया है कभी खुशी कभी गम फिल्म से। कविता कृष्णमूर्ति और उषा उतुफ ने इसे गाया है। समीर के बोल हैं, संदेश शांडिल का संगीत है। फिल्म है कभी खुशी कभी गम।

अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति और उषा उत्तुफ का, फिल्म था कभी खुशी कभी गम। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:20 हुए हैं। सुनते हैं आप श्रोताओं के भेजे गए पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी।

स्वागत है कार्यक्रम पसंद आपकी में। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना मुकेश कुमार और सुमन कल्याणपुरी की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, नौशाद का संगीत है, फिल्म है साथी। सुनना चाहा है आप सबों ने। इस गाने के लिए हमारे पास पत्र आया है छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दंतरेगी से, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा, ये श्रोता हैं छत्तीसगढ़ दंतरेगी से, भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मणिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरा से दुर्गा राम शाहू। इस गाने की ख्वाहिशमंद श्रोता हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से, आप हैं प्रभाकर जोंघले और आरती जोंघले। ये श्रोता हैं थाना चेनारी ग्राम पोस्ट खुरमाबाद रोहतास से, रामजी प्रसाद चौरसिया, लक्ष्मण प्रसाद चौरसिया, सोनू कुमार चौरसिया, पिंकू कुमार चौरसिया, सन्नी कुमार चौरसिया और भरत बाबू। आप सब उन्हें सुनना चाहा है साथी फिल्म का ये गाना मुकेश कुमार और सुमन कल्याणपुरी।

कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म मेरा गांव मेरा देश से लता मंगेशकर के बोल हैं, आनंद बख्शी का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, गाया ही से लता मंगेशकर ने, सुनना चाहा है आप सबों ने। फूटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, लल्लू पंडित, मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से भाई फटफटिया जा, गुंजन परासर, अमित, सुमित, छोटू, बीके सूर, गनैया। ये श्रोता हैं जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राज, आलम शेख, सवाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से आप हैं वकील राही, फिरोज आलम, नाज परवीन और अर्श बाबू। ये श्रोता है ग्राम पोस्ट खुरमाबाद वार्ड नंबर 7 से अंजनी देवी, उषा देवी, मुन्नी देवी, प्रियंका कुमारी, बेबी देवी, प्रियंका देवी, कुसुम देवी और पिंकू भैया। आप सबों ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में खूबसूरत सा गीत मेरा गांव मेरा देश फिल्म से।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: अगले गाने के लिए हमारे पास पत्र आया है, गोकुल चौक गंगा जला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्कीवाली, फलनाजा, नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार और गजेंद्र कुमार निराला। ये श्रोता हैं नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमन अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, बैचू शेख और चीना शेख। कलियर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकाहत परवीन, नूर महल महसौल से हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबिया नाज, रहान बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू। ये श्रोता है थाना मुड़गढ़नों का रोहतास से, मुना भाई मंसूरी, नजबुन निशान, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शहबाज। ये श्रोता है इसी गाने के ख्वाहिशमंद, ताजपुर मुरवा से आप हैं भाई कारी रायकारी, श्रीमती मीना कारी, पुंज राज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिक्की, रिंकी, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्र, ढोली सकरा से आप हैं जयंत कुमार वैरागी। आप सबों ने सुनना चाहा है सनम बेवफा फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में, सावन कुमार के बोल हैं, महेश किशोर का संगीत है, फिल्म है सनम बेवफा।

कार्यक्रम पसंद आपकी की अगली और आखिरी पेशकश आप सबों की फरमाइश पर। आप सब श्रोता सुनना चाहते हैं पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म है पत्थर के सनम, सुनना चाहे आप सबों ने। तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन यूसुफुद्दीन फजान लल्ला फरहान लल्ला अजीज़ भाई अब्दुल बाबा अनजाना। ये श्रोता हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा। इसी गाने की ख्वाहिशमंद श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेहराज जहां आप सब हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। ये श्रोता हैं क्वात से शेख जफर हसन राकेश रोशन। और आप हैं पठान टोली कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत परवीन, सदफ आरजू, साहिल अरमान, शमा परवीन, सादिया तस्नीम और आलिशा। वाराणसी उत्तर प्रदेश से किशोर श्रीवास्तव, पिंकी श्रीवास्तव और संध्या श्रीवास्तव। तो लीजिए सुनिए अपने मन पसंद का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पत्थर के सनम से।

0: फिल्म पत्थर के सनम के इसी गीत के साथ ही दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त विनोद को, पत्र आधारित कार्यक्रम पसंद आपकी से। नमस्कार, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:45 हुए हैं। अगला प्रसारण सुनते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार थोड़ी देर में।
1: कुछ अपनाने योग्य बातों का ध्यान रखें। बारिश से पहले पशुओं की पशुशाला के छत की मरम्मत कर दें ताकि पानी न टपके। पशुशाला की खिड़कियों को खुली रखें तथा गर्मी और उमस से बचने के लिए पंखों का प्रयोग करें। साफ सफाई का ध्यान रखें और पानी एकत्र न होने दें।
2: नियमित अंतराल पर कीटनाशक का भी छिड़काव करें। जानवरों को ज्यादा शारीरिक थकावट न होने दें और बार बार धूप में न लाएं।
1: कोशिश करें कि पशु को बाल्टी से साफ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। दाने का भंडारण नमी रहित जगह पे करें। संक्रामक रोगों के विरुद्ध अपने पशुओं का टीका करण करवा ले।
3: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा,

और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र भी आज से 5 दिवसीय सत्र के दौरान 13 विधेयक पेश किए जाएंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर आज पाटलिपुत्र स्टेशन से 1100 श्रद्धालु निःशुल्क सोमनाथ धाम की यात्रा पर रवाना होंगे। और मौसम विभाग ने आज कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, समस्तीपुर और वैशाली समेत 14 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि 25 दिनों के सत्र में 19 बैठकें होंगी।
1: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। 24 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। हमारी संवाददाता ने बताया कि मॉनसून सत्र में सरकार अनुपूरक बजट के साथ कई महत्वपूर्ण विधायी और वित्तीय कार्य सदन के समक्ष रखेगी।
2: सत्र के पहले दिन आज वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 21 और 22 जुलाई को प्रश्नोत्तर काल के बाद विभिन्न राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। 23 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा और सरकार का जवाब होगा, जिसके बाद बजट पारित कराया जाएगा। 24 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी। मानसून सत्र में सरकार सदन में 13 महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करेगी। इनमें बिहार नगर विकास विधेयक, बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक, बिहार माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक तथा चिकित्सा एवं नर्सेस पंजीकरण से जुड़े संशोधन विधेयक प्रमुख हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच विपक्ष ने भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी कथित एनकाउंटर, महंगाई, राज्य की वित्तीय स्थिति और किसानों को यूरिया की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विधानमंडल के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अनुसार बैठक आज शाम 5 बजे या विधानमंडल की कार्यवाही समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक में मॉनसून सत्र से जुड़े विधायी और प्रशासनिक प्रस्तावों पर विचार किए जाने की संभावना है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 369 नए छात्रावासों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। अनुसूचित जाति

एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को इस संबंध में प्रस्ताव सौंपा। श्री रोशन ने बताया कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत राज्य के 369 प्रखंडों में छात्रावास बनाए जाने का अनुरोध किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने प्रस्ताव पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राज्य सरकार

0: ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जीविका दीदियों की आय बढ़ाने के साथ साथ उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। राज्य सरकार के सहयोग से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 वर्ष की अद्भुत आस्था के अवसर पर आज पाटलिपुत्र स्टेशन से स्पेशल ट्रेन द्वारा 1100 श्रद्धालु निःशुल्क सोमनाथ धाम की यात्रा पर रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार ने यात्रा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं।
1: यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टर तथा महिला और पुरुष पैरामेडिकल कर्मियों की मेडिकल टीम भी साथ भेजी जाएगी। वहीं ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 5 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। गुजरात सरकार की ओर से सोमनाथ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवास, भोजन, स्थानीय परिवहन तथा स्वागत और विदाई की व्यवस्था की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: हज यात्रा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन का आज अंतिम दिन है। बिहार राज्य हज समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राशिद हुसैन ने बताया कि यात्री बिहार राज्य हज समिति की वेबसाइट या हज सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए हज भवन में कई काउंटर बनाए गए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पूरे प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर जिलों में देर शाम से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज कैमूर, गोपालगंज, रोहतास और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सिवान और वैशाली जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है। इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। सिवान, सारण, नालंदा और बक्सर जिले में 2-2 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में खरीफ मौसम के दौरान अब तक धान की लगभग 40% रोपनी पूरी हो चुकी है। कृषि विभाग के अनुसार राज्य में 37,90,000 हेक्टेयर में धान की रोपनी का लक्ष्य है, जिसमें अब तक 14,00,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रोपनी हो चुकी है। हालांकि बारिश की कमी के चलते भोजपुर, गया, नवादा और जमुई जिलों में अब तक केवल 1% रोपनी हुई है। वहीं मक्का की बुआई में अच्छी प्रगति हुई है। 2,71,000 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 80% क्षेत्र में मक्का की बुआई पूरी हो चुकी है। इस बीच कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खरीफ फसलों की रोपनी और बुआई की प्रगति की समीक्षा करते हुए किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आज से शुरू हो रहा है। आयोग ने साक्षात्कार के लिए विषयवार कट ऑफ अंक जारी कर दिए हैं। सामान्य वर्ग में हिंदी विषय का कट ऑफ सबसे अधिक 69.9% रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता। वहीं क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज इंग्लैंड ने जीत ली है। एक रिपोर्ट।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था।

0: जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले पांचवे ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: मुंगेर में आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप के फाइनल में मेजबान मुंगेर और पश्चिम चंपारण ने जगह बना ली है। सेमीफाइनल में मुंगेर ने टाई ब्रेकर में पटना को 4-2 से जबकि पश्चिम चंपारण ने किशनगंज को 5-4 से हराया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। पटना पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर एक ही मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट सवार 4 होमगार्ड जवानों के मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने संबंधित वाहन का 2,000 रुपये का चालान किया है तथा ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त मोटरसाइकिल पर सवार चारों होमगार्ड जवानों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई है। एसटीएफ की टीम ने भूमाफिया और कुख्यात अपराधी संजय कुमार को पटना से गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी पिस्तौल, मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस और नगद राशि बरामद की गई है। गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत 31 मामले दर्ज हैं। पूर्वी चंपारण पुलिस ने एक मिनी कारतूस फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस ने चकिया, मधुबन, गरहिया और फेनहारा थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 500 से अधिक निर्मित और अर्धनिर्मित कारतूस, हथियार बनाने की मशीनें, रसायन और अन्य सामग्री बरामद की है। इस मामले में फैक्ट्री संचालक सहित 4 आरोपितों की गिरफ्तारी हुई है। विधान परिषद के सदस्य और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने आरा से एक युवक को गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र से पुलिस ने मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र समेत कई अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। भागलपुर जिले के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 263 ग्राम ब्राउन शुगर और 12 किलो से अधिक अर्धनिर्मित ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, मुख्यमंत्री ने राज्य भर के 551 आदर्श विद्यालयों का एक साथ उद्घाटन किया। बेगूसराय में राष्ट्रकवि दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, बिहार की पहली रिवर लिंक परियोजना का हुआ शुभारंभ। प्रभात खबर की सुर्खी है, बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से। दैनिक जागरण लिखता है, वंदे मातरम के अपमान पर होगी 3 साल की जेल। दैनिक भास्कर ने लिखा है, भागलपुर में 66 वर्षीय वृद्ध कोरोना पॉजिटिव मिला। आज अखबार लिखता है, सोनम वांगचुक आज खत्म कर सकते हैं अनशन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र भी आज से 5 दिवसीय सत्र के दौरान 13 विधेयक पेश किए जाएंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर आज पाटलिपुत्र स्टेशन से 1100 श्रद्धालु निःशुल्क सोमनाथ धाम की यात्रा पर रवाना होंगे। और मौसम विभाग ने आज कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना

0: बांका, समस्तीपुर और वैशाली समेत 14 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यार वोट देना तो है लेकिन मतदान केंद्र कहाँ है?
2: मेरा नाम मतदाता सूची में है या नहीं कैसे पता चलेगा?
1: और मुझे मतदान से जुड़ी जानकारी चाहिए।
2: बस एक नंबर याद रखिए, 1950।
1: 1950?
2: जी हाँ, मतदाता सूची, मतदान केंद्र, मतदान प्रक्रिया, चुनाव संबंधी जानकारी या सहायता, हर सवाल का जवाब एक नंबर पर।
1: मतलब जानकारी भी मार्गदर्शन भी?
2: बिल्कुल, 182 बाकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें।
1: अब तो मतदान और भी आसान हो गया।
2: 30 जुलाई 2026 को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आपका एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। कोई मतदाता ना छूटे।
3: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
4: गन्ने की खेती अब सिर्फ फसल नहीं, बनेगी आपकी नई पहचान और बेहतर कमाई का आधार।
5: बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग की बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत अब गुड़ उत्पादन इकाई की स्थापना पर मिलेगा पूंजीगत लागत का 50% तक अनुदान।
6: क्षमता के अनुसार 6 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता का लाभ उठाइए।
5: आज ही कीन केयर पोर्टल ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि है 25 जुलाई 2026। गन्ना उद्योग विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी।
7: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
8: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी हमारे श्रोता आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:06 हुए हैं। सुनते हैं आज का कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह के 9:10 पर सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार सुनेंगे सुबह 9:30 पर और सुबह 10 सुन पाएंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुबह 10:05 पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से सुनेंगे कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन। भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी का समय होगा सुबह 10:30 पर।

भोजपुरी एल्बम सॉन्ग सुन पाएंगे कार्यक्रम रसधार सुबह 10:45 पर, और पूर्वाहन के 11 बजे विविध भारती के कार्यक्रमों को सुनेंगे, और पुनः हाजिर होंगे आप सबों की सेवा में शाम 5:10 पर कार्यक्रम वंदन के साथ। महिला सखियों का कार्यक्रम घर आंगन का समय होगा।

शाम 5:30 पर और भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम सुनेंगे शाम 6 बजे से। भोजपुरी बुलेटिन समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले किए जाएंगे शाम 6:05 पर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर का समय होगा शाम 6:10 पर और भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत सुन पाएंगे शाम 6:40 पर। प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद सुनेंगे शाम 7 बजे से और गुड इवनिंग रोहतास सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम को सुनेंगे शाम 7:15 पर। आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल का समय होगा शाम 7:25 पर और शाम 7:50 पर सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से ही विधानमंडल समीक्षा। ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद का समय होगा शाम 8 बजे से और शाम 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या सुनेंगे। रात्रि 9 बजे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक धारा सुन पाएंगे। वंदगी सुनेंगे कार्यक्रम रात्रि 9:15 पर और आज के फनकार विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। रात 10 बजे सुनेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग कार्यक्रम रसरंग और चित्रपट तराने का समय होगा रात 10:30 पर। अगले दिन के कार्यक्रम विवरण सुन पाएंगे रात्रि 10:55 पर और मौसम पूर्वानुमान भी सुनेंगे। रोजाना की तरह आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी समाचार रात्रि के 11 बजे से और 11:10 पर सभा का समापन कर दिया जाएगा। अभी आपने सुना आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 MHz पर। सुबह के 9:10 हुए हैं। सुनते हैं हिंदी फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम गीत मालिका का पहला गीत सुनते हैं फिल्म मासूम से।

अभी आपने सुना कार्यक्रम गीत मालिका में कुमार सानू और पूर्णिमा को। आनंद राज आनंद के बोल थे और आनंद राज आनंद का ही संगीत था। फिल्म था मासूम। कार्यक्रम का अगला गाना मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की आवाजों में, समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है, फिल्म है आदमी खिलौना है।

कार्यक्रम गीत मालिका के आखिर में सुन लेते हैं एक और गाना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। इंदिवर के बोल हैं, बप्पी लहरी का संगीत है, फिल्म है आंखें।

फिल्म आंखें के इसी गाना के साथ है। हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। सुनते हैं कार्यक्रम आज के फनकार विविध भारती से।

स्वतंत्रता पूर्व भारत के बंगाल प्रांत का फरीदपुर। आज ये स्थान बांग्लादेश में है। यहीं समृद्ध जमींदारी थी देवेंद्रनाथ घोष राय चौधरी और उनकी पत्नी अमिया देवी की। 23 नवंबर 1930 को इनके घर जन्म लिया गीता घोष राय चौधरी ने। सन 1940 की शुरुआत में देवेंद्रनाथ का परिवार कोलकाता और आसाम स्थानांतरित हो गया। 1942 में गीता रॉय के माता पिता मुंबई के दादर स्थित एक अपार्टमेंट में रहने आ गए। युवा गीता रॉय ने गायन की बारीकियां सीखी के हनुमान प्रसाद जी से। उन्हीं के संगीत निर्देशन में सन 1946 में गीता रॉय ने 16 बरस की उम्र में फिल्म भक्त प्रहलाद के लिए पार्श्व गायन किया। सन 1947 में गीता रॉय को गायन का अवसर मिला फिल्म दो भाई में, और इस फिल्म के जिस गीत ने गीता रॉय को रातों रात मशहूर कर दिया वो गीत था ये। मेरा

1947 में ही गीता रॉय ने अपने संगीत गुरु हनुमान प्रसाद जी के संगीत निर्देशन में फिल्म रसीली के लिए पार्श्व गायन किया। गीता दत्त जी की गायकी, उनका अंदाज बहुत अनूठा था। स्वर में भावों की अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता थी। मिठास और मादकता उनके स्वर की विशेषता है।

0: सरिता जी के स्वर में उम्र जैसे ठहर जाती है। लहकता बहकता उनका स्वर जब कानों से भीतर उतरता है तो तन मन भी लहकने बहकने लगते हैं।
1: जाता कहां है दीवाने।

फिल्म बाजी के गीतों की रिकॉर्डिंग के दौरान गीता जी अभिनेता, निर्माता और निर्देशक गुरुदत्त के संपर्क में आई और 26 मई सन 1953 को दोनों ने विवाह कर लिया और गीता रॉय, गीता दत्त

हिंदी सिनेमा के अलावा गीता दत्त जी ने बांग्ला की कई सफल और लोकप्रिय फिल्मों में भी पार्श्व गायन किया। गीता दत्त संगीतकार ओपी नैयर की भी बहुत ही प्रिय गायिका थी। ओपी नैयर जी ने गीता दत्त से कई यादगार गीत गवाए।

ना हमें बना अब नदी दुखा, अब नदी दुखा किसी की जान से न खेल रही अनाड़ी। दे दिया तू ले ले दिल, यूं नहीं तो चुपके मिल। अनाड़ी अनाड़ी अनाड़ी रे आज सजन।

0: हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए।
1: सन 1964 में गुरुदत्त इस दुनिया से विदा हो गए और 20 जुलाई 1972 को गीता दत्त भी इस दुनियाए फानी से चली गई।

भारतीय सिने संगीत को गीता जी ने समृद्ध किया अपनी गायकी से, अपने यादगार गीतों से। जमाना इस महान गायिका को हमेशा याद रखेगा।

0: करोगे।
1: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका गीता रॉय यानी गीता दत्त पर। स्वर शोध और आलेख कमल शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में संसद की 19 बैठक होंगी। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने आशा व्यक्त की है कि संसद सदस्य संविधान की गरिमा और संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं का पालन करते हुए सहयोग की भावना से कार्यवाही में भाग लेंगे। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि सुरक्षा कारणों से जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक को मंजूरी दे दी है। कल भोपाल के निकट जगदीशपुर में हुई विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि समान नागरिक संहिता सभी समुदायों को समान अवसर और अधिकार उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि UCC विधेयक से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाऊ में मालडोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मालडोवा संसद

0: के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मालदोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मालदोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मालदोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू तीन देशों मालदोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेजों के खिलाफ समूचे देश में स्वतंत्रता की अलख जगाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को एक राष्ट्रवादी साहसी व्यक्तित्व बताया जिन्होंने अन्याय और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इधर दिल्ली में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हमारे श्रोता आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुन रहे थे। समाचारों से पहले हमारे श्रोता विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। सुनते हैं कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन।
2: घूमता माइक्रोफोन कार्यक्रम के सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को अख्तर इमाम अंजुम का नमस्कार। दोस्तों, आप जानते भी हैं कि आज के दिन हम इस माह के विभिन्न दिवस पर चर्चा करते हैं, उसमें प्रतिभागी भी आप में से ही कई लोग होते हैं। 6 जुलाई से पहले की तो चर्चा हो चुकी, मगर हमें कहना है कि आपने दिनांक 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस मनाया, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, आज विश्व शतरंज दिवस है, दिनांक 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अपनाने का दिवस आएगा एवं दिनांक 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भी आप मनाएंगे। इसी के अंतिम माह में आप बाल गंगाधर तिलक जन्म दिवस, चंद्रशेखर आज़ाद जन्म दिवस, कारगिल विजय दिवस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मृति दिवस, CRPF स्थापना दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस एवं मुंशी प्रेमचंद का जन्म दिवस भी मनाएंगे। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, सच्चाई, विनम्रता एवं आत्मनिर्भरता गुणों के लिए सभी विद्यार्थी जीवन दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य दिवस में देश की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार एवं नीली क्रांति में मत्स्य किसानों के योगदान को प्रदर्शित करना होता है। बढ़ती जनसंख्या, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, गरीबी एवं सतत विकास जैसे मुद्दों के प्रति जागरूकता हेतु विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का मकसद है जो युवा युवक हैं उनके मुद्दे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, मानव अधिकार पर

0: ध्यान दिया जाता है। वैश्विक न्याय प्रणाली को मजबूत करने, अपराध पीड़ितों के अधिकारों को समर्थन देने के लिए ही आपराधिक न्याय दिवस समर्पित है। नेल्सन मंडेला जन्म दिवस भी शांति, मानव अधिकार एवं समानता मूल्यों का सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। शतरंज खेल के इतिहास महत्व को विस्तार से जानने का अवसर देता है शतरंज दिवस। राष्ट्रीय ध्वज दिवस एकता, स्वतंत्रता एवं महान गौरव का प्रतीक है। ध्वज के रंगों और अशोक चक्र के बारे में भी आप जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक का नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिससे ब्रिटिश अधिकार की समाप्ति हुई। देशभक्त चंद्रशेखर आजाद को उनके जन्म दिवस पर सभी अर्पित करते हैं श्रद्धांजलि, जिनके कारण हमारे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1999 26 जुलाई कारगिल युद्ध दौरान पाकिस्तान पर ऑपरेशन विजय की सफलता उपलक्ष में हम मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन, शिक्षा एवं योगदान को लेकर हम मनाते हैं उनकी स्मृति दिवस। CRPF की सेवा, निष्ठा, आंतरिक सुरक्षा, नक्सल विरोधी अभियान, चुनाव ड्यूटी एवं आपदा संबंधी कार्यों में उत्तम कार्य मद्देनजर उनके सम्मान में मनाते हैं CRPF दिवस। हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व की याद दिलाता है प्रकृति संरक्षण दिवस। हम सभी इस बात को जानते भी हैं कि देश, समाज और लोगों के बीच शांति, मेल मिलाप एवं दोस्ती की भावना बढ़ाता है मैत्री दिवस। साहित्य जगत में प्रसिद्ध नाम है मुंशी प्रेमचंद जी का। उनकी लेखनी, उनके साहित्य एवं उच्चतम योगदान की हम उस दिन यानी प्रेमचंद जन्म दिवस पर सराहना करते हैं। दिनांक 23 जुलाई को हम भी मनाएंगे राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। भारत में पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बम्बई स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो का नाम 8 जून 1936 को पड़ा था। उसे ही 1956 में आकाशवाणी नाम दिया गया। तो दोस्तों, आज हम रेडियो से रुचि, उसके महत्व एवं वर्तमान में उसकी लोकप्रियता के बारे में जानेंगे। इस अवसर हेतु हम आपको अग्रिम बधाई भी देते हैं। हम आप सभी जानते भी हैं कि रेडियो प्रसारण हमारा आपका महत्वपूर्ण साधन है, जिसे आप उत्साह से सुनते हैं एवं उससे प्रसारित सभी कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। और क्यों ना हो हमें भी गर्व कि हम रेडियो के कार्यक्रम को रोचक बनाकर आपको आनंदित करते हैं। दिनांक 23 जुलाई 1927 से आज तक जितने रेडियो के अमले आपके लिए प्रतिबद्ध रहे, उससे कम नहीं आप श्रोता का भी रेडियो सुनने में हिस्सेदारी रहा है, जिसका हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तो श्रोता दोस्तों, आज हम प्रसारण दिवस को मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं। आप श्रोता में से ही कुछ श्रोता से हमने बात की है एवं ये जानना चाहा है कि रेडियो प्रसारण के प्रति जो रुचि है तो क्यों एवं किस प्रकार है। आइए पहले जाने श्रोता मुन्ना साव जी से रेडियो संबंधी वो क्या कहते हैं।
1: पहले हमारे रेडियो के श्रोता को अपना नाम बता दीजिए। आपका नाम क्या है?
2: मेरा मुन्ना साव है।
1: मुन्ना साव। तो मुन्ना साव जी, ये बताइए कि आप रेडियो कब से सुन रहे हैं?
2: हम 40 बरस से सुन रहे हैं।
1: 40 बरस से सुन रहे हैं? तो अपने दुकान पे रखे हुए रेडियो?
2: हाँ, अपने दुकान पर रखे हुए हैं, वहीं पर खोल देते हैं। आप पब्लिक सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, पान भी खाते हैं और जाते हैं। आपको
1: क्या, आपकी पान की दुकान है? आप पान की दुकान में रेडियो रखे हुए हैं और लगातार रेडियो सुनते हैं? तो रेडियो में क्या क्या सुनते हैं मुख्य रूप से?

0: पे फरमाई सुनते हैं, गुलाम रहता है वो तब सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, मैंने डाक्टरी समाचार नहीं खाली गाने हम सुनते हैं डाक्टरी करके।
1: आप गाने ही सुनते हैं?
0: गाने के बहुत दीवाने हम हैं।
1: अच्छा, चलिए अच्छी बात है। मतलब ये कि आप रेडियो सुनते हैं?
0: सुनते हैं, और एक बार के सुनते हैं रेडियो।
1: और मुख्य रूप से सासाराम में रहते हैं तो आपको एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम होता है, तो आप उसको सुनते हैं। आपको कैसा लगता है?
0: बहुत बढ़िया लगता है,
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: आदमी बोलता है इतना दूर में तो रेडियो नहीं है, आपके पास रेडियो है, हम तो रेडियो के दीवाने हैं भैया, खराब होता है तुमसे हम बनवाते हैं। मन नहीं, बिना रेडियो के मेरा मन नहीं लगता है।
1: अच्छा अच्छा,
0: थोड़ा अच्छा लगता है हमको गाना सुनने में।
1: रेडियो में जैसे किसान का प्रोग्राम होता है, किसान वाला
0: होता है,
1: और श्रम संसार होता है, मेहनत कष्ट लोगों के लिए,
0: थोड़ा कम सुनते हैं, मगर गाने डाकते सुनते हैं,
1: गाने ज्यादा सुनते हैं। अच्छा, यूथ का प्रोग्राम होता है, महिलाओं का घर आंगन प्रोग्राम, कई कार्यक्रम होता है, तो सब आप ऐसे सुनते हैं?
0: हाँ, थोड़ा बहुत सुनते हैं, घर आंगन में थोड़ा गाना भी होता है, वही सब सुनते हैं।
1: यही कारण है कि आपको कम से कम आज के कार्यक्रम में सम्मिलित करने का अवसर दिया गया है, तो आप इससे खुश है ना?
0: हाँ, बहुत खुश है।
1: चलिए, तो आपके परिवार में कौन कौन लोग सुनते हैं?
0: मेरा परिवार में है, मेरे बीवी सुनती है, कभी कभी मेरा लड़का भी सुनता है।
2: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे पान विक्रेता मुन्ना साव जी से उनके विचार। अब आप जानें एक समाज सेवी वृद्ध व्यक्ति विजय कुमार शर्मा जी क्या कहते हैं।
1: पहले आप आकाशवाणी के श्रोता को अपना नाम बता दीजिए।
3: विजय कुमार शर्मा।
1: विजय कुमार शर्मा जी, आप ये बताइए कि क्या करते हैं?
3: हम सामाजिक कार्य करता है।
1: सामाजिक कार्य करता है, तो आप समाज के लिए क्या क्या करते हैं?
3: समाज के लिए जो गरीब होगा उसके लिए, चाहे कोई भी धर्म को, जाते हैं और सबको मिलजुल कर दान पुण्य जो शक्ति होता है मैं उनको सेवा करता हूँ।
1: सेवा करते हैं, तो आप ये बताइए कि आपकी आयु क्या है?
3: मेरा आयु 78 वर्ष का है।
1: 78 वर्ष है। उस समय से आज तक में आपने रेडियो सुना है कि नहीं?
3: रेडियो हम 60 वर्ष से सुन रहे हैं, आज भी सुनते हैं। अब तो हर चीज में रेडियो है, और सबसे ज्यादा रेडियो का ही प्रचार है, ये सब टीवी का प्रचार नहीं है। जब से रेडियो हर आप सुनते हैं, देहात से, शहर से, प्रखंड से, और उसके बाद वार्ड से, नगर निगम से, सब है, सब लोग रेडियो सुनकर खुश रहते हैं। जितना रेडियो का प्रचलन है उतना टीवी का प्रचलन नहीं है।
1: आपको रेडियो का कार्यक्रम कैसा लगता है?
3: बहुत अच्छा लगता है। रेडियो एक ऐसी चीज है कि जो घर घर में जाके सब सुनते हैं, बहुत खुशहाल रहते हैं।
1: देहातों में रेडियो का प्रचलन है या लोग सुनते हैं, शहर में देहात के बनिस्बत क्या आप देखते हैं रुझान लोगों का?
3: रुझान हम देखते हैं देहात से रुझान ज्यादा है, लेकिन शहर में भी रुझान कम नहीं है, बहुत ज्यादा रुझान शहर में भी है।
1: तो रेडियो सुनने का कुछ मुख्य कारण है?
3: मुख्य कारण यही है, टीवी एक प्रचलन है, लेकिन रेडियो एक ऐसी चीज है कि बैटरी से चलता है, लाइन भाग गया तो टीवी खत्म हो गया, लेकिन रेडियो बहुत अच्छा चीज है। रेडियो
1: अच्छा बताइए, आप जो कार्यक्रम रेडियो का सुनते हैं तो कौन कौन सा कार्यक्रम सुनते हैं?
3: इसमें किसान सुनते हैं, युवा सुनते हैं, सीनियर सीजन के भी सुनते हैं, हर चीज का घूमता फूलता हुआ माइक्रोसॉफ्ट सुनते हैं, और बहुत खुशहाल रहते हैं, इसको रुझान जाते हैं, इसलिए हर व्यक्ति इसको सुन के, हर किसान लोग, देहात के, शहरे के, युवा का आंदोलन होता है तो सबसे विशाल इसमें होता है, हर चीज का है, सब धर्म का है, सब विचार का है, और सब रुझान है।
1: गीत संगीत आप सुनते हैं?
3: हाँ, भजन सुनते हैं, गीत सुनते हैं, गाना सुनते हैं, हर चीज इसमें सुनते हैं।
1: बहुत सही बात है, और इस बात को आपने दर्शाया कि किसान का सुनते हैं, यूथ का सुनते हैं, अन्य कार्यक्रम सुनते हैं, मेहनत करने वालों का कार्यक्रम सुनते हैं, घूमता माइक्रोफोन, मतलब उस अंदाज से आपने बोला कि जैसे लगा कि सही है कि आप सुनते हैं, तो ये

0: अपने अन्य श्रोता को भी बता देते हैं कि यूथ का जो प्रोग्राम होता है वो युवाणी प्रोग्राम होता है, आम जनों के लिए जिनसे हम वार्ता करते हैं, की प्रस्तुति करते हैं, वो घूमता माइक्रोफोन कहलाता है। मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं, आपने कहा कि मेहनत करने वालों का भी कार्यक्रम सुनते हैं, तो मेहनत करने वाले का कार्यक्रम का वो नाम है श्रम संसार के नाम से कार्यक्रम होता है। तो ये सारे कार्यक्रम मुझे पता लग गया और मैं समझ गया कि आप सही में कार्यक्रम सुनते हैं। और आपने बताया कि आज से नहीं कम से कम 50-60 साल से सुनते आ रहे हैं, तो मेरी ओर से आपको बहुत धन्यवाद विजय शर्मा जी। और ये भी आपने बताया कि समाज सेवक है, तो समाज के प्रति आपका बहुत अच्छा रुझान है।
1: दोस्तों, आपने सुना समाज सेवी सह वृद्ध व्यक्ति विजय कुमार शर्मा जी से उनकी बातचीत, जो आपको भी अच्छी लगी होगी। तो अब आइए एक सक्रिय रेडियो श्रोता मोहम्मद असद जी की बात सुनते हैं। पूर्ण रूप से वो भी अच्छे अच्छे विचार एवं जानकारी उजागर कर गए, जिससे हम रेडियो के लोग भी गौरवान्वित हैं।
0: सबसे पहले आप आकाशवाणी के श्रोता को अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम मोहम्मद असद है।
0: मोहम्मद असद, तो आप क्या करते हैं?
2: जी हम बिजनेसमैन हैं।
0: बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं।
2: अच्छा,
0: तो क्या आप इसी जिला के निवासी हैं?
2: जी जी, इसी जिला के निवासी।
0: इसी जिला के निवासी, तो आप व्यवसाय से ही परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं?
2: जी जी बिल्कुल।
0: तो ये बताइए कि आप रेडियो के कार्यक्रम सुनते हैं या
2: नहीं? बिल्कुल सुनते हैं।
0: सुनते हैं
2: जी।
0: तो कब से आप रेडियो के श्रोता हैं?
2: रेडियो के श्रोता जो है हम लगभग 25-30 साल से सुन रहे हैं रेडियो।
0: 25-30 साल से आप रेडियो सुन रहे हैं, तो आपको रेडियो का कार्यक्रम कैसा लगता है? आप रेडियो को प्राथमिकता देते हैं तो क्यों देते हैं?
2: जी, रेडियो का जो कार्यक्रम है वो तो अच्छा लगता है, और प्राथमिकता इसलिए भी देते हैं क्योंकि इसमें गीत संगीत से लेकर किसान वाणी, युवा वाणी, घर आंगन, श्रम संसार, घूमता माइक्रोफोन आदि स्वास्थ्य संबंधी जितना भी है कार्यक्रम सारा उसमें आता है।
0: आप इस कारण सुनते हैं और समय के अनुसार आप सारा कार्यक्रम सुनते हैं?
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप व्यवसाय भी करते हैं और रेडियो भी सुनते हैं?
2: जी।
0: आपका मन लगता है रेडियो?
2: बिल्कुल बिल्कुल लगता है।
0: आप रेडियो कार्यक्रम को सुनते हैं तो कार्यक्रम में अपनी ओर से और रोचक कार्यक्रम हो पत्र के माध्यम से कुछ सलाह का आदान प्रदान करते हैं या नहीं?
2: जी जी, पत्र के माध्यम से जो है कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए सलाह देना तो आवश्यक होता ही है, इसलिए देते भी हैं।
0: मतलब पत्र वगैरह से
2: जी, जी
0: पत्र सभी कार्यक्रम को सुनते हैं?
2: जी जी।
0: तो आप ये चाहते हैं कि कार्यक्रम और अच्छा हो और भी रोचक हो, इसलिए पत्र के माध्यम से कुछ अपनी सलाह भी आप देते रहते हैं? बहुत अच्छी बात है। और सभी साधनों के बनिस्पत रेडियो को आप प्रमुख साधन क्यों मानते हैं, कुछ दर्शाएं।
2: देखिए, और दूसरे साधन के बनिस्पत हम इसको इसलिए मानते हैं अच्छा, क्योंकि ये एक ऐसा साधन है जो हर जगह लेकर जाया जा सकता है, कहीं भी आप इसको ले जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कहीं पर भी समाचार या किसी भी प्रकार का कार्यक्रम जो है छोटी छोटी दुकानों में किसी भी हर प्रकार के हर व्यवसाय के लोगों के पास ये उपलब्ध हो जाता है आसानी से।
0: अच्छा अच्छा, इसलिए आप उसे प्रमुख साधन मानते हैं। और ये भी है कि बिजली की खपत भी नहीं होती है, इससे छोटी बैटरी से भी रेडियो सुनने का मिल जाता है अवसर। क्या आपको मालूम है भारत में रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत कब हुई, बताइए?
2: भारत में रेडियो प्रसारण की जो औपचारिक शुरुआत थी वो 23 जुलाई 1927 को हुई थी, बम्बई से इसकी शुरुआत हुई थी।
0: बम्बई से शुरुआत हुई, क्या बात है, एकदम सही आपने कहा है कि भारत में रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत बम्बई से 23 जुलाई 1927 को हुई थी, जो आपका उत्तर भी बहुत सही है। इससे माना जा रहा है कि आप रेडियो सुनते हैं।

0: 1936 में 8 जून को दिया गया था, और ये भी आपका उत्तर सही है कि ऑल इंडिया रेडियो नाम जो दिया गया 1936 में ही 8 जून को ही दिया गया था। बहुत सही उत्तर है। आपकी जानकारी की तो बात है, लेकिन ये इसलिए हम पूछ रहे हैं, सभी श्रोता ये जाने कि AIR की शुरुआत कब हुई, तो वो जान गए कि 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। अच्छा, ये भी बता दीजिए हमारे श्रोता को कि इसका आकाशवाणी नाम कब पड़ा।
1: आकाशवाणी का जो नाम था वो 1957 में पड़ा था।
0: 1957 में आकाशवाणी नाम पड़ा था। आप बता रहे हैं, नहीं बल्कि मैं भी इस बात को खोल दे रहा हूँ, ये सत्य है कि आकाशवाणी का नाम जो पड़ा था वो 1957 में ही पड़ा था। बहुत सही आपका उत्तर है। अच्छा, ये बताइए कि आप रेडियो के सक्रिय श्रोता हैं, हमारे श्रोता को ये भी बताएं कि प्रसार भारती की स्वायत्तता रेडियो को कब प्रदान हुई थी।
1: प्रसार भारती की जो स्वायत्तता जो है वो रेडियो को 1997 में प्राप्त हुई थी।
0: एकदम एकदम सही, 1997 में प्रसार भारती को की स्वायत्तता रेडियो को प्रदान हुई थी, और ये सही उत्तर है। अच्छा, आप ये भी बताएं कि आज भी रेडियो का महत्व है तो कितना है एवं कारण क्या है।
1: आज के जमाने में भी रेडियो का काफी महत्व है, हालांकि बहुत तरह की चीजें आकर टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बढ़ गई है, फिर भी हर तबके के लोग, छोटे गरीब चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, उन्हें रेडियो ही साधन सही लगता है, क्योंकि वो सबसे कम बजट का साधन है, और हर छोटी बड़ी दुकानों में, पान की दुकानों में, गुमटियों में, चाहे ठेले पर, हर जगह हमें रेडियो ही देखने मिलता है आज के जमाने में भी।
0: बहुत सही। आप कुछ श्रोता को भी संदेश देना चाहेंगे
1: हमारे माध्यम से? तो यही संदेश है कि रेडियो का भी अपना एक जमाना है, रेडियो का भी जो है काफी सालों से चला आ रहा है, हम लोग जो सुन रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी भी, हम मेरा यही मानना है कि उन्हें भी सुनना चाहिए, क्योंकि आज का जो जमाना है वो 5G या फोन का जमाना आ गया, तो रेडिएशन जो है काफी बढ़ गया है, तो उस हिसाब से भी पक्षियों को काफी नुकसान होता है, तो रेडियो जो है काफी जो पुराना चीज है वो आज भी चल रहा है और चलना चाहिए, हमें इस चीज को जीवित रखने की जरूरत है।
2: श्रोता दोस्तों, मोहम्मद असद जी की इस बातचीत के बाद लेते हैं एक गीत का आनंद।

श्रोता दोस्तों, इस गीत के बाद हम आपसे भी कहेंगे कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन कैसा लगा। उठाइए कलम और लिख भेजिए एक पत्र, हमें रहेगी प्रतीक्षा आपके पत्र की। हमारा पता है कार्यक्रम घूमता

माइक्रोफोन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम पिन कोड 821115 और दीजिए। यहीं से अख्तर इमाम अंजुम को अनुमति। स्वर एवं संकलन अख्तर इमाम अंजुम, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

अभी हमारे श्रोता कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन सुन रहे थे आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। संकलन एवं वाचन एक अख्तर इमाम अंजुम का था, प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। श्रोताओं, सुबह के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी।

0: कार्यक्रम लोक माधुरी में सुनते हैं कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं बादरी बहार के गाए एक गीत, अशोक शिवपुरी के बोल हैं और अशोक शिवपुरी का ही संगीत है। एल्बम है बड़ा राते रोवले बाड़ी।
1: आवत खानी खा हाय राम।

अभी आपने लोक माधुरी में सुना बादरी बहार को। अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं भरत शर्मा व्यास को। पांडे नगीना के बोल है, भरत शर्मा व्यास ने संगीत दिया है, एल्बम है राजा पिया जनी।

भरत शर्मा ब्यास के गाए इसी भोजपुरी एल्बम लोकगीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं संपन्न होता है। अगला कार्यक्रम सुनते हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसधार। आरंभ में सुनते हैं मुन्ना सिंह की आवाज़ में एक खूबसूरत सा देवी भजन। इस गीत को लिखा है दीप मुहम्मदाबादी ने और दुर्गा प्रसाद का संगीत है, गाया है मुन्ना सिंह ने।

अभी आपने सुना मुन्ना सिंह को, अब हम सुनते हैं किरण पांडे से एक खूबसूरत सा गीत। तारकेश्वर मिश्रा राही ने इसे लिखा है, संजय पांडे ने संगीत दिया है, एल्बम है बालम बहरा बाड़े।

0: किरण पांडे के गए इसी भोजपुरी एल्बम सॉन्ग के साथ ही कार्यक्रम रसधार अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। पूर्वाहन के 11 बजे हैं। सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों को थोड़ी देर में।
1: की सुरीली धड़कन, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।
2: रंग तरंग,
1: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में। मैं हूं विधि जैन, नमस्कार, स्वीकार करें।

हम सुन रहे थे वंदे भारतम एल्बम से विशाल मिश्रा की आवाज में, जिसे लिखा मनोज मुंतशिर ने और आर्को ने इसे संगीतबद्ध किया, इस खूबसूरत से देशभक्ति गीत को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि एक बहुत खूबसूरत सी आवाज में, एक बहुत प्यारे से एल्बम से है, दीवाना एल्बम से सुन रहे हैं हम यह गीत, जिसे गाया है सोनू निगम ने, फैज अनवर ने इसे लिखा है और साजिद वाजिद ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: ओ तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे।

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
5: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
6: जी।
5: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
4: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे सुनो एल्बम से लकी अली की आवाज़ में, जिसे लिखा असलम ने और लकी अली ने ही संगीतबद्ध किया इस सुंदर से गीत को। आइए सुनते हैं अगला नगमा, जो कि है वेलवेट वॉइस हरिहरन के इस एल्बम से, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया है हरिहरन ने ही और लिखा है मुशीर झुंझुनाविनी ने।

हम सुन रहे थे ये गीत ट्रैफिक सिग्नल से, चित्रा और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज में। कैलाश शर्मा ने इसे लिखा है और संदेश शांडिल्य ने इसे संगीतबद्ध किया है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे ब्रीदलेस सॉन्ग, ब्रीदलेस एल्बम से शंकर महादेवन की आवाज में, जिसे संगीत बद्ध किया शंकर महादेवन ने और लिखा जावेद अख्तर ने।

मेरा सब कुछ तो अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तो वो है

हम सुन रहे थे जान एल्बम का यह गीत सोनू निगम की आवाज में, जिसे बोल दिए फैज अनवर ने और संगीतबद्ध किया है निखिल विनय ने।

0: हम सुन रहे थे तुम आए एल्बम से अलका याग्निक हरिहरन की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल और राजू सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया, इस खूबसूरत से नगमे को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मिया आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे जाने मन फिल्म का यह गीत सोनू निगम की आवाज में, गुलजार के बोल और अनु मलिक ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं ये गीत लकी अली सुनिधि चौहान की आवाज में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत फिल्म सुर से। इसे गाया लकी अली और सुनिधि चौहान ने, निदा फाजली के बोल और एमएम करीम के संगीत के साथ। आज के कार्यक्रम रंग तरंग में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: रंग तरंग।

0: ये मिल
1: कौन आ
0: गया, एक और आ
2: गया। कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मिया आप काट दिया ना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले सदस्यों ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की बैठक 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों की सुख शांति सुनिश्चित होती है।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की वैश्विक छवि को सार्वभौमिक मान्यता और स्वीकृति मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मॉल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं के साहस और दृढ़ता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत

0: उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपने साहस, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और यही विकासशील भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले दो दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की जीत दिलाई। और घरेलू शेयर बाजार सूचकांक लगभग 0.7% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। बस थोड़ी ही देर के बाद

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। यादों की महफिल कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं बहुत सुनहरी सी यादें, और आज याद करने का दिन है गीता दत्त, अभिनेत्री गीता दत्त का, गायिका गीता दत्त का। आज पुण्यतिथि है उनकी। आज ही के दिन हम याद करेंगे अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को और अभिनेता राजेंद्र कुमार को भी। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ जिसे गाया है गीता दत्त ने।

0: हम सुन रहे थे सीआईडी फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: लेते हैं एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में ये गीत।

हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत गीता दत्त की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आर पार फिल्म का यह गीत, गीता दत्त ने जिसे गाया है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और ओपी नैयर का संगीत।

0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
1: मुबारक हो सबको समाए सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
2: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
5: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
6: जी।
5: जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
4: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

हम सुन रहे थे ये गीत मिस्टर एंड मिसेस 55 से गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ सजा हुआ। आज याद करने का दिन है बहुत सारे लोगों का, और आज हम याद कर रहे हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार को भी। आज उनका जन्मदिवस है, तो आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्मों के कुछ नगमे। कार्यक्रम यादों की महफिल में

0: हम सुन रहे थे ससुराल फिल्म का यह गीत जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने। हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में यह संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या, हर रोज तुम रेडियो सुनते

0: रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

हम सुन रहे थे झुक गया आसमान फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में ये गीत।

हम सुन रहे थे सूरज फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में हम आज याद कर रहे हैं उन्हें भी आज जिनका जन्मदिवस है, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह। आज उनके जन्मदिवस पर उनके लिए कुछ नगमे उन्हीं की फिल्मों से, आइए सुनते हैं।

मासूम फिल्म से हम सुन रहे थे भूपेंद्र और सुरेश वाडेकर की आवाज में, गुलजार के बोल और राहुल देव वर्मन के संगीत के साथ ये गीत। आइए सुनते हैं, यशुदास की आवाज में नसीरुद्दीन शाह पर फिल्माया गया ये गीत।

हम सुन रहे थे सुनैना मूवी फिल्म का यह गीत, जिसे गाया यशोदास ने रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के ही संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत, इजाजत फिल्म से आशा भोसले की आवाज में, गुलजार के बोल हैं और राहुल देवर्मन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि प्रवीण जैन। नमस्कार, स्वीकार करें। आप सभी जानते हैं सुरीला सफर में हम सब लेकर आते हैं कुछ बातें, कुछ गीत और कुछ प्यारे से किस्से और कुछ प्रश्न और कुछ उत्तर जो हम आपस में साझा करते हैं उस समय काल को। इबारत एक लिखी जाती है हमारे द्वारा जिसे हम भेजते हैं सोशल मीडिया पर, और यही जो इबारत है वह हमने भी आज भेजी है और उस इबारत को हम आपके सामने सुनाना चाहते हैं। इबारत है कि चंद सिक्कों की खातिर करोड़ों के रिश्ते छोड़ गया, देखो वो परदेश चला गया और वो परदेसी हो गया। बस इबारत इतनी ही है और इस इबारत को लिखने के बाद हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, हम वो बातें आपके साथ साझा करना चाहते हैं। हमारे श्रोता ने एक बड़ी प्यारी सी कविता कहें या कुछ चंद पंक्तियां कहें उन्होंने लिखकर भेजी हैं कि नयन भरे नीर मन होता अधीर, जिया मैं टीस यह समाई है, एक तो दूरी चांद से दूजे दो घूंट अपमान के क्या यही परदेश की कमाई है। बहुत खूबसूरत सी बात लिखी है कि एक तो दूरी चांद से दूजे दो घूंट अपमान के क्या यही परदेश की कमाई है। कुछ सच्ची बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, सब बातें हैं, और इन्हीं बातों के बीच में हमारे और भी श्रोताओं ने लिखा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की पहली बार इतनी छोटी मगर जीवन की सच्चाई को बयां करने वाली, दिल को चीर देने वाली बहुत ही गहन पंक्तियों को साझा किया गया है। रिश्तों की गर्माहट चंद सिक्कों की खनखनाहट के सामने कच्ची दीवार की तरह ढह जाती है। स्वार्थ परायणता और पैसे के पीछे की पागलपंती दौड़ मानवीय एहसासों और संबंधों को निर्लज्जता से मिटा देता है, और हमेशा से पैसे ने एक रिश्ते से अधिक अपने को अधिक ताकतवर बनवाया है। जी, किसी हद तक आपकी बात भी सही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत जीवन की सच्चाई से जुड़ी सच्चाई से भरी है। जहां रिश्ते नाते सब धन दौलत तराजू में तौले जाते हैं, इसे प्राप्त करने के लिए इंसान कोई कसर नहीं छोड़ता, अपने ईमान को भी बेच सकता है। उदाहरण स्वरूप इन्होंने फिल्म सट्टा बाजार का जिक्र किया है यहाँ पर, कि उन्होंने लिखा है कि गुलशन बाबरा ने लिखा हेमंत कुमार का गाया हुआ गीत कुछ कह जाता है कि चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है। जी, आपकी बात भी सही है, और इसके साथ आपने एक और दूसरी फिल्म का भी यहाँ पर कहा है कि फिल्म पहचान में भी पैसों की पहचान, यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकले जा इस बस्ती में करता

मोहब्बत कोई नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने लिखकर भेजा है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी इंसान परदेश तो सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए जाता है, लेकिन धीरे धीरे फासले सिर्फ शहरों के नहीं रिश्तों के भी हो जाते हैं। सच तो यही कि चंद सिक्कों सिक्के जिंदगी चला सकते हैं, मगर अपनों की आवाज, उनका साथ और उनका अपनापन किसी भी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। आपकी बात भी सही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, इंसान अक्सर थोड़ी सी कमाई लालच में अपने अमूल्य पारिवारिक संबंधों, प्रेम और अपनों के साथ खुद पीछे छोड़ देता है। बेहतर भविष्य और धन कमाने की होड़ में ये व्यक्ति अपने घर आंगन को छोड़ दूसरे देश चला जाता है। त्रासदी यह है कि वह व्यक्ति अपनों के दिल की धड़कन हुआ करता था और दूर जाते ही अपनों के लिए परदेसी हो जाता है। बहुत अच्छी बातें आपने लिखी हैं, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको एक अच्छा सा गीत भी सुनवा दें। और जब हम बात इस परदेसी या परदेशी विषय पर कर रहे हैं, तो ये जो परदेश में जाते हैं, ऐसी कई सारी फिल्में हमारे जेहन में आती हैं। पुरानी फिल्मों में तो कई बार ऐसा होता है कि घर से बेटा कमाने के लिए बाहर चला जाता है। ऐसी कौन सी फिल्म आपके दिमाग में अभी आ रही है, ये प्रश्न है आपके लिए कि ऐसी कौन सी फिल्म आपके दिमाग में आ रही है जिसमें बेटा घर छोड़कर परदेश चला गया पैसे कमाने के लिए। जरा बताइएगा उस फिल्म का नाम। अगर आपके दिमाग में कोई भी फिल्म का नाम आता है तो जरूर से हमारे साथ साझा कीजिए कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपके दिमाग में अभी आ रही है कि बेटा गया है या बेटी गई है परदेश पैसे कमाने के लिए, विवाह करके नहीं, केवल पैसे कमाने के लिए बेटा या बेटी बाहर गए हैं। जरूर से बताइएगा। तब तक सुनिए ये गीत और बताइए इस गीत को लिखा किसने है। इसके गीतकार का नाम भी आप बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आइए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे बरसात फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। और आप सबसे हमने पूछा था कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। इस फिल्म के गीतकार, इस गीत के गीतकार हैं हसरत जयपुरी। बिल्कुल सही उत्तर देने के साथ हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि ऐसी कोई फिल्म जो आपके दिमाग में, आपके जेहन में आ रही है, जो फिल्म चली गई है, जिसमें बेटा या बेटी बाहर चले गए हैं पैसा कमाने के लिए, तो हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं अर्पण फिल्म है। जी बिल्कुल, उसमें एक और फिल्म का नाम कई लोगों ने लिया है, जो फिल्म का नाम है नाम। एक और फिल्म है नाम, फिल्म के बारे में कई सारे लोगों ने कहा है, बरसात फिल्म का जिक्र किया है कि यह बरसात फिल्म का गीत है। बिल्कुल सही जी, हमारे एक और श्रोता ने बताया कि स्वदेश फिल्म है जिसमें शाहरुख खान अपने गांव को छोड़कर जाता है। बिल्कुल सही बात है, गांव को छोड़कर जाते हैं, अपनों को छोड़कर जाते हैं, फिर वापस भी आते हैं। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने और भी कई सारी फिल्मों के नाम दिए हैं, जैसे पूरब व पश्चिम, नाम, देश परदेश, ऐसी कई सारी फिल्मों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे गांवों में या छोटी जगहों पर जब उन्हें पेट की भूख पूर्ति नहीं कर पाती है, उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो उस समय लोग यहाँ से चले जाते हैं कहीं और। स्वदेश के बारे में फिर से जिक्र हुआ है। और जी हमारे एक श्रोता ने लिखा, उन्हें फिल्म नाम याद आ रही है जिसमें संजय दत्त पैसा कमाने के लिए भारत से बाहर चले जाते हैं और गलत हाथों में भी पड़ जाते हैं। देश परदेश में प्राण इंग्लैंड के लंदन शहर में जाते हैं। जी उनकी खोज में देवानंद भी लंदन जाते हैं। जी ऐसी कई फिल्मों के नाम आप सबने बताए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक और हमारे श्रोता बड़े अच्छे से लिख रहे हैं कि यह कड़वी सच्चाई है कि कई बार लोग रिश्तों में पैसे और भौतिक सुखों के बदले भावनात्मक जुड़ाव और सम्मान और अपमान, अपनापन के लिए तरसते हैं। अक्सर ऐसा इसलिए होता है कि पैसा एक सीमा तक आराम और सुरक्षा दे सकता है, लेकिन यह प्यार, भरोसा, मानसिक शांति नहीं कर ही सकता। लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं, लेकिन रिश्तों में संवाद, अपनापन गायब हो जाने के कारण वे भीतर से अकेले पड़ जाते हैं। जी बिल्कुल सही, हमारे कौन श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि इंसान अक्सर थोड़ी सी कमाई और लालच के लिए अमूल्य पारिवारिक संबंधों और अपनों का साथ पीछे छोड़ देता है, धन कमाने के लिए घर आंगन छोड़ देता है, वही बात है, परदेसी हो जाता है। परंतु हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी, उन्होंने एक पद्यांश का जिक्र किया है महाकवि सूरदास की रचना का, कि उन्हें भ्रमर गीत की याद आ रही है। जी ये बहुत खूबसूरत भ्रमर गीत है, जब उद्धव गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों से इस बात के बारे में बातें होती हैं कि कृष्ण क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, तब गोपियां जब उस भ्रमर गीत में अपनी व्यथा को कहती हैं, उस व्यथा को यहां पर इन्होंने लिखा है कि कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि वधि हमसों हरि आहार चली जात। और इस बात में वह बड़े अच्छे से बता रही हैं कि उद्धव, यानी उद्धव दादा, उस परदेसी कृष्ण की बातें क्यों कह रहे हो जो एक बखवाड़े का वादा कर कर गया था और अब तक एक महीने से अधिक बीत गए हैं और वो अभी तक आया नहीं है। तो यहाँ पर जब परदेस कोई चला जाता है और परदेस से वापस नहीं आता है, तो वहां पर वो गया क्यों था, इसके पीछे के भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी, उन्हीं बातों में से एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, वह प्रश्न मैं आपको बस छोड़ देती हूँ कि क्या हर बार एक इंसान केवल पैसे कमाने के लिए जाता है? आपके अपनों में से कितने लोग शहर से बाहर गए हैं किसी उपलब्धि के लिए, या देश हित के लिए, या कभी किसी और काम के लिए? बताइएगा जरूर। और इसके साथ मैं आपको अगला गीत सौंप रही हूं, ये गीत बहुत अच्छा है। बता दीजिए कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, जल्दी से बताइएगा। और बताइए कि आपके में से अपना कोई गया होगा, हम दूसरे पक्ष से बात कर रहे हैं, देख कर देखिए कि आपके उस ओर से कोई बाहर गया होगा, उसके जाने का कारण क्या था।

हम सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत जो कि फिल्म आवारा में आवारा से लिया गया, शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। और हमने आपसे पूछा था कि बता दीजिए इसके गाइस गीत के गायक कलाकार कौन है, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लता मंगेशकर। और हम उसमें जोड़ देते हैं उनके साथ गाया साथियों ने। चलिए हम आपसे पूछ रहे थे कि अगर कोई बाहर जाता है तो आप बताइए, अगर कोई आपकी पहचान का है जो कभी बाहर गया है तो बताइए कैसा क्या हुआ। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे अपने तो बहुत लोग विदेश गए पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहाँ रहते हुए नागरिकता मिलने के बाद घर वापस आने को तैयार नहीं है, क्या कर सकते हैं, पलायन भी जीवन का एक हिस्सा है। ठीक है, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बेटा कमाने के लिए बाहर गया था, बहुत दिनों तक विदेश में रहा, टिक नहीं सका, वापस आ गया और अब तो बहू भी जाने को तैयार नहीं है। जी अच्छी बात है। हमारे श्रोता ने लिखा कि फिल्म आप लौट चले में एक लड़का विदेश जाता है, लेकिन वहाँ सब कुछ मिलने के बाद अंत में वापस आने के लिए मजबूर हो जाता है। जी हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से उत्तर दिए कई सारी चीज प्रश्नों के, और इन प्रश्नों में से एक प्रश्न मेरी ओर से आपके लिए आता है कि विचार करते हैं हम सब मिलकर कि जो अपना घर छोड़कर, अपना वतन छोड़कर, सीधे देश छोड़ने की बात करते हैं, जो अपना घर छोड़कर, जो अपना देश छोड़कर बाहर जाते होंगे, उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना होता होगा, जल्दी से बताइएगा कि उन्हें क्या क्या परेशानियां होती होंगी। आप ये परेशानियां हमारे साथ साझा कीजिए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, और बता दीजिए इस गीत में को हमने किस फिल्म से चुना है, यानी ये गीत किस फिल्म से है, उस फिल्म का नाम आपको बताना है। और तब तक ये भी बताइए कि जो लोग विदेश जाते हैं उन्हें किन किन चीजों का सामना करना पड़ता होगा, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा।

हम सुन रहे थे गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था ये किस फिल्म का गीत है, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, अर्पण फिल्म का यह गीत है। और हमने आपसे और भी एक बात पूछी थी कि परदेश जाकर कितनी समस्याएं होती होंगी, तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से उत्तर दिए हैं कि जब परदेश जाते हैं तो अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां जाकर सारे काम उन्हें स्वयं करने पड़ते हैं। जी, ये बात भी सही है। उसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने ये बात भी बताई कि वहां जाते हैं, वहां मिलता तो सब कुछ है लेकिन अपनापन नहीं मिलता। आपने बात तो बिल्कुल सही कही है कि अपनापन तो नहीं मिलता है। इसके साथ ही कई बार हमारे श्रोताओं ने बताया कि कई बार विदेश जाते हैं तो दूसरी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह उनके देश के नहीं है, तो एक व्यक्ति अपने देश के व्यक्ति का पहले साथ देगा ना कि आपका, तो ये समस्याएं भी, कुछ इस तरह की समस्याएं भी शायद उनके जीवन में आती होंगी। ये सारी समस्याओं के साथ एक और बहुत बड़ी समस्या हमें लगता है कि उनके जीवन में आती होगी, जिसके बारे में भी हमारे श्रोता ने लिखा है कि अपनत्व। उसने लिखा है कि उनके परिवार के लोग, बहुत से लोग परदेश में हैं लेकिन जब जब वो भारत आते हैं उनमें अपनत्व की कमी का एहसास लगता है। ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है जब लोग दूर रहते हैं ना, तो हम और वो एक ही तार पर यानी एक ही बात पर नहीं चल रहे होते हैं, तो कभी कभी जब वो बातें समझ में नहीं आती तो अपनत्व शायद कम लगने लगता होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं, हम बहुत पहले दिल्ली मुंबई नौकरी के लिए गए थे और असफल रहे। घर से 2 किलोमीटर दूर गोरखपुर में प्राइवेट नौकरी करके दिन गुजारे। हफ्ते में बार बार घर आना होता था, फिर हम परदेश के का अनुभव क्या बताएं। जी, बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब बाहर गए थे तो उन्हें सबसे ज़्यादा पापा मम्मी और अपने दोस्तों के साथ पौधे पक्षियों की भी बड़ी याद आती थी, और उससे भी अधिक जिस बेटे को यहाँ छोड़कर गए थे। जी, और उन्होंने ये भी लिखा कि उन्हें 1 बजे की विविध भारती की गीत माला की भी बड़ी याद आती थी। जी, अब हम उसे सुरीला सफर के रूप में आपको सुनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर बरस भारत से करीब 3 करोड़ 30 लाख लोग विदेश की यात्रा करते हैं। 2 करोड़ लोग घूमने जाते हैं, कुछ लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, कुछ काम धंधे के सिलसिले में जाते हैं। जी, हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बताया कि उनका कोई उनका भाई जो है वो बाहर पढ़ने गया था अमेरिका, और उसके बाद फिर वो वापस आ गया, कुछ कुछ कारण हुए और उन्होंने अपने जीवन में कई सारे काम किए। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि इसी विषय को लेकर कि जब जो परदेशी होता है उसकी जिंदगी जो दो दुनिया जो है वो दो में बटी रहती है, एक दुनिया वहां जहां वह अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा होता है और दूसरा जहां वह लौट कर आना चाहता है। हर त्योहार, हर खुशी, हर दुख में सबसे ज्यादा अपने घर की कमी महसूस होती है। उसे मालूम है कि मेहनत से किसी अपने की आंखों में खुशी आएगी और परदेशी शरीर से भले दूर हो जाए लेकिन उसका मन हमेशा अपने गांव, अपने शहर, अपने लोगों के बीच में रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब परदेश जाने वालों की तो बहुत सारी बातें हमने कर ली और परदेश जाने वालों की समस्याओं के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अभी हमको ये बता दीजिए कि अगला जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं उस गाने को संगीतबद्ध किसने किया, यानी संगीतकार कौन है। पर इसके साथ एक बात और बताइए कि अगर आपको कभी मौका मिलता, कभी एक चांस मिले, एक मौका मिले अपने देश से बाहर जाने का, वापस आने का भी चांस है, यानी आप बाहर जा रहे हैं तो आप वापस भी आएंगे कुछ ही दिनों में, कुछ दिनों के लिए परदेशी होने का मौका मिले, तो आप अपने देश से कहाँ जा

हम सुन रहे थे ये गीत मिस्टर नटवरलाल, फिल्म से लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल। और हमने आपसे पूछा कि इसके संगीतकार कौन हैं, तो आप सबने सही बताया, इस गीत के संगीतकार राजेश रोशन हैं। और हमने आपसे पूछा कि अगर आप कहीं जाना चाहेंगे, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे उत्तर दिए कि हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि अब हमें विदेश नहीं जाना, बहुत दूर है, हाँ अमृतसर, कश्मीर और मुंबई आना है विविध भारती में। जी ज़रूर, स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे कोई परिवार के जन हैं जो फ्लोरिडा, अमेरिका में और कतर में रहते हैं, तो वो देश वो घूमकर आए हैं, तो ऐसी कोई उनकी ख्वाहिशें ज़्यादा दिख नहीं रही हैं। इसके साथ ही कई सारे लोग का ये कहता है इंग्लैंड जाना है, कोई कहता है स्विट्जरलैंड जाना है, किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी को कहीं जाना है, सभी को सभी जगह जाकर घूमकर आना है और घूमकर वापस आना है, है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक विचार रखते हैं कि जब हम बाहर जाएं तो वापस आएं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे पति जब छोटे उनके पति जब उनके बच्चे छोटे थे तब वो एनजीसी में बहुत अच्छी जॉब करते थे, तो वो चले गए तो बच्चों के साथ सास ससुर देवानंद के साथ रह गए, उनको भी बहुत तकलीफ हुई और बच्चों के साथ सबके साथ रहने के बाद भी तकलीफ तो इनको भी हुई, तो उनका कहना है कि बाद में उनके पति वापस आ गए तो घर बड़ा खुशनुमा हो गया। हमारे एक श्रोता ने बहुत ही आवश्यक बात लिखी, वो लिखते हैं कि जब बाहर जाते हैं तो ट्रेन में रिजर्वेशन की समस्या आती है दीपावली आदि त्योहारों के समय अपने परिवार तक लौटने के लिए। जी हाँ, ये समस्या भी, जब भारत के लोग भारत में ही किसी और शहर में काम करते हैं तो ये समस्या तो आती है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं विदेश में खाने पीने की समस्या होती है, अमेरिका में 97% लोग मांसाहारी हैं और भारत में शाकाहारी लोग निवास करते हैं, और मांसाहार और शाकाहार की तो समस्या है, उसके साथ एक और समस्या है स्वाद की। हमारा स्वाद अलग है, उनका स्वाद अलग है, हम मसालों भरा भोजन करते हैं और वहाँ पर वैसा भोजन मिलता नहीं, तो शायद समस्या तो होती है। और हमारे एक श्रोता लिख रही है इस चीज़ के लिए बड़ी सकारात्मक बात लिखी है कि उनकी बेटी जब बाहर गई थी उसे घर की बड़ी याद आती थी, धीरे धीरे नए माहौल में ढल गई, अब छोटी बड़ी समस्या का सामना खुद करती है और आत्मविश्वास भी उसका बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है, ये सारी बातें तो चल रही हैं, लेकिन एक बड़ा गंभीर सा प्रश्न मेरे दिमाग में आया है अभी आपसे बात करते करते, हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों को पढ़ते पढ़ते, कि जब भारत के शिक्षित बच्चे विदेश जाते हैं तो विदेश जाने के बाद उनका क्या होता होगा, यानी हमारे भारत का क्या नुकसान होता होगा और भारत का क्या लाभ होता होगा, यानी हमारे देश का क्या लाभ या क्या नुकसान हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए इस गीत के साथ कि हमारे देश का जब पढ़ा लिखा बच्चा विदेश जाता है तो हमारे देश का क्या लाभ है और क्या हानि है, जरूर से बताइए। और ये गीत मैं आप सबको सौंप रही हूँ और मुझे विश्वास है कि ये गीत तो आप सबकी लिस्ट में पक्का होगा और सबकी पसंद का ये गीत है, सुरेश वाडकर और बेला की आवाज में ये गीत है, समीर के बोल है, नदीम श्रवण का संगीत है, बताइएगा फिल्म कौन सी है।

जी, आप सबने सही पहचाना, हम राजा हिंदुस्तानी फिल्म का यह गीत सुन रहे थे। और हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि आप अगर भारत का जो शिक्षित बच्चा है वो अगर विदेश जाता है तो क्या होता है, इसका उत्तर हम आपसे सुनना चाहेंगे। ज़रूर से इसका उत्तर दीजिएगा। और बहुत खूबसूरत सा बात है कि हमारे श्रोता बता रहे हैं कि वो जब विदेश, वो शाकाहारी हैं विदेश, क्या उन्हें भारत में भी दिक्कत आती है कई बार। अच्छा, अब हम विदेश को छोड़कर जब हम अपने ही देश में आते हैं और अपने गाँव को छोड़कर बाहर जाते हैं, तो जाने के लिए या आप कभी उस जगह पर काम करने के लिए गए होंगे तो कई सारी चीज़ें भी तो नई नई मिलती है ना, कई सारे रिश्ते मिलते हैं, कई सारे लोग मिलते हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ मिलती हैं, उन सब संस्कृतियों के साथ भी जुड़ जाते हैं। और जो विदेश जाकर रहते हैं वो लोग भी अपने जीवन में बड़ी अलग तरीके से अपनी एक दुनिया सजाते हैं। हाँ, रिश्ते जो अपने रक्त के हैं ये अपने हैं, वो छूट भी जाते हैं। तो जल्दी से बताइएगा कि कभी कोई ऐसा मजबूत रिश्ता आपका छूटा है जो आपको छोड़कर कभी चला गया हो?

हम सुन रहे थे माचिस फिल्म का ये गीत हरिहरन सुरेश वाडकर विनोद सहगल और केके की आवाज में गुलजार के बोल और विशाल के संगीत के साथ। हमने आपसे प्रश्न पूछा कि भारत के पढ़े लिखे बच्चे जब विदेश जाते हैं तो लाभ होता है हानि होता है, जो भी आपके मन में विचार है वो आप अवश्य रखें। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से उत्तर दिए हैं कि कई बार विदेशों में गए बच्चे के माँ बाप इतने अकेले हो जाते हैं कि मृत्यु पर अगल बगल के पड़ोसियों को भी पता नहीं चलता, और जब तक 3-4 दिन बाद फोन करे तब पता पड़ता है, और कई बार वीजा आदि की समस्याओं के कारण भी कई सारी चीजें होती हैं। हमारे एक और श्रोता लिखता है, रिश्ता कैसा भी हो दर्द बड़ा सहनीय होता है, उसे भूलना बड़ा कठिन है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां रहती हैं कि हमें दूर जाना भी होता है, दूर जाकर भी दिल तो उस इंसान से जुड़ा ही रहता है, क्योंकि रिश्ते कांच के नहीं होते जो टूट जाएं, दिल से जुड़े होते हैं। कितनी सकारात्मक बात आपने कही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शिक्षित बच्चे विदेश जाकर नौकरी करते हैं, वहां की उपलब्धियों से उनका हुनर दिखाई देता है, राष्ट्र और मजबूत होता है, पर अपने देश में केवल नाम की प्रसिद्धि मिलती है, लाभ कुछ नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने देश में जब काम करते हैं तब आपको लाभ बहुत मिलता है, यहाँ पर रहकर भी कई सारे बच्चों ने बहुत कुछ कमाया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो जगदलपुर गए थे बस्तर, वहाँ का कल्चर, वहाँ का चित्रकूट जलप्रपात, हरे भरे जंगल, हरियाली उनको आज भी याद है, मन मचल जाता है। हाँ, बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत खूबसूरत जगह है, बड़ा आनंद आता है जगह पर, वो बड़ा अपनापन भी है लोगों में। वैसे भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाते हैं हर जगह प्रेम ही मिलता है। हमारे कौशोता लिखते हैं कि आजकल विदेश जाने वाले विद्यार्थी वापस आते तो अपने साथ अंग्रेजी मैम लेकर आते हैं। नहीं, ऐसा सभी नहीं करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब हमारे देश के बुद्धिजीवी जब उसी ज्ञान को प्रदेश में जाकर सेवाएं देते हैं तो कभी कभी गर्व होता है, उससे अधिक दुख भी होता है कि इसी ज्ञान को भारत माँ को समर्पित करते तो करोड़ों लोग लाभान्वित होते। मैं कई बच्चों को जानती हूँ जो 5-6 साल बाद वापस आ गए, क्योंकि वहाँ उन्हें अपनापन और अपने देश की हर बात याद आती थी, इसलिए वो वापस आ गए। कितने अच्छे बच्चे हैं जो अपने देश के लिए वापस आ गए। इसके साथ उन्होंने, हमारे श्रोता लिखते हैं, अपने बच्चों को कहा कि कम कमा कर भी अपने देश में रहकर तरक्की करने की सलाह दी गई है। हमारे श्रोता ने लिखा, भारत का बच्चा विदेश क्यों जाए, इस देश में अपार संभावनाएं हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं, जब हमारे देश के बच्चे विदेश जाते हैं तो देश को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई महत्वपूर्ण लाभ होते हैं, इससे विदेशी मुद्रा रेमिटेंस की प्राप्ति होती है, तकनीकी एवं ज्ञान का हस्तांतरण और वैश्विक मंच से देश की शाख बढ़ती है, जिससे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव मजबूत होता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोताओं ने, एक ने और वही विवाह वाली बात को कहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब, जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है। मैं जब विद्यालय में पढ़ा करती थी तब मेरे शिक्षक ने एक बात बहुत अच्छी सिखाई थी कि जब आप विदेश जाते हैं तो एक काम करिए, आप विदेश जाइए लेकिन विदेश जाकर वहाँ कुछ रोज रहकर वापस आ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो आप सीख कर आएंगे, देख कर आएंगे, वो अपने देश में अगर लगाएंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, और वो भारत में आकर उस चीज़ को लगाएगा तो

भारत की साख और बढ़ जाएगी। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, आप भी अपने लोगों को बता सकते हैं। हमारे लोग लिखते हैं कि पहले लोग अपने प्रदेश से दूसरे राज्य में कमाने जाते थे तो उन्हें परदेश कहा जाता था, और ऐसा उन्होंने बताया। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं उनकी भाई की कई ट्रांसफर कई जगह होती है, कई सारी संस्कृति से वो शिक्षा भी लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बहुत सारी बातें हैं कि अलग अलग वर्गों में अलग अलग लोग बाहर जाते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो हम उनसे बस यही बात कह सकते हैं कि आप चले तो गए हैं लेकिन आपका देश आपसे बहुत प्यार करता है। इस गीत के गायक कलाकारों के नाम बताइए।

हम सुन रहे थे ये गीत, आप लौट चलें, और हमने आपसे पूछा इसके गायक कलाकारों के बारे में, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, उदित नारायण और अलका याग्निक इस गीत के गायक कलाकार हैं। हमारे श्रोता जो हैं उन्होंने एक बड़ी दिल को कचोटने वाली बात, या कहें हृदय से रोने वाली बात लिख दी है, जहां पर सच में हर किसी का हृदय द्रवित हो जाएगा। वो लिखते हैं कि जब पहली बार बेटा विदेश जाता है तो माँ का कलेजा मुंह में आ जाता है और माँ को बहुत घबराहट होती है, होती ही होगी ना, अपने हृदय के टुकड़े को अपने से दूर भेजने में। हमारे श्रोताओं ने कई चीज़ें बताई हैं विदेश जाने पर, कि विदेश चले जाते हैं, परिवार दूर हो जाता है, पर कई बार उस ओर से देखें तो उनकी भी मजबूरी होगी जो उन्हें जाना पड़ा। अपने घर को छोड़कर कोई नहीं जाना पड़ता, पर कई बार रोटी उन्हें दूर खींच ले जाती है और कई बार तो वापस आने का रास्ता भी नहीं मिलता। और ऐसे समय में हम और आपने जो चिट्ठियां लिखी होती हैं, उन्हें संदेश भेजे होते हैं, उन्हें प्यार भेजा होता है, वो उनका साथ देता है। हमारे श्रोता बताते हैं उन्होंने ये फिल्म करतारपुर सनम सिनेमा में देखी हुई थी। हमारे श्रोता बताते हैं कि वो नेपाल घूमने जाते थे और दोस्तों को कहते थे कि विदेश गए हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, घूमने तो गए हैं, तो चलिए।

एक काम कीजिए, जितने लोग आपसे दूर रहते हैं या जो लोग दूर रहते हैं, दोनों आपस में चिट्ठियां जरूर भेजिए। व्हाट्सएप, मैसेज, वीडियो कॉल, ये सब तो होता रहेगा, लेकिन चिट्ठियां एक बार नहीं, कई सौ बार एक दूसरे की याद, एक दूसरे के प्यार में डुबो देती हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गीत, और बताइएगा ये गीत गाया किसने है।

0: विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सदस्यों से सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की है। विधानमंडल के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर पहुंचकर हंगामा किया। विपक्ष नीट परीक्षा पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा था। हालांकि इस दौरान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं पहुंचे थे। बाद में दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार के भाषण और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कल 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सत्र के दौरान राज्य के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने 87,383 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इसमें राज्य योजना मद में 24,370 करोड़ रुपये की राशि जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अलग से राशि रखी गई है। सत्र के दौरान 10 विधेयक सदन के पटल पर रखे गए हैं। गौरतलब है कि मानसून सत्र 24 जुलाई तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, यदि दोनों सक्रिय रहें तो वे अत्यंत उत्पादक साबित होते हैं। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों का मंगल होता है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों के सत्र में 19 बैठकें होंगी। वहीं केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सत्र के दौरान लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय की अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई CCSU ने सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पिछले 6 महीनों के दौरान 692 कानूनी नोटिस जारी किए हैं। CCSU के पुलिस महानिरीक्षक रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि इस अवधि में 1320 आपत्तिजनक पोस्ट और URL हटवाए गए, जबकि 529 फर्जी सोशल मीडिया ID को निष्क्रिय कराया गया। इसके अलावा साइबर अपराध से जुड़े 475 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर 103 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध, फर्जी सोशल मीडिया ID, डीप फेक और भ्रामक तथा सांप्रदायिक सामग्री पर 24 घंटे सतत निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज कैमूर, गोपालगंज, रोहतास और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सीवान और वैशाली जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है। मुंगेर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण क्यूल जमालपुर रेल खंड पर कजरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर लगभग 2 फीट पानी जमा हो गया है, जिससे रेलवे प्रशासन ने इस रेल खंड पर रेलगाड़ियों का परिचालन अस्थायी रूप से रोक दिया। इससे कई महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां विभिन्न स्टेशनों पर घंटों तक खड़ी रहीं, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी संदेश का खंडन किया है। इसमें दावा किया गया था कि सरकार ने नए मसौदा नियम बनाए हैं।

और इसी के साथ हमारे एक और श्रोता ने एक चिट्ठी लिखी है, छोटी सी, और वो चिट्ठी ऐसी है कि देसी बायना सब जग मीठा। यह विद्यापति जी ने कहा है, बिल्कुल अपना देश जहां है, जहां की मिट्टी, वहां से खान पान, वहां से गोली, और वहां अपनापन दुनिया की सारी सुख समृद्धियों से ऊपर है। पर दुनिया कहीं भी बहुत सुख समृद्धि हो, सोने चांदी के पलंग बिछावन है, पर हमें तो अपने भारत की खटिया ही बहुत प्यारा है। जी धन्यवाद। और हम सुन रहे थे नाम फिल्म का यह गीत, पंकज उदास और साथियों ने इसे गाया, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आज का सुरीला सफर यहीं पर समाप्त।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बिहार

इन नियमों के कारण 11 करोड़ टीवी चैनल बंद हो जाएंगे और केबल तथा डीटीएच शुल्क 4 से 6 गुना बढ़ जाएंगे। इसमें भारी लाइसेंसिंग शुल्क भी लागू होंगे और लाखों नौकरियां खत्म हो जाएंगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा है कि सरकार ने ऐसा कोई नियम पेश नहीं किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप नाजिया से इलाकाई खबरें सुनिए। बिहार कानून साजिया का 5 रोजा मानसून इजलास आज से शुरू हो गया है। असेंबली में स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने अरकान से इजलास को बाजाब्ता चलाने में ताउन की अपील की है। कानून साजिया के मानसून इजलास की कार्रवाई शुरू होने से कबल ही हिजब इख्तलाफ के अरकान ने असेंबली के मेन गेट पर पहुंचकर हंगामा किया। अपोजिशन नीट इम्तहान पेपर लीक और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। हालांकि इस दौरान असेंबली के अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं पहुंचे थे। बाद में दोनों ऐवानों की कार्रवाई शुरू हुई और असेंबली स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार की तकरीर और अनजहानी लीडरों को खराज अकीदत पेश करने के बाद कल 11 बजे तक के लिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। इजलास के दौरान रियासत के वजीर मालियात विजेंद्र प्रसाद यादव ने 87,383 करोड़ रुपए का उबूरी बजट पेश किया। इसमें रियासती मंसूबा मद में 24,370 करोड़ रुपए की रकम है, जबकि मरकज साज मंसूबों के लिए अलग से रकम रखी गई है। इजलास के दौरान 10 बिल ऐवान में पेश किए गए। वाज़ह रहे कि मानसून इजलास 24 जुलाई तक चलेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मानसून हो या मानसून इजलास, अगर दोनों सरगर्म रहें तो वो इंतहाई नतीजा खेज साबित होते हैं। पार्लियामेंट के मानसून इजलास की शुरुआत से कबल मीडिया को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब दोनों बेहतर होते हैं तो इससे कौम की फलाह और तमाम जानदारों की भलाई होती है। वहीं हमारे नामा निगार ने बताया कि मानसून इजलास 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों के इजलास में 19 मीटिंगें होंगी। वहीं मरकजी वजीर कानून और इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल ने इजलास के दौरान लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट जजों की तादाद तरमीम बिल 2026 पेश किया। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956 में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़कर मौजूदा वक्त में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। साइबर क्राइम और सिक्योरिटी यूनिट CCU ने महफूज डिजिटल माहौल को यकीनी बनाने के लिए गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान 692 कानूनी नोटिस जारी की हैं। CCSU के IG रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मुद्दत में 1,320 काबिल एतराज पोस्ट और URL हटवाए गए हैं, जबकि 529 फर्जी सोशल मीडिया ID को गैर फ़ाल कर दिया गया है। इसके अलावा साइबर क्राइम से जुड़े 475 मामलों में FIR दर्ज करके 103 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस IG ने कहा कि खवातीन के खिलाफ साइबर क्राइम, फर्जी सोशल मीडिया ID, डीप फेक, गुमराहकुन और फिरकावराना मवाद पर 24 घंटे मुसलसल निगरानी रखी जा रही है। रियासत में मानसून की सरगर्मी से बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना समेत रियासत के बेशतर जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने आज कैमूर, गोपालगंज, रोहतास और मगरबी चंपारण जिले में तेज बारिश, जबकि औरंगाबाद, भोजपुर, गया, जहानाबाद, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सिवान और वैशाली जिले में तेज बारिश की पेशनगोई जारी की है। दीगर अजला में भी बारिश का इम्कान है। मुंगेर जिले में मुसलसल हो रही तेज बारिश के सबब क्यूल जमालपुर रेलवे सेक्शन पर कजरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर तकरीबन 2 फीट पानी जमा हो गया है। इसके बाद इंतजामिया ने इस सेक्शन पर आमदोरफ्त आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिया। इससे मुसाफिरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मरकजी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर नशर हो रहे एक फर्जी पैगाम की तर्दीद करते हुए दावा किया था कि हुकूमत ने नए मसवदे तैयार किए हैं। इन जब्तों के सबब 11 करोड़ TV चैनल बंद हो जाएंगे और केबल और DTH फीस 4 से 6 गुना तक बढ़ जाएंगी। इसमें भारी लाइसेंसिंग फीस भी नाफिज होंगी और लाखों मुलाजमत खत्म हो जाएंगी। PIB की फैक्ट जाँच यूनिट ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि हुकूमत ने ऐसा कोई जब्ता पेश

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। लिए सुनिए रोजगार सूचना। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL असिस्टेंट के कुल 500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.nationalinsurance.nic.co.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के कुल 119 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग के कुल 150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
2: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
3: टू पुट फोर्थ माई व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
4: आई अपील टू मेंबर्स अक्रॉस ऑल साइड्स ऑफ द हाउस टू अपहोल्ड द डिग्निटी, डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ दिस ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन। व्हाइल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर इंटेग्रल टू पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैनर दैट प्रिजर्व्स द सैंक्टिटी ऑफ द हाउस।
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक

0: पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित चार अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुटको पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर

0: राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
1: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे, जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया, वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज 4 धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और 4 धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले 2 दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनोव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे ये गीत आज और कल फिल्म से आशा भोसले की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में एक और गीत जिसे गाया है सुमन कल्याणपुर ने, नूर देवासी ने इसे लिखा है, विपिन ने इसे संगीतबद्ध किया है। बागी शहजादा फिल्म से ये गीत है।

0: ये गीत हमने सुना गुमराह फिल्म से, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ में, साहिर लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
6: हो तो

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है फिल्म दिल ही तो है से आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और रोशन का है संगीत।

0: के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत से सजा हुआ यह गीत जिसे जो कि है फिल्म मेरे महबूब से।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बद्दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त

0: मिल गया।
1: एक और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और भी कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सही परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत, ब्लफ मास्टर फिल्म से मुकेश की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ आज हैं चंचल वर्मा। तो चंचल जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तो आपका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत नमस्कार।
2: नमस्कार मंजरी, आपको भी और हमारे सभी सुनने वालों को नमस्कार। और जब भी हमारी ये जोड़ी साथ में आती है ना, तो बहुत सारे श्रोता इस बात का कमेंट करते हैं कि दो वर्मा बहनें या दो वर्मा सखियां साथ में हैं।
1: क्या बात है, देखो
2: तो यूं तो हमारी मुलाकात होती है, लेकिन इस मंच पर आज हम वाकई बहुत दिन के बाद साथ में आए हैं।
1: बिल्कुल, और बड़ा अच्छा भी लग रहा है। और इससे पहले भी हम लोग कुछ कुछ गप्पे मार रहे थे, तो उसमें भी बड़ा आनंद ले रहे थे कि व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन की ही बातें चल रही थी, है ना। और आज देखो हम लोग व्यंजन की बात करने वाले हैं।
2: बारिश के मौसम में कुछ खास व्यंजन बनते हैं
1: जी,
2: इसे चाट पकौड़ी और तली हुई चीजों का एक खास मजा होता है खाने का। लेकिन आज जिन व्यंजन की हम बात करेंगे, ना तो वो चाट पकौड़ी है ना कोई तली हुई चीजें हैं।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन है वो पंजाब के बहुत ऑथेंटिक व्यंजन, पारंपरिक व्यंजन है, जिन्हें बड़े चाव से बनाया जाता है, खाया जाता है। और जो हमारे सुनने वाले श्रोता पंजाब के आसपास रहते हैं या वहां से ताल्लुक रखते हैं, वो जरूर इनके बारे में जानते होंगे और रेसिपीज हमें लिखकर भेज रहे होंगे।
1: बिल्कुल, और वो भाई व्यंजन भी तो बता देते हैं कि दाल मखनी और पिन्नी के बारे में हम बात करेंगे।
2: एक है ऐसी सब्जी जो खास मौके पर बनाई जाती है, या पंजाबी घरों में तो आमतौर पर दाल मखनी बनती ही रहती है। और मीठे व्यंजन की बात करें तो हम पिन्नी बनाएंगे।
1: बिल्कुल, और बारिश के पानी की बचत कैसे की जाए इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
2: हाँ, क्योंकि बारिश का पानी हमें, यानी कि बारिश का मौसम तो होता है सिर्फ 3 महीने के का, कभी कभी 4 महीने भी चलता है या कहीं कहीं 2 महीने भी रहता है, लेकिन पानी की जरूरत तो पूरे 12 महीने होती है।
1: बिल्कुल,
2: ताउम्र होती है। और यही पानी होता है जो 3 महीने बरसेगा, लेकिन बाकी के जो और 9 महीने हैं, इसी पानी से हमें काम चलाना है, इसीलिए इसकी बचत बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो इसके बारे में हमारे साथियों ने भी बहुत सारे कमेंट्स भेजे हैं। और कथा सुधा के अंतर्गत दो बहने का भाग 3 अंतिम भाग हम सुनवाएंगे। मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी है ये। तो उससे पहले चंचल एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

0: तो चंचल कितना प्यारा सा ये गीत अभी हम लोगों ने सुना।
1: गृह प्रवेश फिल्म का बहुत सुंदर गीत था, और इसके बाद हम सुनने वाले हैं कहानी। तो कथा सुधा के अंतर्गत आज मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने का तीसरा और अंतिम भाग हमारी सखियां और सखा सुनेंगे।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने। पिछली कड़ी में आपने सुना,
3: दो बहने दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई, तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है।
4: इस दो साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी दो चार दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं।
3: आखिर रामदुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से रामदुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई।
4: 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है। क्या पहनूं क्या ओढूं, तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और राम दुलारी रानी बनी बैठी।
3: ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे।
2: रूप कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? आइए सुनते हैं आज इस कहानी की तीसरी और अंतिम कड़ी।

0: हफ्ता तक रूप कुमारी हैजान की हालत में रही, बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, शोहर को कोसती, अपनी तकदीर को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, वरना नई आफत आ जाती, लेकिन अब किसी काम से उसे दिलचस्पी न थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीजों से उसे दिली ताल्लुक हो गया था, जिनके सफाई और सजावट में वो मुनहमिक रहा करती थी, उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखती। घर में एक खिदमतगार था, उसने देखा कि बहू जी खुद घर की तरफ से लापरवाह है, तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। दोनों बच्चे भी माँ से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साए से भी भागते थे। जो भी कुछ उनके सामने आ जाता जहर मार कर लेते, दफ्तर चले जाते, दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ लेकर कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ बोलते रूह फना होती थी, वहां उनकी तफ्तीश जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिन बाद जमाने से मसालहत कर ली थी और उस वक्त से झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाइयां साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने उसे अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई, उमानाथ पर बेहद गुस्सा आया।
1: क्या करते हैं आप, उन्हें यहां लाकर क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। अब इस हालत में देखकर गुरु सेवक ने दिल में क्या समझा होगा हम लोगों को, मगर आपको अकल आई ही कब थी? मैं अपना पर्दा ढांकते फिरती हूं और आप उसे खोलते फिरते हैं, जरा भी शर्म नहीं। जैसे बेहयाई का जामा पहन लिया आपने तो, खामख्वाह मुझे जलील करते रहते हैं बस।
0: दुआ देकर आफियत पूछी और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा,
2: आज भाई साहब ने मेरी दावत की है, मैं इनकी दावत पे तो ना आता, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हारी दीदी का सख्त तकाजा है, तो वक्त निकालना पड़ा।
0: रूप कुमारी ने बात बनाई।
1: हाँ, वो तुमसे उस दिन रवा रवि में मुलाकात हुई, देखने को जी लगा हुआ था।
2: जी
1: जी।
0: गुरु सेवक ने दरो दीवार पर नजर डाली और कहा,
2: ये घर दीदी, इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी, हैं?
0: रूप कुमारी को अब मालूम हुआ कि यह कितना बदमजाक है, दूसरों के जज्बात की उससे बिल्कुल परवाह नहीं। ये इतनी सी बात भी नहीं समझता कि दुनिया में सभी तकदीर वाले नहीं होते, लाखों में कहीं एक ऐसा भगवान निकलता है। किसी कदर तुर्श होकर बोली,
1: पिंजरे में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में मासूम चिड़ियां रहती हैं, कटघरे तो दरिंदों का मस्कन होता है।
0: गुरु सेवक किनाया न समझ सका, बोला,
2: मुझे तो इस घर में, ऐसे घर में हफ्स हो जाएगी, दम घुट जाए। मैं आपके लिए दीदी, मैं आपके लिए अपने घर के पास एक घर तय कर दूंगा, खूब लंबा चौड़ा, और आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। हाँ, सुन रहे हैं दीदी, मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी तो उन्हीं के मकान में रहता हूं, सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों, सब मेरी इख्तियार में है, मेरी इख्तियार में, सुन रहे हैं आप दीदी?
1: सुन रही।
2: जिसको जो मकान चाहूं दे दूं, सब मेरे इख्तियार में है, किराया लूं या ना लूं। अब मैं आपके लिए अच्छा सा मकान ठीक कर दूंगा दीदी, जो सबसे अच्छा है। मैं आपका बहुत अदब करता हूं, मैं बहुत अदब करता हूं आपका, आप मेरी दीदी है। हाँ,
0: रूप कुमारी समझ गई हजरत इस वक्त नशे में है, जब ही बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उनकी आंखें सिकुड़ गई हैं, रुखसार कुछ फूल गए हैं, जबान में हल्की सी लग्जिश थी जो हर लम्हा नुमाया होती जाती थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा और बेगैरत बन गया था, जिसे कुछ देखकर नफरत होती थी। उसने एक लम्हा बाद फिर बहकना शुरू किया,
2: दीदी आपके लिए मेरी जान हाजिर है, दीदी आपके लिए मकान का इंतजाम करना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, मैं

0: मिसेज लोहिया का मुख्तार हूं। कौन हूं? मुख्तार। सब कुछ मेरे इख्तियार में है, सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूं वो आंख बंद करके मंजूर कर लेती है। मुझे अपना बेटा समझती है। क्या? बेटा, बेटा समझती है मुझे। मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूं। आपको बताता हूं, मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए का नौकर रखा था। कितना? 20 रुपए का। बड़ा मालदार आदमी था, मगर यह किसी को मालूम न था कि उसकी दौलत कहां से आती थी। मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं था, किसी को नहीं, कोई नहीं जानता था। वो खुफिया फरोश है, किसी से कहना नहीं दीदी, किसी से कहना नहीं। वो खुफिया फरोश था, कोकेन बेचता था, लाखों की आमदनी थी उसकी। मैं भी अब वही काम करता हूं। हर शहर में हमारे एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में यकता कर दिया। जी हां, मजाल है कि कोई मुझे गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूंस ठूंस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूं। कोई चू नहीं कर सकता। हिसाब में लिखता हूं 1,000, देता हूं 500, बाकी बाकी यारों का है। बेदरेग रुपये आते हैं, बेदरेग खर्च करता हूं। और वो बुढ़िया, बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है, साधु संतों की सेवा में लगी रहती है और बंदा चैन करता है। जितना चाहूं खर्च करूं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। दीदी, एक मिनट, ये
1: क्या
0: ये
1: है?
0: थोड़े से रुपए।
1: ये थोड़े से रुपए नहीं है, ये तो पूरा नोटों का बंडल है। कि इतने रुपए?
0: दीदी, क्या? ये आपके कदमों का सदका है। मुझे दुआ दीजिए। जो ईमान और उसूल के उपासक हैं, उन्हें दौलत लात मारती है। दौलत तो उन्हें पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन, ईमान, सब कुछ निसार करने को तैयार है। मुझे बुरा न कहिए, जितने दौलतमंद हैं सब लुटेरे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। कल मेरे पास रुपए हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। कौन पूछता है कि ये दौलत मुझे कहां से मिली? किसी को भी देख ली, जो है सो अपने फन में माहिर है। काम इतना सा करते हैं, पैसा इतना सारा बना लेते हैं, हैं? अगर उनकी आमदनी जायज है तो मेरी आमदनी भी जायज है ना दीदी? जायज है ना? जी हां, जरूरतमंदों को लूटकर मालदार हो जाना हमारी सोसाइटी का पुराना दस्तूर है। और दीदी, मैं भी वही करता हूं जो दूसरे करते हैं। और मेरी जिंदगी का मकसद है ऐश करना। मैं भी ऐश करूंगा दीदी, मैं भी लूटूंगा, समझे ना? ऐश करूंगा और खैरात करूंगा। कहिए तो गिनवा दूं, यहां कितने लोग जुआ खेलकर करोड़पति हो गए, न जाने कैसे कैसे गलत काम करके करोड़पति हो गए लोग। दीदी, अब मैं भी तो वही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं? मैं भी ऐश करूंगा, लूटूंगा, मैं भी ऐश करूंगा, खैरात भी करूंगा।

0: मानाथ ने आगे कहा,
1: अरे मिस्टर गुरुसेवक, क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है।
0: गुरुसेवक उठा, पैर लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा, फिर संभल कर उठा, झूमता झामता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली। यहां बैठे बैठे उसका दम घुट रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी, जो तरगीबें कई दिन से अच्छे अच्छे दिल आवेज रूप भर कर उसके सामने आ रही थी, आज उसे उनकी असली मकरूह घिनावनी सूरत नजर आई। जिस सादगी, खुलूस और इसार की फिजा में अब तक जिंदगी गुजर रही थी, उसमें हरामकारी और आबला फरेबी का गुजरना था। इन दामों में वो दुनिया की सारी दौलत और सारे ऐश भी खरीदने को आमादा न हो सकती थी। अब वो रामदुलारी की तकदीर से अपनी तकदीर का बदला न करेगी। वो अपने हाल में खुश है, रामदुलारी पर उसे रहम आया, जो नमूद और नुमाइश के लिए अपने जमीर का खून कर रही है। मगर एक ही लम्हा में गुरु सेवक की तरफ से उसका दिल नर्म पड़ गया।
2: जिस सोसाइटी में दौलत पुछती है, जहां इंसान की कीमत उसके बैंक अकाउंट और शान और शौकत से आंकी जाती है, जहां कदम कदम पर तरगीबों का जाल बिछा हुआ है और सोसाइटी का निजाम इतना बेढंगा है कि इंसान की हद, गजब और फिरोमायगी के जज्बात को उकसाता रहता है, वहां गुरु सेवक अगर रौ में बह जाए तो ताज्जुब का मुकाम नहीं।
0: उस वक्त उमानाथ ने आकर कहा,
3: सुनो, यहां बैठा बैठा क्या बक रहा था भाई? मैंने तो उसे रुखसत कर दिया। जी डरता था कहीं उसके पीछे पुलिस ना लगी हो, कहीं मैं नाकर्दा गुनाह में पकड़ा ना जाऊं।
0: रूप कुमारी ने उसके तरफ माजरत ख्वाहाना नजर से देख कर जवाब दिया,
2: वही अपनी खुफिया फरोशी का जिक्र कर रहा था।
3: मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने की दावत दे गया है, शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए।
2: जी नहीं, आप क्लर्की किए जाइए, इसी में आपकी खैरियत है।
3: मगर क्लर्की में ऐश कहां, क्यों ना साल भर की रुखसत लेकर जरा उधर का भी लुत्फ उठाऊं।
2: लेकिन मुझे अब वो हवस नहीं रही।
3: मगर एक बात तो है।
2: क्या?
3: मैं तुमसे आकर ये किस्सा कहता तो तुम्हें यकीन ना आता।
2: हाँ, यकीन तो ना आता, और मैं तो कयास भी नहीं कर सकती कि अपने फायदे के लिए कोई आदमी दुनिया को जहर खिला सकता है।
3: मुझे सारा किस्सा मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब पिला दी, नशे में बहकने लगा और सब कुछ खुद ब खुद कबूल कर लिया।
2: वैसे ललचाई तो तुम्हारी तबीयत भी थी।
3: हाँ, ललचाई तो है, मगर ऐप करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है ना, वो कहां से लाऊंगा?
2: ईश्वर ना करे कि वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है, मालूम नहीं रास्ते में उस पर क्या गुजर है।
3: नहीं, वो तो अपनी कार पर थे।
0: रूप कुमारी एक मिनट तक जमीन की तरफ देखती रही, फिर बोली,
2: सुनो, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो अभी। हाँ, ले चलो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है, उसके चारों तरफ दरिंदे घात लगाकर बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं। मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं।
4: कथा सुधा में आपने सुना मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें की तीसरी और अंतिम कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है, रूप कुमारी रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी ममता सिंह, उमानाथ अजेंद्र जोशी, गुरु सेवक जयंत पात्रिकर, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। अगले हफ्ते कथा सुधा में एक नई कहानी के साथ हाजिर हो जाएंगे।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। और अब हम बात करेंगे मौसम से जुड़ी, यानी बारिश की कुछ बातें। बारिश के पानी की बचत क्यों जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: क्यों करनी चाहिए, और अगर हम बात करें कि संदेश हमारे श्रोताओं के आ रहे हैं, तो आज एक बड़ा अच्छा संदेश मैंने पढ़ा। किसी श्रोता ने लिखा है कि आज विषय बहुत कम है, शायद विषयों की कुछ कमी पड़ गई है, इस तरह से हमारे श्रोता ने लिखा है।
1: अच्छा,
0: तो उनकी बात का जवाब सिर्फ मैं इतना देना चाहूंगी कि विषयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सोमवार का दिन है और आज के दिन होता है कथा सुधा, जो कि एक बड़ा विषय है जो समय बहुत ज्यादा लेता है। किसी भी कहानी को सुनने के लिए 15, 17, 18 इतने मिनट का समय लग जाता है, और इस दौरान अगर हम बहुत सारे विषय ले लेंगे तो उस विषय के साथ न्याय नहीं हो पाता, उस पर पूरी चर्चा नहीं हो पाती। फिर हमारे श्रोता जो संदेश भेजते हैं हमें बड़े प्यार से, उन संदेशों को भी हम सबको शामिल नहीं कर पाते, जबकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे श्रोता जो हमें संदेश लिखकर भेज रहे हैं उनमें से ज्यादा संदेश उनके हम पढ़कर आप सब तक पहुंचा सकें।
1: बिल्कुल,
0: तो इसीलिए कथा सुधा का दिन था तो हमने विषय थोड़े कम चुने।
1: बिल्कुल, तुमने सही बात कही है, सबको समझ में भी आ गया होगा कि क्या वजह है ना, तुमने रिप्लाई दे दिया। तो चंचल, बारिश का पानी प्रकृति का सबसे शुद्ध और मुफ्त उपहार है। बारिश का पानी जो है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पेड़ पौधों के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। तभी तो इस दौरान सब तरफ हरियाली छा जाती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, और बारिश के दौरान नदियां, नहर, बांध, कुएं, तालाब, बावड़ियां, झील और सागर, ये सब ऐसे जलाशय हैं जिनमें पानी खूब भर जाता है। वर्ष भर इनमें से पानी उपलब्ध रहता है। वर्षा का जल हमारी प्यास ही नहीं बुझाता, बल्कि संपूर्ण जीवन और पर्यावरण के लिए अमूल्य है।
0: और जैसा आपने शुरुआत में कहा ना कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो हमने देखा है बहुत सारे लोग सिर्फ झरनों का जो पानी है वो बोतलों में भरकर लेकर आते हैं, और इस तरह का पानी आजकल तो बाजारों में बिकने भी लगा है, जो कि नेचुरल पानी होता है, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, क्योंकि वर्षा के पानी की और हमें पूरे साल भर इस जल को चलाना
1: है।
0: तो इसीलिए इसकी एक एक बूंद को बचाना बहुत जरूरी है, और इसे इकट्ठा करने के या बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। और पीने के पानी के लिए बात करें फिल्टर करने की और शुद्धिकरण की, तो वर्षा के पानी को भी पीने लायक बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, और घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में भी लाते हैं, जैसे कपड़े धोने हुए, बर्तन साफ करना, फर्श की सफाई, और शौचालय में भी उपयोग किया जा सकता है। सिंचाई के लिए जैसे खेतों, बगीचों और किचन गार्डन की सिंचाई में बारिश का जल बहुत उपयोगी होता है।
0: और मंजरी, मुझे याद है बहुत सारे जो बड़े बड़े कपड़े होते थे, दरियां होती थी, जिन्हें हम आमतौर पर धो नहीं पाते हैं, तो छतों पर बारिश के दिनों में उनको रख दिया जाता था, और फिर महिलाएं उन्हीं पर थोड़ा सा ब्रश चला के उन्हें साफ करके, तो इस तरह से भी वर्षा के जल का उपयोग करते थे।
1: बिल्कुल, और साथ में वो लोग खुद भी नहा के आनंद भी ले लेती थी,
0: बारिश में भीगने का आनंद भी मिल जाता था। और ऐसे कपड़े जिन्हें हाथ से धोना जल्दी से संभव नहीं हो पाता,
1: आज भी चंचल हम लोग यही करते हैं कि जब कभी बारिश होने लगती है ना, तो डोरमेट सारे बाहर डाल देते हैं कि जल्दी से पानी से धार से पड़ पड़ के उनकी धूल निकल जाए, तो इसका एक फायदा मिल जाता है। और चंचल, पशु पक्षियों के लिए वर्षा जल उनके पीने के पानी की जो है वो उसकी मात्रा मिल जाती है उन्हें, और साफ सफाई के काम भी आता है। उद्योगों में शुद्ध किए गए वर्षा जल का उपयोग विभिन्न प्रक्रियाओं में करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्षा जल हरियाली बढ़ाता है, मिट्टी की नमी बनाए रखता है, और जैव विविधता को सहारा देता है।
0: बहुत सारी जगह ऐसी होती है ना, खासतौर पर हम जंगलों की बात करें, जहां पानी डालने पौधों में कोई भी नहीं जाता, तो ये जो बारिश का पानी है ये साल भर तक मिट्टी में जो नमी बन जाती है उससे, उसी से वो जो पेड़ पौधे हैं वो साल भर तक हरे हरे रहते हैं।
1: बिल्कुल, हमने अपने सामने भी देखा है कि मुरझाया सूखा पौधा भी हरा हरा हो गया, पत्तियां निकल आई, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि लगता है बारिश इन लोग के लिए एक मुफ्त उपहार है। और आग बुझाने और आपातकालीन उपयोग, संग्रहित वर्षा का जल जो है उपयोग आता है इन आपात स्थितियों में किया जा सकता है। घर के आंगन या बगीचे में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं जिससे पानी जमीन में समा सके। सीमेंट की जगह जहां संभव हो मिट्टी या इंटरलॉकिंग पक्की सतह रखें ताकि वर्षा का पानी जमीन में जा सके।
0: और बहुत सारे तरीके हैं मंजरी कि हम बारिश के पानी को बचा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, और बहुत सारे जो बड़े सोसाइटी हैं महानगरों में, जो बड़ी बिल्डिंग है वहां पर रेन हार्वेस्टिंग प्लांट लगाए जाते हैं। स्कूल, कार्यालय, किसी भी बिल्डिंग की छत पर गिरने वाला जो पानी है उसको इकट्ठा करके जमीन के अंदर तक पहुंचा दिया, तो बहुत बड़े बड़े टैंक बना

0: जाते हैं, और ये पानी इतनी सारी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है कि उस सोसाइटी में, उस बिल्डिंग में साल भर भी आपूर्ति दे देता है।
1: बिल्कुल। और इसमें छत पर गिरते पानी को पाइप के माध्यम से नीचे लाया जाता है और फर्स्ट फ्लश सिस्टम से गंदे पानी को अलग निकाल दिया जाता है, जिससे धूल, मिट्टी और पत्तियां टैंक में ना जाएं। फिल्टर यूनिट के द्वारा बजरी और चारकोल डालकर पानी साफ किया जाता है और भंडारण टैंक में साफ पानी जमा कर लिया जाता है।
0: और इसका दूसरा तरीका एक ये भी है कि रिचार्ज पिट, इसमें पानी को जमीन में उतारना होता है और इसमें घर या किसी भी भवन जो है, इमारत जो है, उसके पास 3 से 6 फीट का गड्ढा बनाया जाता है। उसमें ईंट, गिट्टी और फिर रेत भरी जाती है। पानी को पाइप से इसमें गिराया जाता है और इस तरह से भूजल स्तर जो है वो बढ़ जाता है।
1: और इसके साथ साथ एक सोक पिट यानी सोखता गड्ढा भी तैयार करना एक साधन है कि रिचार्ज कुओं, हैंडपंपों या बोरवेल के माध्यम से भूजल स्तर बढ़ाना, खेतों में तालाब बनाकर पानी संचित करना भी एक जरिया है, और गाँव में चेक डैम और छोटे बांध बनाना तालाब, झील और पोखरों का संरक्षण एवं गहरीकरण करना होता है।
0: तो इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है हम गीत भी सुनते हुए चले आगे बढ़े।

0: गीत बड़ा सुंदर सुनवाया, लेकिन हम बात कर रहे थे ना बारिश की, बारिश आ चुकी है और कमेंट्स भी आ चुके हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब हम कॉलेज में थे तब हमारी केमिस्ट्री टीचर वर्षा होने पर लैब में रखी हुई कांच की बड़ी बोतलें और बड़े प्लास्टिक के ड्रम हमसे रखवाती थी ताकि गिरते हुए पानी को इकट्ठा किया जा सके। बाद में हम इस एकत्रित पानी का उपयोग प्रयोगशाला में किया करते थे, क्योंकि ये जल प्राकृतिक रूप से वाष्पीकरण और संघनन द्वारा डिसिल्ट होकर बरसता है, इसीलिए जमीन पर गिरने से पहले की पूरी तरह स्वच्छ और मृदु यानी कि सॉफ्ट होता है।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं, चंचल, बारिश के पानी को बचाने का महत्व, ये गर्मी में पानी की कमी से राहत देता है और इससे जो भूमिगत जल है उसका स्तर सुधरता है, कण में जो जल और उसका स्थल सुधरता है, इसको आप निम्नलिखित तरीकों से बचा सकते हैं। जो आपकी छत में पानी गिर रहा है बारिश का, वहां पर पाइप लगा दे, वो पानी पाइप में जमा हो जाएगा और इसको आप संचय कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के कामों के लिए उसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। आंगनों में भी आपके जो बरसात का पानी गिरता है उसको भी आप आंगन से संरक्षण कर सकते हैं, यानी बाल्टी ड्रम वगैरह रख के आप कर सकते हैं। और इसी
0: एक अन्य संदेश है कि कल बचाना है तो जल बचाना है, बारिश एक वरदान की तरह है, बस हमें इसके पानी का प्रबंधन कैसे करना है इस बात को सीखना होगा। प्रकृति किसी से कुछ लेती नहीं, बस देती है, उसी ने हमें जीवन दिया और जिंदा रहने के साधन भी दिए, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और जिंदा रहने के लिए जरूरी मीठा पानी, यानी ये वो पानी है जो हमें जिंदा रखता है। बाकी खारा पानी तो अथाह भरा पड़ा, यानी कि समंदर की बात करें कि भू जल स्तर पर, यानी कि पृथ्वी पर कितना पानी है, लेकिन इसे पीने लायक बनाना बहुत ही सीमित है। शायद इसीलिए बारिश आती है और पानी के भंडारण के लिए सूरज की गर्मी खींच ले जाती है, वहीं पानी प्रकृति पानी के रूप में प्रकृति से वापस लौटा देती है।
1: क्या बात है।
0: और कटे हुए टीडीएस की तरह उस पानी को हमें सहेज कर उसका उपाय करना चाहिए।
1: जी, बहुत अच्छी सी बात लिखी है। और एक इसी तरह चंचल हमारे साथी और लिखते हैं कि बारिश के पानी की बचत ही असल में अपने कल की सुरक्षा है, क्योंकि धरती पर जितना पानी है वो सीमित है और हर बूंद अनमोल है। प्रकृति हमें मुफ्त में बारिश का उपहार देती है, अगर हम इसे छतों पर और सड़कों से बहाकर नालियों में बहा देंगे तो सूखे को खुद बुलावा देके रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोखता गड्ढे और पेड़ लगाकर हम उस पानी को धरती में उतार सकते हैं, जिससे भूजल बढ़ेगा, बाढ़ रुकेगी और आने वाली पीढ़ियों की प्यास भी मिटेगी। याद रखो, बूंद बूंद से ही सागर बनता है और बूंद बूंद बचाने से ही जीवन बचता है। मैंने अपने घर के बगीचे में एक गड्ढा बना रखा है जिसमें बारिश से छत के पानी का अधिकांश भाग उसी में समा जाता है। बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे सभी श्रोताओं ने दी है।
0: यानी कि ये तो हुई पानी की बचत की बात, लेकिन वो जो पानी गड्ढों में भरा रह जाता है, जो मच्छर पैदा करता है, वो पानी आपको भरने नहीं देना है। ये जो पानी हम संचय की बात कर रहे हैं, ये वो पानी का भराव है जो हमें आगे तक काम देगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक अलग चीज़ है और गड्ढों में पानी जमा हो जाना, उस पानी का ना सूखना, जो बीमारियां जिससे बनपती हैं, वो एक अलग चीज़, तो दोनों ही बातों को ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल। और हमारी एक साथी लिखते हैं कि कथा सुधा और पंजाब के व्यंजन सुनने की उत्सुकता है। बारिश का पानी बचाने के लिए हमारे सोसाइटी में छत पर जमा हुआ पानी पाइप डालकर आसपास के जमीन में छोड़ दिया है। भूजल वृद्धि से सोसाइटी के बोरवेल अच्छे से भरी रहती है, सोसाइटी की बगिया खिली रहती है। बारिश के पानी की बचत कैसे करें, इस विषय पर हम सोसाइटी के बच्चों का वर्कशॉप लेते हैं, कथा कविता और प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें भी अच्छा से सतर्क करवाते हैं, यानी उनको भी जानकारी दिलवाते हैं। बहुत अच्छी सी बात आपने लिखी है
0: और सही बात है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमें ये बात सिखानी है, क्योंकि हम तो आज हैं नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए पानी का स्तर कम ना हो और एक एक बूंद, मतलब जो बोतल है वो खरीद कर हमें लेनी पड़ेगी और तब हमें कीमत समझ में आएगी, तो उस नौबत तक हम पहुंचे ही ना अगर हमें आज ही से ही इस पानी का अगर संचय करना शुरू करेंगे।
1: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं, बारिश के पानी की बचत करना चाहिए। पहले देखती थी कि बारिश का हुआ तो घर के आंगन में एक दो खाली बर्तन, बाल्टियां और बड़े बड़े बर्तन रख दिया करते थे और उसमें बारिश का पानी जो इकट्ठा करते थे वो कपड़े धोने के काम आता था। दादी उसे साफ बोतल में भर के रख देती थी और उससे अपनी आंखें धोती थी। तो भाई ये जानकारी तो आपने उनके अनुभव से लिखी है, तो इसको हम कह सकते कि भाई आप इस पर

0: आप अपना है, मेरा सुन के ना अपना है, जो उन्होंने लिखा वो अपनी यादें लिखी हैं।
1: और जल संचय अभियान लिखते हुए हमारे एक साथी ने लिखा है कि 1986 और 87 की ये बात कर रहे हैं, गुजरात के सौराष्ट्र विस्तार में बारिश बहुत ही कम बरसी थी, तब अकाल जैसी परिस्थिति हो गई थी वहाँ पर, और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को खेतों में पानी संचय करने का अभियान चलाया गया, जिसे ढलान वाली जगह पर खेतों में के गोल किनारे या चौरस खुदाई करके कुंडी बनाकर बरसात के पानी का भरना, बाद में जब पानी जब मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो ऊपर सीमेंट के पाइप द्वारा कुएं उनमें पाइप डाले जाते हैं कुएं की तरह, और इस तरह से उस पानी को काम में लिया जाता है, उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी लेकर भेजी है। चलिए अब गीत सुन लें।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: तो चंचल अब हम लोग बातें करेंगे खाने पीने की, व्यंजन की बात
5: व्यंजन
4: करेंगे
5: की। तो पिन्नी जो है ना, पंजाब का जो व्यंजन है, ये पारंपरिक रूप से उड़द दाल की बनाई जाती है। वैसे लोग इसे आटा, मैदा, किसी अन्य आटे से भी है, लेकिन उड़द दाल की पिन्नी किस तरह बनाई जाती है, इसकी बड़ी एक अच्छी सी रेसिपी हमें मिली है, हमारे श्रोता की तरफ से ही मिली है। तो हम बता दें, इसके लिए हमें सामग्री चाहिए: धुली उड़द की दाल 500 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम, बूरा या फिर पिसी हुई चीनी आप ले सकते हैं 300 ग्राम, और इलायची पाउडर एक छोटा चम्मच, और अगर आपको स्वाद ज़्यादा चाहिए तो आप 2 चम्मच भी ले लीजिए। काजू, बादाम करीब करीब 50-50 ग्राम लेने हैं बारीक कटे हुए। और इसे बनाने का जो तरीका है, कमेंट्स में जिस तरह से बताया गया है कि उड़द की दाल को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद पानी को छानकर दाल को मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा सा पीस लीजिए। फिर एक भारी तले की कढ़ाई में घी गर्म करके इस पिसी हुई दाल को डालें और धीमी आंच पर तब तक इसे भूनना है जब तक कि इसका रंग सुनहरा ना हो जाए, अच्छी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें कटे हुए सूखे मेवे, इलायची का पाउडर डालकर फिर से 2 मिनट भूनना है और इसकी आँच को बंद कर देना है। मिश्रण जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसमें गुड़ या फिर पिसा हुआ चीनी, बूरा जो भी है वो अच्छी तरह से मिला दें, और जब तक ये हल्का गुनगुना है तभी तक हाथों में घी लगाकर गोल गोल या अंडाकार किसी भी तरह की शेप में इस पिन्नी को आकार दे दीजिए और बस एयर टाइट डब्बे में पैक करके रख दीजिए और आनंद लीजिए।
4: बिल्कुल। और देखो, एक उड़द दाल और राजमा की जो रेसिपी बताई गई दाल मखनी की, तो उड़द और राजमा को अच्छे से धोकर पानी में भिगोइए। रात भर भिगे हुए दाल में राजमा को छान लीजिए और 2 कप पानी और नमक डालकर प्रेशर कुकर में 7 सीटी बजने तक इसको पकाइए। खोलने से पहले भाप को पूरी तरह निकाल दीजिए। दाल को मथनी से अच्छी तरह से फेंट कर रख दीजिए। तड़के के लिए गहरे पैन में मक्खन को गर्म करके उसमें जीरा डालिए। जीरा उसके साथ साथ उसमें हरी मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची, प्याज डालिए और भूनिए, और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, टमाटर पल्प डालिए और मध्यम आंच पर तेल छोड़ने तक पकाइए। और इसमें दाल, नमक और जरूरत के अनुसार 2-3 टेबलस्पून पानी डालिए और 10-15 मिनट तक उबालने दीजिए। इसमें फ्रेश क्रीम डालकर अच्छी से मिलाइए और धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकाइए और धनिया और फ्रेश क्रीम से सजाकर गरम गरम आप सर्व कीजिए।
5: और इन रेसिपी के बाद अब आनंद लेते हैं गीत का।

0: तो देखो चंचल, देखते ही देखते समय कितनी तेजी से चला गया और अब हमको भी चलने की तैयारी करनी चाहिए। तो
1: बिल्कुल,
0: सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: वजूद भी वापस तकलीफ हो सकती है.
1: जी
0: सो लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस ऑपरेशन, ये दोनों के साथ में रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं.
1: जी तो पहले से क्या सजगता बरतनी चाहिए, किस तरह से सावधानी रखें कि ये स्थिति ना आए लीकेज वाली?
0: पहले तो मैंने बताया ऐसे हमें ब्लैडर स्ट्रांग रखना जरूरी है, इसलिए समय समय से यूरिन कर लेना महत्व की बात है. सेकेंडली, सम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो रेगुलर करना जरूरी है
1: जी
0: ताकि पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग रहने से अगेन ये लीकेज का प्रॉब्लम कम हो सकता है. तीसरा है, प्रेगनेंसी के समय आजकल तो काफी एंटीनेटल और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस बताई जा रही है, वो रेगुलर करना जरूरी है. अगर
1: जी
0: इस प्रकार से हम ख्याल रखेंगे तो शायद ये इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम काफी कम हो सकता है.
1: जी तो किन आयु वर्ग के लोगों को ये समस्या ज्यादा होती है? आजकल सुना है कि कम उम्र के युवाओं में भी
0: यंग
1: ये।
0: लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है,
1: जी
0: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी
1: ओके
0: कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं. एल्डरली पेशेंट्स में या प्रेगनेंसी के बाद में अगर वो पेल्विक फ्लोर मसल्स का ख्याल नहीं किया, तो उनको जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, वो तकलीफ होती है. कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के कारण अगर वहां के नर्व्स काम नहीं कर रही है, तो उन्हें परमानेंट या तो कंटिन्यूस इनकॉन्टिनेंस होता है, जो हर समय उठ के खड़े होते यूरिन लीक हो जाती है. सो कभी कभी जिसे नर्व्स के कारण जो ये पूरी सिस्टम कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल चले जाने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है.
1: जी
0: बट वहां ज्यादा करके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहते हैं, जिसको एड्रेस करना भी इक्वली महत्व का है.
1: जी और जिनको ये समस्या होती है तो लोग कहते हैं कि या तो पैड का इस्तेमाल करें, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, या फिर कुछ थैली का इस्तेमाल, उसके बारे में बताइए वो क्या है तरीका?
0: सो यस, डायपर्स या पैड यूज करना कभी कभी जरूरी हो जाता है. लेकिन एक मैं बताता हूं, कभी कभी जो दिन में लोगों को स्ट्रेस रहता है और फिर उनको एक डर रहता है कि मुझे यूरिन हो जाएगी, सो वो जहां भी बाहर जाते हैं पहले बाथरूम ढूंढते हैं. ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये अभी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है. ऐसे लोगों को कभी कभी पैड यूज करने में या टेम्परेरी डायपर यूज करने में काफी फायदा होता है, क्योंकि वो टेंशन चला जाता है और उसके कारण अगर वो देखेंगे तो कभी वो पैड गिला भी नहीं होता है, लेकिन वो एक अश्योरेंस हो जाता है. मैंने काफी लेडीज देखी है जो काम कम कर देते हैं, काम बंद कर देते हैं, घर पे बैठे रहते हैं. ये जरूरी नहीं है आज के जमाने में. काफी ट्रीटमेंट मिलती है और ये ट्रीटमेंट लेके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के अपनी डे टू डे लाइफ कंटिन्यूअस रखना बहुत जरूरी है. ये सब चीजों से क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर नहीं होनी चाहिए. सो ये मन में से डर निकालना बहुत जरूरी है, और उसके लिए प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेने से आजकल काफी लोगों को फायदा होता है. लेकिन इस डर से ये प्रॉब्लम दूसरों को न बताने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है. सो ये महत्व का है कि आप मेडिकल एडवाइस लीजिए, उनका सॉल्यूशन मिल जाता है और उससे काफी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है. क्योंकि मैंने काफी लोगों को ये उनसे सुना है कि हम तो बस अब घर में ही बैठे रहते हैं, ये डर बना रहता है. ये जरूरी नहीं है.
1: बिल्कुल
0: ट्रीटमेंट लेके अपना काम, अपनी डे टू डे एक्टिविटी, बाहर जाना जरूर चालू रखना चाहिए,
1: जी
0: क्योंकि नहीं तो एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम
1: जी
0: शुरू होने का डर रहता है.
1: जी
0: तो ये इसके बारे में ये बहुत महत्व का समझना जरूरी है कि टॉक टू पीपल, टॉक टू डॉक्टर्स, और
1: बिल्कुल
0: सही समय में ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए.
1: जी बुजुर्गों को हमने सुना है, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो यूरिन की समस्या के कारण कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं कि हम जाएंगे हमें वहां फिर बाथरूम की समस्या होगी। तो आपकी बातों से काफी इंस्पायर होंगे कि आप उसका एक तरीका है, उसकी व्यवस्था है, वो करके आ जाइए। तो
0: एब्सोल्युटली, कुछ लोग जैसे रहते हैं जिनको पेशाब की थैली काम नहीं करती है,
1: जी हाँ
0: उन लोगों को कभी कभी नली और बैग लगाना जरूरी
1: जी
0: पड़ता है.
1: जी जी
0: और जब तक वो प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट न हो, वो नली लगानी पड़ती है. आजकल उसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं जिसे हम इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन बोलते हैं,
1: अच्छा
0: ताकि पेशेंट खुद छोटी नली से दिन में 3 या 4 बार यूरिनरी ब्लैडर खाली कर सकता है
1: जी
0: और उनको कंटिन्यूअस बैग लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है.

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश ओझा जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया है आज प्रोस्टेट विषय पर बात करने के लिए और यूरिन से जुड़ी हुई और जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश ओझा विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।
0: तो ये सर्जिकल प्रोसीजर से जो होता है तो कितने समय तक वो चलता है, क्या फिर वापस वही परेशानी तो नहीं होती?
1: ज्यादा करके इसके रिजल्ट्स 10 साल 5 साल अगले लंबे समय तक भी अच्छा मिल सकता है, लेकिन
0: जी,
1: साथ में ये चीजें हमें ख्याल में करनी है कि वेट कम करना, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना,
0: जी,
1: ऑपरेशन ट्रीटमेंट का एक भाग है, साथ में ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर मसल्स ही वीक होने लगे वापस तो ऑपरेशन के बाद

0: और
1: जी
0: अपनी डेली लाइफ और काम पे वो जा सकते हैं।
1: जी
0: कभी कभी लोगों को एक माइंड ब्लॉक जैसा रहता है कि ये कैसे होगा, लेकिन काफी लोग कर रहे हैं।
1: जी
0: इन शॉर्ट, ये सब प्रॉब्लम की समस्या रही, एक्सपर्ट से बात कीजिए, अपना माइंड ओपन रखना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: मान लेना कि नहीं अभी इसकी कोई सोल्यूशन ही नहीं है, मुझे
1: जी
0: सफर ही होना है, ये गलत बात है।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि मेडिकल एडवाइस और आप अगर ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहे तो काफी ऑप्शंस है जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर इंप्रूव हो सकती है।
1: जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारी बातें चल रही थी, हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि जो तुरंत यूरिन पास करके आते हैं वॉशरूम से, और तुरंत 5 मिनट के अंदर वापस जाते हैं, और वो जांच कराते हैं तो सब कुछ नॉर्मल आता है। तो ये क्या वजह हो सकती है, और इसका किस तरह से इलाज हो सकता है?
0: ये दो चीज होती है, अगर पूरी यूरिन एक समय में निकलती नहीं है तो वो बार बार जाने की इच्छा रहती है, जो कभी कभी यूरिनरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन या यूरिनरी ब्लैडर वीक होने से हो सकता है। दूसरा है जिनकी ब्लैडर सेंसिटिव होती है,
1: जी
0: जिसके कारण थोड़े बूंद रहने से भी वो सेंसेशंस बने रहते हैं, और इसके कारण बार बार जाने की इच्छा रहती है, जाके बाथरूम में काफी समय तक बैठते हैं लेकिन ज्यादा यूरिन होती नहीं है। ये कभी कभी सेंसिटिव ब्लैडर के कारण हो सकता है।
1: जी
0: जो पहले जांच करके हम देखते हैं कि अंदर कोई रोग नहीं है, अगर वैसे नहीं रहा तो दवाइयों से वो सेंसेशन कैसे कंट्रोल में करना वो हम कोशिश करते हैं।
1: जी
0: और तीसरी बात कि पेशेंट को भी कभी कभी अपने आप वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने की आवश्यकता रहती है,
1: जी
0: कि एक बार करके आए तो सेंसेशन बाईपास करना सीखना पड़ता है, कि थोड़े सेंसेशंस रहे हम उसको बाईपास कर देंगे, एक बार वो पेशेंट अगर बिजी हो गया तो सेंसेशन काफी समय तक वापस
1: नहीं
0: चला जाता है और
1: आता।
0: बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
1: जी बिल्कुल।
0: लेकिन ये सब चीजें एक बार टेस्ट कराने के बाद करनी चाहिए, ताकि ये क्लियर हो जाए कि अंदर कोई रोग नहीं है।
1: जी
0: और फिर ये काफी चीजों से लोग अपने आप अपने को सेल्फ ट्रेन कर सकते हैं कि छोटे छोटे ऐसे सेंसेशंस हुए उसको बायपास करके हम अपने काम में लग जाएं,
1: जी
0: क्योंकि नहीं तो वो सेंसेशन इतना इरिटेबल हो जाता है कि बार बार फिर उनको इच्छा रहती है कि मैं जाके यूरिन करके आऊं।
1: जी और सारा फोकस, सारा ध्यान उसी पर रहता है कि
0: एब्सोल्युटली।
1: कुछ भी शुरू करने से पहले पहले यूरिन के
0: और
1: लिए
0: फिर वो
1: चले
0: डर
1: जाए।
0: सा रहता है कि अगर
1: जी
0: कपड़े में कुछ बूंदे हो
1: लग गई
0: गई
1: तो
0: और कुछ
1: जी
0: स्मेल आने लगी तो एक एम्बरेसमेंट जैसा होने लगता है,
1: जी
0: इसलिए दे बिकम वेरी कॉन्शियस।
1: जी
0: ये चीजें थोड़ी,
1: जी
0: आई थिंक, सेल्फ कॉन्शियस रहना जरूरी है कि हर सिम्टम के पीछे भागना नहीं है, थोड़ा थोड़ा
1: जी
0: मानसिक बायपास करना भी सीखना जरूरी है।
1: बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी आपने स्मेल की बात की, तो यहाँ पर एक बात जहन में आई है कि अमूमन लोग ये कहते पाए जाते हैं कि हमारी यूरिन में दुर्गंध है, तो ये क्या लक्षण हो सकता है? स्मेल आ रही है अलग तरह से, और कलर चेंज होता है कई
0: दैट्स राइट।
1: बार।
0: एक बात कि शायद यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है,
1: जी
0: क्योंकि काफी लोग पानी कम कर देते हैं ये डर से कि मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली यूरिन शरीर का कचरा है, उसमें सब केमिकल्स वगैरह रहते हैं जिसकी स्मेल आती है। ज्यादा पानी पीने से यूरिन काफी डाइल्यूट हो जाती है और स्मेल कम हो जाती है।
1: जी
0: दूसरी बात, कुछ दवाओं ऐसी रहती है जिसकी स्मेल यूरिन में आ सकती है। तीसरी बात, कुछ डाइट जिसके कारण भी यूरिन में स्मेल आ सकती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ज्यादा पानी पीने से वो डाइल्यूट होने से स्मेल काफी कम हो जाती है।
1: जी
0: दूसरी बात है, जिनको कुछ ड्रॉप्स कपड़े में रह जाते हैं, देन वो स्मेल कंटिन्यूअसली उनको ऐसे लगता है कि यूरिन की स्मेल आती है। वहां कभी कभी एब्जॉर्बेंट पैड वगैरह पहनने से ये प्रॉब्लम कम होती है कि कपड़े में यूरिन जमा न होने से वो भी स्मेल कम हो सकती है।
1: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को, कौन सा गाना?
0: जरूर, आई थिंक श्रेया घोषाल इज अनदर एक्सलेंट सिंगर,
1: जी,
0: और उनका एक अच्छा गाना है मोहे रंग दुलाल,
1: क्या बात है।
0: बाजीराव मस्तानी से।
1: जी, बाजीराव मस्तानी फिल्म का बड़ा ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गाना हम सुन रहे थे। और अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि किडनी स्टोन और यूरिन की समस्याओं का आपस में क्या तालमेल है और किस तरह की बीमारी ये मिलके रचते हैं?
1: सो यूरिनरी स्टोन्स वो भी एक काफी बड़ी समस्या बन रही है,
0: जी
1: और कुछ कुछ इलाके में जहां ज्यादा गर्मी है वहां स्टोन डिजीज काफी लोगों को तकलीफ दे रहा है। स्टोन के दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, स्टोन बढ़ते जाता है
0: जी जी
1: और किडनी पूरी डैमेज हो जाती है तब तक पता नहीं चलता है, और कुछ स्टोन्स छोटे स्टोन्स रहते हैं, जब वो स्टोन नीचे निकलने की कोशिश करती है इतना दर्द देता है कि पता चलता है कि स्टोन है। अब स्टोन बनने के अलग अलग कारण है, सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना,
0: जी
1: क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन से जो क्षार जो बनते हैं वो किडनी में एक बार जमा होने लगे तो वो फोकस बन के स्टोन्स बढ़ने लगते हैं।
0: जी जी
1: सो सबसे बड़ी दवाइयां पानी है। दूसरी बात, कुछ लोगों को कैल्शियम और यूरिक एसिड, उनकी मेटाबॉलिज्म
0: जी
1: एबनॉर्मल शरीर में होने से भी ये स्टोन्स बन सकते हैं। तीसरी बात, अगर यूरिन कॉन्स्टेंटली जमा होती है किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में, उसके कारण भी स्टोन बन सकते हैं। सो ये अलग अलग कारणों से स्टोन बनते हैं। सो हमारे देश में रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसा कोई लोग मानते नहीं है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूरी है।
0: जी

0: लोग मानते हैं कि हम हेल्थ चेकअप कराएंगे, उसमें कुछ निकलेगा, हमको डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा,
1: इसलिए मत चेकअप
0: उससे चेकअप मत
1: कराओ
0: करवाओ।
1: जी जी
0: लेकिन चेकअप करना जरूरी है, ताकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुए तो उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, आजकल स्टोन के लिए काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं और ट्रीटमेंट आसान हुई है। कभी कभी छोटे स्टोन्स के लिए कुछ दवाइयां देते हैं, उससे निकल सकता है। लेकिन महत्व का ये, हमें कॉन्स्टेंटली चेकअप रखना कि स्टोन के कारण किडनी पे प्रेशर आके किडनी डैमेज नहीं हो रही है, क्योंकि कभी कभी पेन नहीं होता है लेकिन किडनी पे प्रेशर आने से धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाती है और फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सो ये भी गलत बात है कि अगर दर्द नहीं है तो स्टोन के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तपास करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि स्टोन की पोजीशन क्या है, उसके कारण किडनी में कुछ डैमेज हो रहा है कि नहीं, और पेशेंट को कितनी तकलीफ हो रही है, उस हिसाब से निर्णय लेते हैं कि कुछ करने की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है। आजकल एंडोस्कोपिक या दूरबीन से और लेजर एनर्जी के सोर्स अवेलेबिलिटी के कारण ट्रीटमेंट काफी इजी हो गई है और बड़ा कट वगैरह करके स्टोन निकालने की आवश्यकता नहीं रही है। सो अर्ली स्टेज में अगर हम ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। लेकिन एक बात हमें यह भी जानना जरूरी है कि कोई भी दवाई या कोई भी ऑपरेशन की आड़ असर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छी तरह ऑपरेशन करने के बाद में भी अगर पेशेंट के टिश्यू ठीक नहीं रहे तो फिर वहां दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, स्टोन के साथ डर लगता है इन्फेक्शन का, क्योंकि जब किडनी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और उसके साथ में इन्फेक्शन बन गया तो वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है, जिसे हम यूरोसेप्सिस कहते हैं। क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हुआ, किडनी ब्लॉक है, इन्फेक्शन निकलने के लिए रास्ता नहीं है, फिर इन्फेक्शन पूरे बदन में फैल जाता है, वो काफी सीरियस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आते हैं। सो स्टोन के साथ इन्फेक्शन वो दूसरी चैलेंज है। तीसरी बात, स्टोन और डायबिटीज, क्योंकि अगेन डायबिटीज के कारण इन्फेक्शन होने की शक्यता बढ़ जाती है। सो ये सब चीजों से सिंपल स्टोन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और कभी कभी काफी सीरियस बीमारी के साथ हमारे पास आते हैं। सो अगेन इन शॉर्ट, अगर रेगुलर चेकअप रखेंगे तो वो समय से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: दूसरी बात है, वंस अ स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर, और हमारे पास ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम आपको अश्योर कर सकें कि आप ये लीजिए आपको भविष्य में स्टोन नहीं होगा।
1: जी जी।
0: ये गलत बात है, इसलिए रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। तीसरी बात है, लोग आके पूछते हैं कि हम इस कुएं का पानी पिए या इस प्रकार की ट्रीटमेंट करें, आप जो ठीक लगे वो ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन महत्व का है कि चेकअप रखना जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि हमने ये ट्रीटमेंट की, कुछ पान खाए, कुछ काढ़ा पिया, अच्छी बात है। अगर जो ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट नहीं है और आप उसे कोशिश करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग फिर तपास नहीं करते हैं और मान लेते हैं कि स्टोन चला गया, लेकिन अगर स्टोन अंदर बड़ा होके किडनी को डैमेज करे तो आपको पता नहीं चलेगा।
1: बिल्कुल।
0: सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन रेगुलर चेकअप और एक बार अच्छा मेडिकल ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: ये गलत बात है कि हर समय आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बताएंगे कि आप ऑपरेशन करवा लो। ये कुछ कुछ चीजें लोग मानते हैं लेकिन वो सही नहीं है। हर डॉक्टर ये करने में कोई अच्छी बात है वैसा नहीं मानता है। लेकिन उस डर से अगर हमने व्यवस्थित ट्रीटमेंट नहीं ली और फिर ऐसा समय आता है कि किडनी एक बार डैमेज हो गई, फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सो यस, स्टोन के लिए चेकअप महत्व का है। कुछ कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जैसे पानी पीना बहुत महत्व की बात है। एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करना जरूरी है। ज्यादा एनिमल प्रोटीन लेना एडवाइजेबल नहीं है। और कुछ कुछ जिसे ऑक्सलेट के प्रॉब्लम है उनको कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। लेकिन सब पेशेंट को डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करके जैसे बीज जैसी चीजें सब वो बीज जैसी टोमेटोज वगैरह खाना बंद कर देना, वो भी सही नहीं है। सो स्टोन ट्रीटमेंट में भी काफी मिथ्स है, वो जरूरी नहीं है।
1: जी जी। तो अभी बीज की बात की तो अभी ध्यान में आया कि आजकल तो सोशल मीडिया पर, गूगल पर

0: हुआ है कि ये कद्दू का बीज और फ्लैक्स सीड और जाने कौन कौन से बीज खाएं तो स्टोन से निजात पाया जा सकता है, यूरिन की समस्या ठीक हो जाएगी, ये प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा। तो
1: सो ये मेरी राय में काफी गलत बातें हैं। एज अ साइंटिस्ट, जब तक मुझे एडिक्वेट एविडेंस नहीं है, जब तक इतना एक्सपीरियंस जो रिपोर्ट के साथ बताया नहीं गया कि ये करने से डेफिनेट फायदा होता है, वो चीजें मान्य करना वो पॉसिबल नहीं रहता है।
0: बिल्कुल।
1: एट द सेम टाइम, एवरी पथी हैज सम ट्रीटमेंट फॉर एवरी प्रॉब्लम, बीट होम्योपैथी, बीट एलोपैथी, बीट आयुर्वेदिक, बट ये समझना जरूरी है कि ऐसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए जिसकी आड़ असर ना हो। एट द सेम टाइम रेगुलर चेकअप करके उसका रिजल्ट देखना जरूरी है।
0: जी
1: बाकी ये काफी चीजें जो सोशल मीडिया पे या गूगल में आती है, साइंटिफिकली ये सब चीजें प्रूव नहीं हुई है।
0: जी
1: ये कुछ लोगों का अनुभव है, लेकिन वो अनुभव सब पेशेंट के लिए सही है कि नहीं, वो एक बड़ा प्रश्न है।
0: बिल्कुल।
1: सो इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक एनालिसिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट।
0: जी, इस तरह की बीमारियां जब होती है तो डॉक्टर के शरण में ही जाना चाहिए, वही ज़्यादा अच्छा होता है। किडनी स्टोन जब होता है तो उसके क्या बेसिक लक्षण क्या होते हैं, और उस क्या स्थितियां हो कि मरीज डॉक्टर के पास जाए और किस डॉक्टर के पास जाए।
1: सो बेसिकली पेन,
0: जी
1: अगर सीवियर पेन रहा पीछे के भाग में या फ्लैंक जिसे हम कहते हैं, तो वो स्टोन के लिए कॉमन सिम्टम है।
0: जी
1: इन्फेक्शन दूसरा सिम्टम है। ब्लड इन द यूरिन, ये एक सिम्टम बहुत महत्व का है, क्योंकि स्टोन के कारण तो जरूर ब्लड आ सकता है, लेकिन हमें हमेशा फिक्र रहती है कैंसर की, क्योंकि वो एक सिम्टम है जो अगर किसी मरीज को हमने सुना कि उनके उनमें ब्लड जाती है, ये चेकअप करना बहुत जरूरी है कि कहाँ यूरिनरी ट्रैक्ट में कैंसर नहीं है। सो बेसिकली जहां तक स्टोन का प्रश्न है, मेनली पेन इज द कॉमनेस्ट सिम्टम, सेकेंड इज इन्फेक्शन, एंड थर्ड कभी कभी रूटीन इन्वेस्टिगेशन से भी पता चल जाता है। जो सोनोग्राफी इज अ सिंपल टेस्ट,
0: जी।
1: जो सोनोग्राफी रूटीनली करवाने में न तो कोई उसकी आड़ असर है, न तो इतनी एक्सपेंसिव है, लेकिन काफी यूरिनरी ट्रैक के प्रॉब्लम प्राइमरी डिटेक्ट करने के लिए सोनोग्राफी महत्वपूर्ण
0: जांच
1: इन्वेस्टिगेशन
0: है
1: है।
0: जी, तो उससे पता चल जाता
1: जी
0: है।
1: जी
0: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुने।
1: जरूर। वापस हम पुराने गानों की तरफ चले तो रफी साहब का एक बहुत अच्छा गाना है, अकेले हैं चले आओ।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है आपने, सुनते हैं यही गाना।

0: लोग सर्जरी के नाम ढूंढ लेते हैं और सर्जरी के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। तो आप बताइए कि ये एक रोबोटिक सर्जरी और पारंपरिक सर्जरी एक होती है, तो मरीज इनका नाम सुन के बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं। क्या है ये, दोनों में किस तरह का अंतर है?
1: यहां मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि जब भी ऑपरेशन का प्रश्न आता है, अगर आपके मन में डाउट है तो जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए,
0: जी,
1: क्योंकि ये महत्व की बात है कि कभी कभी हमें डाउट होता है कि ये जो सलाह दे रहे सही है कि नहीं। सो आई थिंक नथिंग इज रॉन्ग कि
0: बिल्कुल।
1: बड़ी अगर सर्जरी आपको करवानी है जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी या कोई भी सर्जरी फॉर दैट मैटर, अगर आपको रहा कि जरूरी है या नहीं, जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए, पहली बात है। दूसरी बात, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज वैसा है कि उसके कारण एक तो हमें बड़ा कट लेना नहीं पड़ता है, दूसरी बात है कि रिकवरी पीरियड ज्यादा अच्छा रहता है, कम रहता है, तीसरी बात है कि टेक्निकली ये सब साधनों से जो मैग्निफिकेशन और प्रिसिशन हमें मिलता है उससे ऑपरेशन करना और आसान हो जाता है। लेकिन महत्व का है दैट इट्स नॉट ओनली द टूल, इज द पर्सन बिहाइंड द टूल दैट इज इम्पॉर्टेंट।
0: जी,
1: सो हर टेक्नोलॉजी आई और वो कराने से फायदा ही होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी हैं कि जहां ओपन सर्जरी गिव्स बेटर रिजल्ट्स।
0: दोस्तों, विविध भारती से ये है कार्यक्रम सेहतनामा। आज आपको सुनवा रहे हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। ये बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: दोस्तों, विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहतनामा।
1: सो ये बात नहीं कि हर चीज लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक करने से ही अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। ओपन सर्जरी से भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, और इसी के कारण एक्सपर्ट के पास जाके हर प्रोसीजर के क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेज वो समझना जरूरी है। लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण भी काफी आउटकम में इम्प्रूवमेंट होता है, उसमें भी प्रश्न नहीं है। सो ये बैलेंसिंग एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई टेकिंग प्रॉपर एक्सपर्ट ओपिनियन अपने आप या अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों की राय लेने से ज्यादा महत्व का है। आप मेडिकल राय लीजिए और जरूर पड़ी तो सेकेंड ओपिनियन लीजिए।
0: जी बिल्कुल, उससे निश्चिंतता हो जाती है कि सेम बात दो डॉक्टर्स ने
1: एग्जैक्टली
0: बोली है। और
1: एग्जैक्टली
0: ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है, और ये बड़ी ऑनेस्ट बात है कि एक डॉक्टर की ओर से ये सलाह दी जा रही है, बड़ी बात है। और वापस हम एक बार प्रोस्टेट की ओर जाते
1: जरूर।
0: हैं। प्रोस्टेट की सर्जरी के बारे में, कितनी ये आसान होती है और कितनी कठिन होती है मरीज के लिए?
1: मरीज के लिए आजकल ये न्यू टेक्नोलॉजी के कारण इतनी तकलीफदायी नहीं है। वो एनेस्थीसिया में करते हैं, दूरबीन से करते हैं ताकि कोई कट वगैरह या उसका पेन नहीं रहे।

0: रहता है
1: जी हाँ
0: और रिकवरी भी काफी फास्ट होती है। और आजकल ये सब नई टेक्नोलॉजी से काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और पहले जैसे बड़ा कट लेना, बहुत ब्लीडिंग हो रहा, बहुत दिनों तक नली रखना, वो सब दे आर थिंग्स ऑफ पास्ट। सो रिकवरी काफी जल्दी होती है और पेशेंट अपने काम पे बहुत जल्दी वापस जा सकता है।
1: जी
0: महत्व का है दैट डिसीशन मेकिंग
1: जी
0: कि जरूरी है या जरूरी नहीं है,
1: जी
0: और किस प्रकार की सर्जरी उस पर्टिकुलर केस के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये डिसीशन और डिस्कशन महत्व का होता है।
1: जी
0: अब
1: बिल्कुल
0: हर ऑपरेशन के मैंने बताया कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, ऑपरेशन के बाद में वीर्य बाहर आना बंद हो सकता है,
1: जी
0: कभी कभी वापस पैसेज नैरो होके जिसे हम स्ट्रिक्चर कहते हैं वो भी हो सकता है। सो कोई भी सर्जरी 100% सक्सेसफुल नहीं रहती है और हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर रहती है।
1: जी
0: इसलिए ये समझना जरूरी है कि हम क्यों सर्जरी करवा रहे हैं, उसके कितने फायदे हैं, कितने गैर फायदे हैं, और फिर वो समझ के फाइनल निर्णय लेना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है।
1: जी तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से उसकी सर्जरी से क्या उनकी मैरिज लाइफ पर भी असर पड़ता है?
0: सो मैंने बताया ऐसे कि वो जो वीर्य बाहर आना कभी कभी बंद हो सकता है, आजकल कुछ नई टेक्निक ऐसे भी आई है कि ये भी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो सकता है। इसलिए यंग पेशेंट्स में हो सके इतने हम दवाइयों से कोशिश करते हैं कि अगर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो हम ऑपरेशन की तरफ कम जाना पसंद करते हैं। फिर भी मैंने बताया ऐसे आजकल काफी प्रोसीजर लाइक यूरोलिफ्ट, रेज्यूम, आईटीन, ये अलग अलग नाम है, लेकिन उससे ये प्रॉब्लम कम होने की शक्यता ज्यादा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स लंबे समय तक कितने अच्छे रहेंगे वो बताना मुश्किल है।
1: जी
0: सो उस पर्टिकुलर पेशेंट की जरूरत क्या है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि कौन सी प्रोसीजर वो पेशेंट के लिए अच्छी है।
1: जी बिल्कुल। और अब आखिर में हमें बताइए डॉक्टर साहब कि अपने देश में प्रोस्टेट संबंधी जागरूकता को लेकर किस तरह की सजगता है और क्या सजगता बरतनी चाहिए कि प्रोस्टेट जो आजकल ये बीमारी बढ़ रही है कम हो जाए?
0: काफी चीजें, लोग हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ रही है, जैसे काफी रेगुलर हेल्थ चेकअप करने से भी पता चलता है कि प्रॉब्लम है कि नहीं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेगुलर हेल्थ चेकअप। कुछ एब्नॉर्मल यूरिनरी सिम्टम्स रहे तो समय में जांच करना, ये सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज कंपेयर टू जब हम पहले प्रोस्टेट के बारे में सोचते थे, लोग आते थे कॉम्प्लिकेशंस लेके आते थे, नली लगा के आते थे, वो काफी अवेयरनेस के कारण प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो रही है, प्लस अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट मिलने लगी है। पहले दवाइयां नहीं थी, अभी दवाइयां से ऑलमोस्ट 60-70% पेशेंट्स को हम राहत दे सकते हैं। सो ये काफी चेंजेस हुए हैं, लेकिन अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
1: जी बिल्कुल
0: और
1: सही
0: आपके जैसे प्रोग्राम के माध्यम से
1: जी
0: ये लोगों को अश्योरेंस देना बहुत जरूरी है कि खाली रिपोर्ट देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है।
1: जी
0: और जब हम भी निर्णय लेते हैं उस समय हम भी ये देखते हैं कि हमें रिपोर्ट को ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना
1: क्या
0: है।
1: बात है
0: सो ये बहुत महत्व की बात है। सो ये डर रखना कि हम चेकअप करेंगे कुछ निकल आएगा और ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ये बात नहीं है,
1: जी
0: लेकिन अगर पता चला तो समय में प्रिकॉशंस ले सकते हैं और राइट समय पे राइट ट्रीटमेंट हम एडवाइस कर सकते हैं।
1: जी सही बात है। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में तो जाहिर सी बात है कैंसर के नाम से लोग डरते ही हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर क्या पूर्णतः इलाज हो जाता है
0: आई
1: या
0: थिंक
1: लाइलाज?
0: बहुत महत्व की बात आपने कही है।
1: जी
0: पहली बात, एज वेरी राइटली यू सेड, कैंसर नाम सुन से लोग घबरा जाते
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: प्रोस्टेट का कैंसर आजकल जब अर्ली डिटेक्ट होता है तो इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग एट ऑल। कैंसर शब्द बड़ा है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट प्लान, कभी कभी कैंसर जानने के बाद भी हम बोलते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है,
1: जी।
0: क्योंकि इतना लो ग्रेड और अर्ली स्टेज में रहता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। और दूसरा, ऐसे स्टेज में भी लोग आते हैं कि जहां पूरे बदन में वो स्प्रेड हो चुका रहता है,
1: अच्छा।
0: तो फिर उसकी ट्रीटमेंट काफी दिक्कत वाली बन जाती है। लेकिन आजकल प्रोस्टेट कैंसर की काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जहां हम अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ, हम ये बात करते हैं कि हम क्योर करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा करके पहले जब कैंसर की बात आती थी हम बताते थे हम कंट्रोल कर सकते हैं।

0: सो कैंसर प्रोस्टेट के लिए काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
1: जी
0: जब खाली लोकली प्रोस्टेट में ही डिजीज रहता है, तो जिसे हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं,
1: जी
0: जहां पूरी ग्रंथि निकाल देते हैं, या तो रेडिएशन करके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा रिजल्ट्स रहता है। अगर वो आगे थोड़ा स्प्रेड हुआ रहता है, तो फिर उस हिसाब से रेडिएशन या हार्मोन इंजेक्शंस की हम मदद लेते हैं, और जिनको काफी स्प्रेड हुआ रहता है, उनको हार्मोन ट्रीटमेंट से हम कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी
0: बट आई कैन टेल यू, ये कैंसर इतना डरने वाला कैंसर नहीं रहा है, और रेगुलर चेकअप, PSA चेकअप अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफी अच्छे हो गए हैं।
1: डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ने से पहले आपकी पसंद का एक गाना और हो जाए, कौन सा गाना सुनवाए?
0: सरस्वती चंद्र का वो गाना, चंदन सावधन
1: चंचल चितवन,
0: चंचल चितवन,
1: बेहतरीन
0: बहुत
1: गाना
0: अच्छा
1: है
0: गाना है।
1: जी। मुकेश की आवाज में भी
0: मुकेश
1: है
0: की आवाज
1: और
0: में और लता
1: लता
0: जी
1: जी
0: की
1: की।
0: आवाज में भी है,
1: जी
0: मुझे लगता है कि मुकेश की आवाज में
1: जी जी मुकेश की
0: सुनेंगे।
1: आवाज वाला गाना सुनते हैं।
0: जरूर।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों की बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति कब आती है और किस तरह के जोखिम होते हैं उसमें, और क्या किडनी ट्रांसप्लांट से किडनी की समस्याएं दूर हो जाती हैं?
1: जिसे किडनी फेलियर होता है, जिसके अलग अलग कारण है, और जब दोनों किडनी फेल हो जाती है, तब परिस्थिति आती है कि वो किडनी रिप्लेसमेंट करना या किडनी फंक्शन रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है।

0: हमारे देश में अब सबसे कॉमन कारण डायबिटीज बन रहा है, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर
1: जी,
0: और कुछ किडनी के इन्फेक्शन या कभी कभी स्टोन्स वगैरह की किडनी ऑब्स्ट्रक्ट होके अगर सही समय में ट्रीटमेंट नहीं ली तो फिर ये किडनी डैमेज हो जाती है
1: जी।
0: सो जब दोनों किडनी डैमेज हो जाती है तब हमें काफी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि किडनी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इज अ फिल्ट्रेशन प्लांट इन अवर बॉडी
1: जी जी।
0: और जब वो काम नहीं करता है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाना शुरू हो जाता है, एसिड बेस बैलेंस में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, खून बनाने में तकलीफ होने लगती है, किडनी हमारा बोन मेटाबॉलिज्म में भी ख्याल करती है, ये सब चीजें शुरू हो जाती है। और कभी कभी जब इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस या पोटेशियम बढ़ने से या एसिडोसिस बढ़ने से वो कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है और उस समय इसे हम एंड स्टेज रिनल डिजीज कहते हैं, ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो जाती है या तो डायलिसिस या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस ये एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है जो हफ्ते में 2 या 3 बार मरीज को मशीन के ऊपर जाके ये ब्लड साफ करना या जो केमिकल्स जो बदन में तकलीफ देती है उनको क्लीन करना जरूरी हो जाता है, दैट इज डायलिसिस। लेकिन डायलिसिस के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार जाना पड़ता है और उससे पूरे किडनी के फंक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं होता है।
1: जी जी।
0: सो द बेटर ट्रीटमेंट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन।
1: जी।
0: नाउ किडनी ट्रांसप्लांटेशन से नई किडनी मरीज को देके जो फिर वो किडनी का काम अपने आप ले लेती है जिससे नियर नॉर्मल लाइफ पेशेंट की हो सकती है।
1: जी।
0: लेकिन यहां कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन्स। हर साल कुछ 2 लाख मरीज इंडिया में है जिनको ये रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है और अल्टीमेटली 10% मरीज है जिनको ये ट्रीटमेंट मिल सकती है।
1: जी जी।
0: क्योंकि डायलिसिस अब काफी सेंटर्स में डायलिसिस की सुविधा मिल रही है लेकिन वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन मिलना डिफिकल्ट है।
1: जी जी।
0: 2 प्रकार के किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं जिसे हम रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं या डिजीज डोनर या कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। लिविंग डोनर में जहां पेशेंट और डोनर दोनों की किडनीज मैच होती है, जो अलग अलग ब्लड टेस्ट से हम चेक करते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पर्सन डोनेट करता है उनकी हेल्थ को हमको ज्यादा चेकअप करना बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने डोनेट किया और खुद पेशेंट बन गए।
1: बिल्कुल।
0: सो पहले वो सब हम चेकअप करते हैं कि जो डोनेट करना चाहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फॉर्चुनेटली एक किडनी से कोई भी पेशेंट अच्छी जिंदगी जी सकता है और इसके कारण अगर बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक रहे तो एक किडनी डोनेट कर सकता है। सो जिसे हम लाइव डोनर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं और इसमें भी कुछ गवर्नमेंट्स के कानून है, उस हिसाब से हम डोनर सिलेक्ट कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन सबसे जरूरी बात है जैसे हम डिजीज डोनर और कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आफ्टर डेथ अगर हम किसी को मदद कर सके तो इससे बड़े चीज क्या है।
1: जी।
0: और डेथ हम ऐसे मानते हैं कि अगर हमारा हार्ट बंद हो गया तो हमारी डेथ हो गई। एक्चुअली ये ब्रेन है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है।
1: जी जी।
0: और जब ब्रेन काम करना बंद हो जाता है तो उसे हम ब्रेन डेड कहते हैं।
1: जी जी।
0: नाउ कुछ मरीज जिनके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए, जिनको एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण ब्रेन डैमेज हो जाता है, जहां टेक्निकली व्यवस्थित जांच करके एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये मरीज अभी ब्रेन डेड है, जिसको वापस जिंदा करना पॉसिबल नहीं है, अगर उनके ऑर्गन्स यूज कर सकें तो वो ऑर्गन से काफी लोगों को सेकेंड लाइफ मिल सकती है, जिसे हम कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है।
1: जी, जी।
0: क्योंकि अदरवाइज यही ऑर्गन्स या तो हम दफना देते हैं

0: हम जला देते हैं। अगर समय में ये ऑर्गन्स अगर मिल गए तो काफी लोगों की जिंदगी सुधर सकती है।
1: जी
0: ये बात मानना गलत है कि कहां भी एक्सीडेंट हो गया कहां से हम ऑर्गन ले लेंगे और ट्रांसप्लांट कर देंगे, ये सब अगेन मिथ्स है। ऑर्गन डोनेशन के लिए पहले तो मरीज ज्यादा करके इस बीमारी से जब आईसीयू में वगैरह रहते हैं, जब पूरी ट्रीटमेंट की कोशिश हो जाती है, उसके बावजूद जब चार एक्सपर्ट बताते हैं कि वापस जिंदा रहने की कोई चांस नहीं है, उस समय हम पेशेंट के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है वो रिलेटिव से पूछते हैं कि आप डोनेशन के लिए तैयार है कि नहीं। सो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत कम समय मिलता है, इसके बाद में हार्ट बंद हो जाता है। अगर एक बार हार्ट बंद हो गया तो ये जो ब्लड फ्लो ऑर्गन्स को मिल रहा था डेड बॉडी में, जिसके कारण ऑर्गन्स कुछ समय तक काम करते हैं, अगर उस समय के दरमियान हमको ऑर्गन मिले तो ही हम यूज कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: सो ये अगर लोगों को अवेयरनेस रही कि समथिंग कॉल्ड कैडेवर ट्रांसप्लांट जैसा है, जो इस प्रकार के ब्रेन डेड लोगों के ऑर्गन्स जो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर जब लिए जाते हैं और पेशेंट्स को देते हैं, काफी पेशेंट्स को सेकंड लाइफ मिलती है।
1: जी।
0: सो ये जानना बहुत जरूरी है।
1: जी।
0: दूसरी बात, ट्रांसप्लांट के बाद भी 100% सक्सेस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली और किसी का ऑर्गन जब मिलता है वो बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर भी निर्भर रहता है।
1: जी जी।
0: उसके लिए जांच जरूर करते हैं, उसके लिए काफी दवाइयां हैं जिससे ये रिजेक्शन ना हो, वो कोशिश होती है, लेकिन हर बॉडी वो एक्सेप्ट कर सकेगी कि नहीं वो भी प्रश्न रहता है। सो ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। लेकिन जो मरीज ऑर्गन फेलियर से तकलीफ में है, उनके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है, उनको एक नई लाइफ मिल जाती है। सो लोगों को इसके बारे में भी जानकारी बहुत महत्व की है, और इसके पीछे भी काफी मिथ्स जो वगैरह रहती है उसको दूर करना बहुत जरूरी है।
1: जी जी।
0: काफी लोग खाली पड़ते हैं कि ये ऑर्गन चोरी हुई या अनरिलेटेड पैसे दे के ट्रांसप्लांट, वो कॉमन नहीं है।
1: जी जी, जी।
0: इसीलिए राइट सेंटर में राइट लोगों से सलाह लेके राइट लीगल फ्रेमवर्क में अगर हम ये करेंगे तो काफी लोगों को हम नई जिंदगी दे सकते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ब्रेन डेथ इज डेथ, और उनके समय में ऑर्गन अगर हम निकाल के किसी को डोनेट कर सके तो काफी लोगों को फायदा हो सकता है।
1: जी बिल्कुल, बड़ी तथ्यपरक बात कही है आपने, और ये अमूमन लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं, सांस रुकी तो इंसान चला गया, लेकिन आपने एक कितनी जानकारी वाली बात बताई कि मस्तिष्क ब्रेन का काम करना जरूरी है, ब्रेन रुका तो फिर इंसान गया। अब डॉक्टर साहब, एक बड़ी ही जरूरी बात है, वो है यूरिनल ट्रैक में कैंसर की समस्या। हम चूंकि यूरिन के विषय पर बात करें तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: सो सबसे बड़ा लक्षण ब्लड इन द यूरिन, जब भी रिपोर्ट में या मरीज देखता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, उस समय जांच करना बहुत जरूरी है। किडनी कैंसर, जब ये हम जांच करते हैं तो कुछ कुछ किडनी में भी हमें कैंसर दिखाई देता है।
1: जी।
0: सबसे बड़ी समस्या ब्लैडर कैंसर की है।
1: जी जी।
0: और द कॉमनेस्ट कॉज इज स्मोकिंग और टोबैको। जो लोगों को पता नहीं है लेकिन टोबैको से ये ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है, और वो अगर समय से ट्रीट किए तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर वो ज्यादा स्प्रेड हो गया तो काफी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। सो अगेन यहां दो तीन चीजें हैं। ऑफकोर्स लाइफ स्टाइल चेंजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक टोबैको इज अनदर थिंग जिसके कारण शरीर में काफी जगह में कैंसर होने की शक्यता रहती है। और तीसरा है रेगुलर हेल्थ चेकअप, जो अगेन समय में कैंसर की बीमारी पता चलने से उसकी समय में अगर ट्रीटमेंट कर दी तो रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं।
1: जी, मतलब ये पूर्णतः इलाज हो सकता है।
0: एब्सोल्युटली,
1: जी। तो अब डॉक्टर साहब, चलते चलते एक गाना आपकी पसंद का सुनवाएं, कौन सा गाना?
0: जरूर, आई थिंक ये आइकॉनिक गाना है, लग जा गले फिर कभी मुलाकात हो ना हो।
1: जी, अमूमन अंताक्षरी हो या कहीं कोई स्टेज प्रोग्राम हो या रेडियो का कोई प्रोग्राम हो, इस गाने के बगैर अधूरा सा रहता है।

0: और अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को सलाह दीजिए डॉक्टर साहब कि ये प्रोस्टेट के बढ़ने के बारे में, प्रोस्टेट और यूरिन की समस्याओं से जूझते लोगों की सजगता के लिए आप चंद शब्दों में क्या कहेंगे?
1: सो कुछ चीजें शरीर में कुदरती बढ़ती है, लाइक प्रोस्टेट
0: जी
1: ग्लैंड. हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि उम्र के हिसाब से बढ़ती है. इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वैसी बात नहीं है. लेकिन रेगुलर चेकअप करने से, एक्सपर्ट के पास चेकअप कराने से समय में अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो ट्रीट कर सकते हैं. कैंसर बड़ा शब्द है, लेकिन मॉडर्न टाइम में काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है. अगर कैंसर को समय में डिटेक्ट किया तो अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं. यूरिनरी प्रॉब्लम्स कभी कभी छोटे रहते हैं, तकलीफ ज्यादा देते हैं. लाइफस्टाइल चेंजेस से और प्रॉपर काउंसलिंग और दवाई समय से लेने से काफी टेंशन्स कम हो सकती है और यूरिन के प्रॉब्लम हम कंट्रोल कर सकते हैं. किडनी स्टोन्स हमारे देश में कॉमन है. अगेन, राइट टाइम में डिटेक्शन होना जरूरी है.
0: जी
1: और सबसे बड़ी बात, गूगल या कोई भी इंफॉर्मेशन पेशेंट के लिए अच्छा है, हमें जानना जरूरी है, लेकिन उस हिसाब से अपने आप ट्रीटमेंट डिसाइड करना, अपने आप टेंशन ले लेना, अपने मित्रों से सलाह लेना, ये सही नहीं है. क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत बातें आती हैं, वो साइंटिफिकली सही है कि नहीं वो बताने के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए.
0: बिल्कुल
1: सो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसी प्रश्न आपके मन में आए, आप एक्सपर्ट को पूछिए.
0: जी
1: अगर आपको कुछ सलाह दी गई है, वो ट्रीटमेंट के बारे में है, ऑपरेशन के बारे में है, अवॉइड मत कीजिए. अगर आपको डाउट है, जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए. लेकिन ये बहुत महत्व की चीज है कि जो डिजीजेस अगर हमने समय में उसको पकड़ लिया, समय में ट्रीटमेंट उनकी आपको सही तरह से मिल गई, तो आगे जाके उसके कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए और वो क्योर होने की शक्यता बढ़ जाती है.
0: जी
1: आई थिंक हेल्थ इज वेल्थ, वी ऑल नो.
0: जी
1: और आज के जमाने में जहां इवन आफ्टर एज ऑफ 60, 70, 80 एंड 90 लोगों एक्टिव है, हेल्थ मेंटेन करना बहुत जरूरी है. ये भी मैं जानता हूं कि हेल्थ ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो रही है. जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इट इज कमिंग एट अ कॉस्ट. सो यस, पहले 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था, अभी 2 दिन में ट्रीटमेंट हो जाती है.
0: जी

0: जी
1: लेकिन इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर.
0: जी
1: सो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रिवेंशन एंड दैट इज हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल चेंजेस, एडिक्वेट वाटर ड्रिंकिंग एंड टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप. आई थिंक दिस विल गिव अ गुड रोड मैप फॉर अ गुड हेल्थ एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट क्रूशियल थिंग इन मॉडर्न टाइम.
0: जी
1: थैंक यू वेरी मच.
0: डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी सारी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी. विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार.
1: नमस्कार
0: दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत. आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग. चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान.

का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की

0: युद्धों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार से बातचीत का प्रस्ताव आया था और सुबह 11:50 से इस पर चर्चा जारी है। श्री नड्डा ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में पूर्ण हुई और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रारंभिक चर्चा से विस्तार हुआ। प्रदर्शनकारियों ने शाम करीब 4 बजे सरकार को एक लिखित याचिका सौंपी। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आयोग किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को इस बारे में निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच समिति SIT की गठित की जा सकती है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहन्ना की पीठ ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के कथित गबन की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी से मुलाकात की। श्री नायडू ने कहा कि श्री अब्दुल्ला ने भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। इसमें रखरखाव, मरम्मत और संचालन तथा विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि मजबूत हवाई संपर्क लंबे समय से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी का मजबूत आधार रहा है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम की यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थयात्रा को अस्थिर रूप से रोकने का निर्णय लिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह फैसला तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर लिया गया है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब एक नजर डाल लेते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर जो इस प्रकार हैं।

5:10 पर हम आपको सुनवाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। 5:30 पर आप सुनेंगे वुमेन सेंट्रिक यानी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। शाम के 6 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम भोजपुरी लोकगीत। 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन समाचार आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से। 6:10 पर हम आपको सुनवाएंगे ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर। और 6:40 पर हम आपको सुनवाएंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। शाम के 7 बजे आप सुनेंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। 7:15 पर आप सुनेंगे संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। 7:25 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से। और 7:50 पर आप सुनेंगे विधानमंडल समीक्षा आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से।

शाम के 8 बजे आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। और

के 9 बजे हम आपको सुनाएंगे भोजपुरी लोकगीत का कार्यक्रम लोक धारा। रात के 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बंदगी। 9:30 पर हम आपको सुनाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। और रात के 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। दस बजकर 13 मिनट पर आप सुनेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग रसरंग। 10:30 पर हम आपको सुनाएंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। 10:55 पर हम आपको सुनाएंगे 10:55 पर हम आपको बताएंगे अगले दिन का कार्यक्रम विवरण एवं मौसम पूर्वानुमान। और रात के 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 11:05 पर हम आपको सुनाएंगे अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। और 11:10 पर हमारी आज की सभा समाप्त हो जाएगी। तो श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की सूची। तो आप बने रहिए हमारे साथ एफएम बैंड के 103.4 MHz पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र के साथ। और हम कुछ ही पलों में हाजिर होंगे आपके पास और लेकर के भजनों का एक बेहतरीन गुलदस्ता। तो आप कहीं ना जाइए, बने रहिए हमारे साथ एफएम बैंड के 103.4 MHz पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं भजन की दुनिया में और सुनवाते हैं कुछ प्यारे चुनिंदा से खूबसूरत भजन। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनुराधा पौडवाल और कोरस की आवाज़ों में गाए इस आरती से, जिसे लिखा है अनुराधा पौडवाल ने और संगीत दिया है अरुण पौडवाल ने।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कोरस की आवाज़ों में ये आरती। एक और भक्ति संगीत हम आपको सुना रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। अनुराधा पौडवाल और कोरस ने इसे गाया है, इसे लिखा है अनुराधा पौडवाल ने और संगीत अरुण पौडवाल का है।

अभी आप सुन रहे थे भजन कार्यक्रम वंदन। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं वुमेन सेंट्रिक यानी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन की तरफ।

घर आंगन कार्यक्रम में सभी सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर आपके साथ है आपकी रेडियो सखी, आपकी हम सफ़र चंदा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, बारिश का खुशगवार मौसम, रिमझिम रिमझिम बरसती बूंदें, ठंडी ठंडी हवाएं और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू मन को एक अलग ही सुकून देती है। बारिश के बाद पेड़ पौधों की हरियाली से सजी धरती और उमड़ते बादलों के साथ गड़गड़ाहट मन में तरंगे माहौल को और भी खूबसूरत बना देती है। बरसती बारिश में मज़ा न लिया

जाए, ऐसा भला हो सकता है क्या? मौसम का मिजाज बदलते ही हम सबका मिजाज तो बदल ही जाता है, क्यों है ना सखियों? तो चलिए इस मौसम को, अपने मिजाज को थोड़ा और बदलते हैं इस गीत के साथ।

वाह भाई, इस गीत को सुनकर सच में दिल झूम उठा। सखियों, जितना यह मौसम सुहावना होता है, उतना ही ना ये हमारी सेहत के लिए भी सावधानी की भी मांग करता है। थोड़ी सी लापरवाही परेशानी का सबब भी बन सकती है। सखियों, तो आज इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों से खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाया जाए। सखियों, लगातार नमी, अचानक तापमान में बदलाव और जमा हुए गंदे पानी के गड्ढे मच्छरों के पनपने और इन्फेक्शंस फैलाने के लिए उपयुक्त होते हैं। बहुत से कुछ लोगों को इस मौसम में आम बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कि पेट की समस्याएं, स्किन रैसेस या मौसमी बुखार। बरसात के मौसम में चिकनगुनिया, डेंगू बुखार, जो कि मच्छरों के द्वारा होता है, जो कि एक वायरल संक्रमण है, इससे बचने के लिए हमेशा आप सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए। लंबी आस्तीन वाले कपड़े आप पहनिए। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए अपने घर के आसपास पानी बिल्कुल भी जमा ना होने दें और कीटनाशक युक्त चीज़ों का प्रयोग करें। सखियों, सोते समय तो हम मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन साथ में दिन में भी कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जो काटते हैं तो मलेरिया हो सकता है, इसलिए दिन में भी सतर्कता ज़रूरी है। टाइफाइड की अगर हम बात करें तो टाइफाइड ज्वर एक जीवाणु संक्रमण है जो दूषित भोजन और पानी से फैलता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए हमेशा सुरक्षित साफ पानी का ही उपयोग करना चाहिए। हाथों की स्वच्छता और साथ ही साफ और स्वच्छ भोजन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बाहर के खाने को बिल्कुल भी अवॉइड करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो बाहर खाना मिलता है या जो कटे हुए जो फल होते हैं वगैरह, उस पे मक्खियाँ भी बहुत सारी उस पे बैठी रहती हैं, तो वैसे खाने को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज करें। सखियों, इस मौसम में हैजा भी एक गंभीर दस्त रोग बीमारी है जो कि बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। इसकी रोकथाम के लिए हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए और साथ ही उचित तरीके से पका हुआ भोजन खाना चाहिए और कच्चा या अधपका भोजन खाने से बचना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथों की सफाई अच्छे से करें और खाना खाने के बाद या फिर शौच के बाद भी हाथों को अच्छे से सफाई कीजिए। सखियों, विभिन्न वायरस के कारण होने वाला जो वायरल बुखार है वो बरसात के मौसम में आम है। इससे बचने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। संक्रमित व्यक्ति अगर आपके आसपास हो तो उसके संपर्क से बचना चाहिए और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाना चाहिए। इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू की बात हम कर रहे हैं, तो फ्लू भी एक वायरल संक्रमण है जो कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यह बरसात के मौसम में निकट संपर्क और नमी की स्थिति के कारण आसानी से फैलता है। इससे बचने के लिए बीमार लोगों को दूरी बनाए रखना चाहिए। खांसते या छींकते समय मुंह पर या नाक पर कपड़ा ज़रूर रखें। अक्सर सखियों, अगर देखा जाता है कि अगर कोई गमछा या टॉवल की अगर हम बात करें, तो अगर परिवार में अगर एक आदमी उसका यूज़ करता है तो बिल्कुल भी उस घर के किसी दूसरे सदस्य को भी उस टॉवल का या गमछा का यूज़ नहीं करना चाहिए। हर किसी का अपना एक अलग अलग हो तो ज़्यादा बेहतर होता है और इससे किसी को इन्फेक्शन होने का ख़तरा भी नहीं होता है। स्वच्छ वातावरण बनाए रखें और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें।

सखियों अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने खाद्य पदार्थ में विटामिन सी से भरपूर फल, सब्जियां और दही जैसे प्रोबायोटिक्स चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। बासी भोजन से बचना चाहिए और हरी सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर ही पकाना चाहिए। सखियों एक बात और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि आप जहाँ भी खाना बनाती हैं वहाँ का जगह जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, जैसे कि आपका बेसिन हुआ या फिर आपका बेसिन की जगह में जो सिंक होता है उसकी भी सफाई अच्छे से होनी चाहिए। रात में खाना खाने के बाद पूरे फर्श की सफाई, किचन की सफाई पूरी तरह से अच्छी हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सखियों, बरसात के मौसम में स्वास्थ्य का सबसे आसान मंत्र एक है, स्वच्छता। यह एक छोटी सी आदत कई संक्रमणों और बीमारियों से बचाने में मदद करती है। इसलिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और इसी के साथ आइए सखियों सुनते हैं ये मिलकर एक और गीत।

और आइए अब बात करते हैं उस प्रेरक महिला की जिनका नाम है पुनीता अरोड़ा। सखियों, लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा का जीवन सिर्फ एक सैन्य अधिकारी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस बदलाव की कहानी है जिसमें एक महिला ने समाज और सेना दोनों में चली आ रही पारंपरिक सीमाओं को तोड़ा है। वे आज भी लाखों युवाओं युवतियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। सखियों, पुनीता अरोड़ा भारतीय सशस्त्र बलों की पहली महिला है जिन्हें 3-स्टार रैंक भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल और भारतीय नौसेना में सर्जन वाइस एडमिरल प्राप्त हुआ है। 31 मई 1946 को लाहौर में जन्मी पुनीता अरोड़ा का बचपन विभाजन की त्रासदी के बीच ही गुजरा। आगे चलकर उनका परिवार उत्तर प्रदेश आ गया। आगे चलकर सहारनपुर से सोफिया स्कूल और गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज से शुरुआती पढ़ाई की। सखियों, उस दौर में साइंस जैसे विषय चुनना लड़कियों के लिए सामान्य नहीं था। फिर भी उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और फिर वर्ष 1963 में पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिला लिया और अपने बैच में टॉप करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया और जनवरी 1968 में आर्मी मेडिकल कोर में एंट्री मिली। सखियों, हालांकि वे शुरुआत में एक सर्जन बनना चाहती थी, लेकिन सेना ने उन्हें स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ बनने की दिशा में आगे बढ़ाया। इस क्षेत्र में उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य और मिलिट्री मेडिकल सर्विस में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। इतना ही नहीं सखियों, 1 सितंबर 2004 को वह AFMC पुणे की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। इस संस्थान की अगुवाई करना न केवल उनके लीडरशिप स्किल का प्रमाण था, बल्कि यह सेना में महिला की बढ़ती भूमिका की मिसाल भी बनी। सेना मुख्यालय में FMC में पदभार संभालने से पहले अरोड़ा ने सेना मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में भी काम किया। आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस की कॉमन पूल सिस्टम के अंतर्गत पुनीता अरोड़ा ने वर्ष 2005 में सर्जन वाइस एडमिरल के पद पर तक पहुंची, जो इस पद को पाने वाली वे पहली महिला बनी। पुनीता अरोड़ा ने अपनी ड्यूटी का काफ़ी वक्त पंजाब में गुजारा और 2002 में विशिष्ट पदक से नवाजा भी गया। उनके 36 साल के कार्यकाल में कुल 15 पदक उन्हें मिले, तो ये थी उनके संघर्ष और उपलब्धि की प्रेरक कहानी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा सीखने की ललक और जुनून था, तभी वे अपने मुकाम तक, अपनी मंजिल तक पहुंच पाई। और इसी के साथ आइए सुनते हैं सखियों एक और गीत।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई।

0: आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सखियों, पानी प्रकृति का अनमोल उपहार है। यह न केवल हमारी प्यास बुझाता है बल्कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में भी सहायक है। लेकिन यदि पानी दूषित हो तो यही पानी कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। दूषित पानी के कारण दस्त, हैजा, टाइफाइड, पीलिया और अन्य कई जलजनित बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा साफ और सुरक्षित पानी ही पीना चाहिए। आपको यदि संदेह हो पानी की शुद्धता पर तो उसे उबालकर ठंडा करके ही उपयोग में लाएं। अगर आपके पास फिल्टर है तो वो भी सहायक है। पीने के पानी को हमेशा ढककर ही रखें। बाहर का पानी बिल्कुल भी ना पिएं। जब भी आप बाहर जाएं तो अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर रखें। सड़क किनारे मिलने वाले जूस, शरबत वगैरह से भी बचना चाहिए क्योंकि ये

कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। दूषित पानी के कारण दस्त, हैजा, टाइफाइड, पीलिया और अन्य कई जलजनित बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा साफ और सुरक्षित पानी ही पीना चाहिए। आपको यदि संदेह हो पानी की शुद्धता पर, तो उसे उबालकर ठंडा करके ही उपयोग में लाएं। अगर आपके पास फिल्टर है तो वो भी सहायक है। पीने के पानी को हमेशा ढककर ही रखें। बाहर का पानी बिल्कुल भी ना पिएं। जब भी आप बाहर जाएं तो अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर रखें। सड़क किनारे मिलने वाले जूस, शरबत वगैरह से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये दूषित हो सकते हैं। सखियों, पानी हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। स्वच्छ पानी हमें स्वस्थ और ऊर्जावान बनाता है। इसलिए स्वच्छ जल अपनाएं और बीमारियों को दूर भगाएं। और सखियों, इसी के साथ अब हमारा समय खत्म हो चला है। हम अगली बार आपसे फिर मिलेंगे बहुत सारी बातें खट्टी मीठी यादों के साथ। अब अपनी रेडियो सखी चंदा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वुमेन सेंट्रिक यानी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। अब लीजिए सुनिए भोजपुरी लोकगीत।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब रउआ चंद्रमोहन से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले बाड़न की चाहे मानसून होखे चाहे मानसून सत्र, अगर दोनों सक्रिय रहे तब बहुत उत्पादक साबित होला। संसद के मानसून सत्र शुरू होखे से पहले मीडिया से बात करत उ कहले कि जब दोनों उत्पादक होला त ऐसे देश के कल्याण आ सब जीवन के मंगल होला। उहे हमार संवाददाता बतौले कि मानसून सत्र 13 अगस्त तक चली, 25 दिन के इस सत्र में 19 गो बैठक होगी। वहीं केंद्रीय कानून आ न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सत्र के दौरान लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पेश कैले। यह विधेयक के मकसद सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश के छोड़ के अभी के 33 से बढ़ा के 37 कैल बा। बिहार विधानमंडल के 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार सदस्य लोग से सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग करे के अपील कैले। कार्यवाही शुरू होखे से पहले ही विपक्ष सदस्य लोग विधानसभा के मुख्य द्वार पर पहुंच के हंगामा कैल। विपक्ष नीट परीक्षा पेपर लीक आ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के मांग करत रहे। हालांकि यह दौरान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ना पहुंचल रहले। बाद में दोनों सदन के कार्यवाही शुरू भइल आ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार के भाषण आ दिवंगत नेता लोग के श्रद्धांजलि देला के बाद बिहान 11 बजे तक खातिर सदन के कार्यवाही स्थगित कर दिहल गई। सत्र के दौरान राज्य के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव 87,383 करोड़ रुपया के अनुपूरक बजट सदन में पेश कैले। एहमें राज्य योजना मद में 24,370 करोड़ रुपया, जबकि केंद्र प्रायोजित योजना सब खातिर अलग से राशि राखल गई बा। सत्र के दौरान 10 गो विधेयक सदन के पटल पर राखल गई बा। गौरतलब बा कि मानसून सत्र 24 जुलाई तक चली। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार आज विधान परिषद में कहले कि लोकतांत्रिक

मूल्य के अनुरूप सब सदस्य लोग के सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करे के चाही। भगवान सोमनाथ धाम यात्रा खातिर आज 1,100 श्रद्धालु सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा स्पेशल ट्रेन से रवाना भइले। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पाटलिपुत्र जंक्शन से ट्रेन के हरी झंडी देखा के रवाना कइले। मुख्यमंत्री बतौले कि गुजरात प्रवास के दौरान श्रद्धालु लोग के रहे खाए आ सुरक्षा के उचित व्यवस्था कइल गइल बा। ए मौका पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव आ कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार समेत कई गो जनप्रतिनिधि मौजूद रहले। साइबर अपराध आ सुरक्षा इकाई सुरक्षित डिजिटल माहौल तय करे खातिर पिछला 6 महीना में 692 गो कानूनी नोटिस जारी कइले बा। सीसीएसयू पुलिस महानिरीक्षक रंजीत कुमार मिश्रा बतौले कि एहौदी में 1,320 गो आपत्तिजनक पोस्ट आ यूआरएल हटावल गईल, जबकि 529 गो फर्जी सोशल मीडिया आईडी के बंद करावल गईल। ऐसे अलग साइबर अपराध से जुड़ल 475 गो मामला में एफआईआर दर्ज करके 103 गो आरोपी लोग के गिरफ्तार कइल गईल बा। पुलिस महानिरीक्षक कहले कि महिला लोग के खिलाफ साइबर अपराध, फर्जी सोशल मीडिया आईडी, डीप फेक आ भ्रामक तथा सांप्रदायिक सामग्री पर 24 घंटा लगातार नजर रखल जा रहल बा। राज्य में मानसून के सक्रियता से बारिश के सिलसिला जारी बा। राजधानी पटना समेत राज्य के ज्यादातर जिला में रुक रुक के बारिश हो रहल बा। मौसम विभाग आज कैमूर, गोपालगंज, रोहतास आ पश्चिमी चंपारण जिला में बहुते भारी बारिश, जबकि औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सीवान आ वैशाली जिला में भारी बारिश के चेतावनी जारी कइले बा। बाकी जिलन में भी बारिश के अनुमान बा। प्रदेश में लगातार हो रहल बरखा के कारण उत्तर बिहार के कई गो नदियन के जलस्तर खतरा के निशान के पार हो गई बा। ऐसे कई गो जिला में बाढ़ के खतरा मंडरा रहल बा। केंद्रीय जल आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक गोपालगंज जिला के डुमरिया घाट में गंडक नदी के जलस्तर खतरा के निशान से 52 सेंटीमीटर ऊपर बह रहल बा, जबकि बागमती नदी रूनी सैदपुर से 30 सेंटीमीटर और बेनीबाद में 105 सेंटीमीटर खतरा के निशान से ऊपर बह रहल बा। ओइजा कोशी नदी के जलस्तर खगड़िया जिला के बलतारा में खतरा के निशान से 73 सेंटीमीटर ऊपर बा। एकरा साथे साथे राज्य में झंझारपुर में कमला बलान, महानंदा समेत दोसर नदियन के जलस्तर खतरा के निशान से नीचे बा। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी बुलेटिन समाचार आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 MHz पर। अब लीजिए सुनिए ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर।

गांव घर सुने वाला सब श्रोता भाई बहन के जगत भाई के नमस्कार बा। श्रोता भाई, आज जौन हमनी के आपन गांव घर में कार्यक्रम जाने के बा उहे तरह से बा। सबसे पहले एगो चर्चा कइल जाई अंतर्राष्ट्रीय दिवस के महत्व पर। एकरे बाद एगो लोकगीत सुनल जाई, फिर चंद्रयान के एक के सफलता के बारे में जानकारी कइल जाई,

आलेख बा सुदामा पांडे के और स्वर बा संजय कुमार चतुर्वेदी जी के। ये कुछ जानकारी रही विश्व शतरंज दिवस पर। इकरे बाद मौसम के जानकारी कैला के बाद कार्यक्रम के समापन कैले। श्रोता भाई, आज अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस और ई अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के महत्व के बारे में हमने के जानल जरूरी बा। चूँकि 20 जुलाई के ऐतिहासिक महत्व बा और ई घटना विज्ञान तकनीक और मानव साहस के ऐतिहासिक विजय के प्रतीक माना जाला। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन, शांतिपूर्ण उपयोग या अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति वैश्विक सहयोग के बढ़ावा दिहल बा। यह दिवस अतीत के महान वैज्ञानिक उपलब्धि के याद करे के साथ साथ भविष्य के चंद्रयान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रूप में मनावल जाला। आकाश में चमकत चंद्रमा सदियों से मानव सभ्यता के आकर्षक जिज्ञासा और कल्पना और रहस्य के केंद्र है। कभी एकरा के देव के प्रतीक मानल जात रहे, कभी राहु केतु के से जोड़ल जात रह गए, कभी समय या ऋतु के निर्धारित तो कबो कवि के साहित्यकार के प्रेरणा रहल। हालांकि विज्ञान एक कल्पना के वास्तविकता में बदल दिल। जब 20 जुलाई 1959 के पहला बार मनुष्य चंद्रमा के सतह पर कदम रखले, ई दिवस अतीत के महान वैज्ञानिक उपलब्धि के याद के साथ साथ भविष्य के निर्माण भी करेला। भारत के चंद्र उपलब्धि में शामिल चंद्रमा खगोल बिंद अमरपाल सिंह के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस भारत खातिर विशेष महत्व रखेला। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने सीमित संसाधन में विश्व स्तरीय उपलब्धि हासिल की। भारत दुनिया में अंतरिक्ष अन्वेषक में अलग कदम खड़ा कैले बा। भारतीय चंद्र मिशन के बात कैल जाए तो चंद्रयान 1 2008 ने चंद्रमा के सतह पर जल अणु के उपस्थिति के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक समुदाय के अध्ययन आकर्षित करेला। चंद्रयान 2 2019 के ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा के अध्ययन कर महत्वपूर्ण आंकड़ा दे रहा बा। साथ ही साथ 23 अगस्त 2023 के चंद्रयान 3 ने भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफल सेफ्ट विश्व के पहला देश बा। यह उपलब्धि के सम्मान में भारत सरकार हर साल 23 अगस्त के अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनावेला। भविष्य में चंद्रमा पर अस्थायी अनुसंधान केंद्र लूनर गोटवे अंतरिक्ष स्टेशन और मंगल ग्रह के महत्व यात्रा खातिर चंद्रमा के आधार बनावे की योजना बा। साथे साथे चंद्र ध्रुव अंतरिक्ष अभियान खातिर अत्यंत महत्वपूर्ण बनावल बा। साथ ही चंद्रयान की उपस्थिति जौन बा ई ट्रिलियन 3 के जौन भविष्य बा ओकरा अनुसार एमे अपन ईंधन संसाधन खातिर वैज्ञानिक अनुसंधान प्रस्ताव बा। एकरा अलावे हमने के देखल जाओ भविष्य के चंद्र युग में खगोलविद अमरपाल सिंह ने बतौले कि आज चंद्रमा केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा के विषय नहीं रखल गए बल्कि दुनिया के भविष्य के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के आधार पर बनल जा रहल बा। नासा के आर्टिमिस कार्यक्रम मनुष्य को पुनः चंद्रमा में पर भेजे के तैयारी भी कर रहल बा और

भारत के चंद्रयान 4 और अन्य मिशन के तैयारी भी अंतरिक्ष अन्वेषक खातिर जोर से चल रहा बा। एकरा अलावे अन्य देश भी चंद्र मिशन के लगातार कार्यरत बा। भविष्य में चंद्रमा पर अस्थायी अनुसंधान केंद्र लूरन गुटवे अंतरिक्ष स्टेशन मंगल ग्रह मानव यात्रा चंद्राधार बनावे की योजना बनैले बा। साथ ही चंद्र ध्रुव पर जल बर्फ की उपस्थिति भविष्य में मानव बस्ती के और अंतरिक्ष उपस्थिति खातिर भी एकर हासिल बा। एकरा अलावे हमनी के देखल जाओ कि उपलब्धि में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस भारत के एक विशेष महत्व रखा था। भारत ये चंद्र अंतरिक्ष संगठन जौन बा इस तरह से बा कि हमनी के मानव सभ्यता और चंद्रमा से संबंध एकरा में हमनी के ना प्रकृति खगोलीय पिन ही ना बल्कि मानव सभ्यता के कौतूहलपूर्ण जिज्ञासा के अभिन्न अंग भी है। प्राचीन भारत चीन मिस्र यूनान आ और सहित कई गो सभ्यता के पंचांग निर्माण कृषि समुद्री यात्रा में धार्मिक आदि के चंद्रमा के ही उपयोग के लिए था। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि में चंद्रमा के महत्व बहुत बड़ा बा। एकर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पन्न करेला। पृथ्वी के घूर्णन अंश के अपेक्षाकृत स्थिर बनाए रखेला और सहायता भी करेला और पृथ्वी के दीर्घकालीन जलवायु स्थिरता के महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला। इससे एकरा बाद हमने के खगोलीय में 16 जुलाई 1969 को देखल गई भी से अपोलो प्रेषण भेल। लगभग 4 दिन के यात्रा के बाद अंतरिक्षयान चंद्रमा के अत्यंत चुनौती के चेतावनी के संकेत दिलास। फिर भी प्रयास रहल कि मैनुअल नियंत्रण संभाल के स्थान पर लैंडिंग कराओल गई। तब देखल जाओ तब आज भी खगोलीय में 20 जुलाई की ऐतिहासिक महत्व बा। यह मिशन पर हमने के 3 सदस्य के जो बा आर्मस्ट्रांग एल्विन ब्रज एल्विन माइकल और लूजर चंद्रमा किसी ऑफ के अनुसार जिज्ञासा के अनुसार चंद्रमा पर शांत सागर भी कहल जाला। इसे सफलतापूर्वक एकरा पर हमने के भइल। तो देखी हमने के आज अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस पर महत्व के बारे में जानकारी कनी जा। अब तनिका मन मन साइन खातिर एगो लोकगीत हमने के सुन लिया।

देखें कितना बढ़िया गीत रहल। गीत सुन के मन गदगद हो गई। अब श्रोता भाई एक बात कही हमने के कल जाओ और विषय बढ़ुए चंद्रयान एक की सफलता के महत्व, क्योंकि पहले भी हमने के कह चुकल बन जा आज अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस ए पर हमने के जो बात चंद्र एक के भी सफलता के महत्व के बारे में जानकारी कल जाओ। आलेख बा सुदामा पांडे जी के, स्वर बा संजय कुमार चतुर्वेदी जी के। आ जाओ जानकारी कल जाओ।

चंद्रमा हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है। कहावत है कि पड़ोसी से सदा प्रेम करना चाहिए, पड़ोसी देश का हो या पड़ोसी ग्रह। वह हमारे लिए सर्वाधिक उपयोगी और लाभदायक हो सकता है। चंद्रमा हमारे मन का शासक है, चंद्रमा मनसो जातः। वह पृथ्वी से निकला हुआ एक अंश माना गया है। शायद वह पृथ्वी का 49वां भाग आकार में है और कभी पृथ्वी की तेज रफ्तार से निकलकर यह पिंड हमसे दूर चला गया। प्रशांत महासागर उसी के आकार का है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी को बराबर आलोकित करता है, कभी आगे के प्रहर से, कभी पीछे के प्रहर से। हमारे यहाँ शुक्ल और कृष्ण महीने के दो पक्ष इसी आधार पर बने हैं। इसकी निकटता इतनी महत्वपूर्ण है कि बच्चों ने अपना संबंध इनसे मामा का जोड़ रखा है। मामा अर्थात माही या माँ का भाई। जब माँ का दूध चुक जाता है तो वह कटोरे के दूध में प्रतिबिंबित चंद्रमा की दूधिया चांदनी में चंद्रमा की ओर मुंह किए बच्चे के मुंह में डालती हुई कहती है, चंदा मामा आरे आव पारे आव, अर्थात और निकट आजा, और निकट आजा। हर प्रेमी व्यक्ति प्रेमास्पद को अपने पास बुलाना चाहता है और उसे कभी दूर होने नहीं देना चाहता। संस्कृत और हिंदी का विपुल साहित्य मुख की सारी उपमाएं चंद्रमा से ही देता है। तात्पर्य यह कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का सबसे

ज्यादा सहयोगी और उपयोगी ग्रह है। यो तो अपने यहां ज्योतिष और अध्यात्म दोनों ने ही चंद्रमा की उपयोगिता को बहुत निकट से समझा था, किंतु विज्ञान ने अंतरिक्ष विजय के क्रम में अपने यानों को भेजकर चंद्रमा पर विजय अभियान लगभग 4 दशकों से चलाया है। सर्वप्रथम अमेरिका, रूस आदि देशों ने वहां यान भेजकर वहां से प्राप्त पत्थर के टुकड़ों को पृथ्वी पर लाकर दिखलाया। कभी यहाँ के महान वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का ध्यान आकर्षित करते हुए चंद्रयान की संभावनाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला था। इसमें संदेह नहीं कि 1956 के बाद डॉक्टर भाभा से प्रेरित होकर हमारे वैज्ञानिक एवं इंजीनियर ट्रांबे में 4.5 दशक पूर्व से ही इस कार्य में लगे थे और अंततः उन्होंने चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण द्वारा आखिर चंद्रमा पर भारतीय तिरंगे झंडे को लहरा ही दिया। यद्यपि भारतीय वैज्ञानिकों की मौजूदगी इस यान के भेजे जाने से पहले से ही है, चंद्रमा पर पिछले अभियानों में जिन क्रेटरों का पता चला था उसमें से कई के नाम भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर होना यह प्रमाणित करता है, जैसे सीवी रमन, मित्रा, मेघनाथ साह आदि के नाम उस पर अंकित हैं। इतना ही नहीं, अपने देवी देवताओं में सीता और कृष्ण भी वहां हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर भी यहां एक क्रेटर का नाम है जो चंद्रमा के सुदूर कोने में स्थित है। चंद्रमा के दक्षिण में एक क्रेटर का नाम होमी जहांगीर भाभा के नाम पर है। ये क्रेटर चंद्रमा पर धूमकेतुओं के टकराने से बने हैं, चूंकि वहां पृथ्वी की तरह वातावरण नहीं है। 22 अक्टूबर 2008 की सुबह चेन्नई से 100 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से 1380 किलोग्राम वजन में चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके द्वारा चंद्रमा पर खनिज पदार्थों की खोज और पहचान की जा सकेगी, साथ ही इस बात की भी जांच होगी कि क्या वहां मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं। यह पहला उपग्रह है जो वैज्ञानिक उपकरणों से लेकर अंतरिक्ष में प्रविष्ट हुआ है। इसका आकार एक मिनी बस से भी छोटा है और यह यान 16 दिनों में चंद्रमा पर पहुंचा है। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने यूरोप और अमेरिका की अपेक्षा इसके निर्माण में बहुत कम खर्च किए हैं और इसकी सफलता का यह द्योतक है। चंद्रयान 1 के साथ 5 भारतीय पेलोड भेजे गए हैं, उनमें से एक 4 इंच x 6 इंच के तिरंगे को पेंट किया गया है। 36,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5.5 दिन में यह चांद की कक्षा में पहुंचकर चांद पर भारतीय ध्वज फहराया है। अब अंतरिक्ष में ऐसी पहल करने वाला भारत विश्व का 6ठा देश बन गया है। PSLV ने चंद्रयान 1 को धरती से 250 किलोमीटर दूर चांद की दीर्घ वृत्ताकार प्रारंभिक कक्ष में केवल 11.02 सेकंड में पहुंचा दिया। यहां से क्रमिक रूप से यह पृथ्वी से अधिकतम 23,000 किलोमीटर दूर चंद्र कक्ष में पहुंचा और चांद से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर 8 नवंबर 2008 को स्थापित हो गया। इसरो अध्यक्ष के अनुसार मून इंपैक्ट प्रोब यानी MIP के एस्टेरोस्कोपिक कैमरे के 5 मीटर रिजोल्यूशन के चित्र भेजने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इससे पहले 10 मीटर रिजोल्यूशन के चित्र भेजने वाला जापान का अंतरिक्षयान सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। चंद्रयान 1 में 6 विदेशी उपकरणों सहित कुल 11 वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं, उनमें से 5 की डिजाइन और निर्माण इसरो ने किए हैं और शेष 6 में से अमेरिका के 2, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के 3 तथा बुल्गारिया के 1 हैं। चंद्रमा के कक्ष में यान की प्रवेश की प्रक्रिया भारतीय समयानुसार 8 अक्टूबर 2008 को शाम 4:50 पे आरंभ हुई और 816 सेकंड तक चली। इस प्रक्रिया के दौरान चंद्रयान 1 के 440 न्यूटन लिक्विड इंजन को करीब 2.5 मिनट तक दागा गया, जिससे यह चंद्रमा के गुरुत्व के दायरे में पहुंचा। चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचने के बाद जी माधवन नायर बेहद उत्साहित दिखे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि 20 मिनट तक उनके दिल की धड़कन रुक गई है।

0: बेंगलुरु स्थित इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क वैज्ञानिकों ने MIP को चंद्रयान 1 से अलग करके चांद की तरफ उछाला। जिस समय चंद्रयान 100 किलोमीटर की दूरी से चांद की परिक्रमा कर रहा था, चांद तक पहुंचने में इसे 25 मिनट लगे और अंतरिक्ष कार्यक्रम में चांद पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर भारत ने इतिहास रचा। स्मरणीय है कि नासा के अपोलो 15 मिशन में 26 जुलाई 1971 को वैज्ञानिक चांद की सतह पर उतरे तो वे संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों का राष्ट्रीय ध्वज लेकर गए थे, जिसमें भारतीय तिरंगा भी शामिल था। चंद्रयान 1 द्वारा पहली बार भारत का कोई उपग्रह पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाकर चांद से 100 किलोमीटर की दूरी से चंद्रमा का चक्कर 2 साल तक लगाएगा और चंद्रमा के पूरे इलाके का विस्तृत मानचित्र तैयार करेगा। इतना ही नहीं, चंद्रमा के पास और दूर से 3D एटलस भी तैयार करेगा। तैयार मानचित्र में चंद्रमा की सतह पर खनिज पदार्थों की मौजूदगी का भी ब्यौरा होगा, जिसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, लोहा व टिटेनियम की मौजूदगी 20 किलोमीटर के दायरे में और हाई एटॉमिक नंबर तत्व जैसे रेडॉन, यूरेनियम और थोरियम आदि 40 किलोमीटर के दायरे में होगा। अब तक के अंतरिक्ष अभियान में चंद्रमा के कुछ ही हिस्सों के नक्शे तैयार हो पाए थे, किंतु चंद्रयान 1 अभियान का महत्व सर्वाधिक तब और हो जाता है कि इसके द्वारा चंद्रमा का 3D नक्शा तैयार किया जाएगा, जिससे चंद्रमा के जन्म और उसके ध्रुवों पर पानी की संभावनाओं का भी पता चलेगा। चांद पर मौजूद केमिकल और खनिजों का भी पता चलेगा। यह चंद्रमा पर हीलियम 3 का पता लगाएगा, जो परमाणु रिएक्टरों के लिए बहुत ही उपयोगी एवं प्रदूषण रहित साफ ईंधन होता है। हीलियम 3 का उपयोग कर हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। चंद्रयान 1 की सफलता के महत्व का श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को जाता है। चूंकि चंद्रयान 1 को 2 साल तक चंद्र कक्ष में स्थापित रखना है, इस अवधि में 4-5 बार ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि चंद्रयान को चंद्र ग्रहण जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा और इसे सूर्य की ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने इसमें 36Ah हाई पावर्ड लिथियम ION बैटरी लगाई है। जैसे ही चंद्रयान को सूरज की रोशनी मिलनी बंद हो जाएगी तो वह इस बैटरी के बैकअप से संचालित होगा। चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी विशेषता उसमें लगे मून इंपैक्ट प्रोब हैं, जिसमें चांद की सतह की ऊंचाई मापने वाला राडार एल्टीमीटर, फिल्म उतारने की वीडियो इमेजिंग सिस्टम, चंद्रमा के वातावरण को परखने वाला मास स्पेक्ट्रोमीटर तथा चंद्रयान से छोड़े जाने के बाद से टकराने तक भेजेगा। महत्वपूर्ण जानकारियां और ज्यादा नजदीक से चंद्रमा की खोज भी करेगा। इस प्रकार चंद्रयान 1 की सफलता अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण बन गई है। इस यान द्वारा भविष्य में अंतरिक्ष में होने वाली खोजों के बेस स्टेशन बनने की संभावनाओं का भी पता लगा लेने से अनेक संभावनाओं के द्वार खुल जाएंगे। पानी की संभावना का पता लग जाने पर अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन भी संभव है। इसके साथ ही यान की बनावट और उसकी सीमाओं को जानकर आगे यान के लिए ऊर्जा के अन्य स्रोतों एवं सामानों को परखा जाएगा। अतः हमारे देश के लिए चंद्रयान 1 की सफलता स्वयं सिद्ध है।
1: देखिए श्रोता भाई, कितना निमन यहाँ के फरिया फरिया बतौल हैं कि चंद्रयान 1 की सफलता पर हमने के कितना बड़ुए और का बा। यह पर यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। अब एगो जानकारी बड़ुए देखी, आज शतरंज दिवस है और एकरा में हमने के विश्व स्तर पर एकरा के हमने के मनावे नहीं जा, यानि कि आज 20 जुलाई है और दुनिया भर में इंटरनेशनल चेस डे मनावल जाला। शतरंज केवल खेल एगो खेल ना हो, बल्कि दिमागी क्षमता, रणनीति और धर के असली परीक्षा मानल जाला। भारत में एकर लोकप्रिय

लगातार पिछले कुछ साल से तेजी से बढ़ रहल बा, तेजी से बढ़ रहल बा। इसे एकरा में हमनी के शानदार एक बड़ वजह से भारत के खिलाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार सफलता मिल रहल बा। आज देश के लाखों युवा शतरंज के अपन करियर मानसिक विकास दोनों खातिर अपना रहल बा। इसे अंतर्राष्ट्रीय चेस दिवस के उद्देश्य दुनिया भर के लोग के यह वैधिक खेल से जुड़ल और एकरा सकारात्मक प्रभाव के प्रति जागरूकता करना बा। शतरंज खेले से निर्णय लेवे के क्षमता एकराकता बा। यही कारण बा कि कई गो देश के स्कूल में भी एकर शिक्षा के बढ़ावल जा रहल बा। संयुक्त राष्ट्र संघ भी शतरंज के सामाजिक और शैक्षिक महत्व के स्वीकार कैले बा। ई खेल भाषा संस्कृति और सीमा से ऊपर उठ के लोग के जुड़ के माध्यम बना चुकल बा। इसे ये आज एकर विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनावल जा रहल बा। तो देखें बत कही भाई, अब आज हमनी के मौसम के भी जानकारी कर लेवे के। तो भारत मौसम विज्ञान पूर्वानुसार यह अवधि में 22 जुलाई के तक आसमान में घना बदली रही। जिला में एक दो स्थान पर गरज और चमक के साथ आंधी चले के और भारी वर्षा होखे के भी अनुमान बढ़ गए। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के अनुमान बा। सापेक्षित आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहरिया में 55 से 65 प्रतिशत रहे के संभावना बा। ए अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वा कभी दक्षिणी पूर्वा हवा चले के अनुमान बा। यही के साथ साथ देखिए समय उड़ाइल चलो सब श्रोता भाई बहन के जगत भाई के नमस्कार।

0: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देहियों के बुलंदियन के पाख।
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
0: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
1: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
0: त बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
1: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम एन के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब लीजिए सुनिए भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत।

अभी आप सुन रहे थे बलम परदेसिया फिल्म का ये प्यारा सा गीत आशा भोसले की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था अनजान ने और संगीत चित्रगुप्त का था। अब लीजिए सुनिए भैया दूज फिल्म का गीत जिसे गाया है अलका याग्निक ने। इस गीत को लिखा है लक्ष्मण शाहबादी ने और संगीत चित्रगुप्त का है।

अभी आप सुन रहे थे भैया दूज फिल्म का गीत। अब लीजिए सुनिए दंगल फिल्म का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले ने। इस गीत को लिखा है कुलवंत जानी ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: इस गीत के साथ ही सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, तो बने रहिए हमारे साथ एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र के साथ।

0: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब लीजिए सुनिए हमारा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

कैसे हैं बिहार और झारखंड वालों, एक बार फिर से आपका दोस्त राजेश आ गया आप सबों के बीच में। सोमवार का दिन है और आज के दिन इसी मीटर पर आकाशवाणी के आप सुनते हैं बुनियाद। जी हां, बुनियाद एक ऐसा कार्यक्रम जो आप युवाओं के लिए एकदम हिट साबित हो रहा है। हम आपकी बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं और जिस पर जो पूरी इमारत लिखी जाए ना, वो एकदम मुकम्मल हो। अच्छा रोजगार, अच्छा पैसा, अच्छी जिंदगी, सब कुछ आपको मिल सके। और इस बुनियाद कार्यक्रम में हम बातें करते हैं रोजगार, जी हाँ रोजगार की। और रोजगार मिलती है ज्यादातर, हाँ आसानी से, प्रोफेशनल पढ़ाई करके, विशेषज्ञता हासिल करके, टेक्निकल पढ़ाई करके। और एक मेरा ये जो सेंटेंस है ना, ये जो लाइन है ना, बहुत पॉपुलर हो रहा है कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। अगर जो आपने की टेक्निकल पढ़ाई तो आपके जीवन में सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी हाँ, और ये बुनियाद कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं एक वैसे संस्थान, एक वैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टेक्निकल पढ़ाई का हब है, और ये अपने बिहार के जमुआर में है, रोहतास में है, सासाराम में है, और जिसका नाम है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय से आप टेक्निकल पढ़ाई कर सकते हैं। इसके वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं, और वेबसाइट का पता है www.gnsu.ac.in। और जो अगर फोन करना चाहें तो सबसे पहले हम एक टोल फ्री नंबर है वो बता रहे हैं, नंबर नोट करें 1800 121 0051 1800 121 0051। और दूसरा जो नंबर है मोबाइल का, वो नंबर है 9431899002। पिछले सप्ताह अवनीश रंजन थे हमारे साथ और हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स की चर्चा की थी, बीएड स्पेशल एजुकेशन। हमने कहा बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड सब कोई करना चाहता है ना, करना चाहता है और शिक्षक बनना चाहता है या फिर आगे निकलना चाहता है, लेकिन बीएड स्पेशल एजुकेशन की बातें हमने की थी जो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में होता है। पूरे बिहार और झारखंड से रिस्पांस आए हैं।

0: उन्होंने डाल्टनगंज से मोहन यादव ने लिखा है कि बीएड स्पेशल एडुकेशन और बीएड में हाँ क्या क्या अंतर है या दोनों के बारे में एक बार फिर से बताइए, क्योंकि मैं कार्यक्रम सुन रहा था और सुनते सुनते ये जो जवाब था वो निकल गया, हम फॉलो नहीं कर पाए। इसी तरीके से भागलपुर से, पूर्णिया से, हाँ इवन सासाराम से भी हाँ फोन कॉल्स आए हैं इसी तरीके के सवाल के लिए। तो चलिए हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन आपके डिमांड पर हम एक बार फिर से अवनीश रंजन जो हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम में, हम उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि बीएड और बीएड स्पेशल एडुकेशन के बारे में हमें जानकारियां दें एक बार फिर से, जिससे हम आपकी मदद कर सकें।
1: अब जो स्टूडेंट्स बीएड कोर्स करना चाहते हैं उनके मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि दो अलग अलग ये कोर्स क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा कि एक समय ऐसा था जब दो अलग अलग बीएड कोर्स चलते थे, और जिसमें था कि एक वैसे बीएड जो सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों को पढ़ाने के टीचर के रूप में ट्रेंड होते थे, और दूसरा बीएड जिसमें कि जो दिव्यांग बच्चे हैं जिन्हें जो कोई मानसिक रूप से कमज़ोर है या देखने में उनको दिक्कत हो रही है या सुनने बोलने में दिक्कत है, उन बच्चों के जो विशेष शिक्षक होते थे उनकी ट्रेनिंग होती थी। ये आज से करीब 4 साल 5 साल 8 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था। अभी सरकार ने ये निर्णय लिया कि चूंकि हमारे सारे जब से सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान पूरे भारत में लागू हुआ, तो उसके बाद सरकार का ये निर्णय हुआ कि जो टीचर होंगे स्कूल के, जो भी टीचर होंगे, वो सारे इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के ट्रेंड होने चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि वैसा विद्यालय जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे जो स्कूल के फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में शामिल होने के लायक हैं। तो अब जो स्पेशल एजुकेशन वाले जो बीएड हैं जो जिन्होंने किया है कोर्स को, वो सामान्य विद्यालयों में भी सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड होते हैं, और वो टीचर दोनों बच्चों को एक समान रूप से पढ़ा सकते हैं।
0: बहुत खूब, आपने सारी चीजें एक बार फिर से अच्छे से बता दी, और हमें उम्मीद है कि पूरा बिहार और झारखंड जो सुन रहा है और बीएड करना चाहता है एक बार जरूर बीएड स्पेशल एडुकेशन की तरफ देखेगा। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं बीएड स्पेशल एडुकेशन में। आप जो कॉमन आदमी है उसके लिए, कॉमन बच्चे हैं उसके लिए तो काम कर सकते हैं, चैलेंज बच्चों या डिजेबल बच्चों के लिए भी आप काम कर सकते हैं। सर्विस की भावना ज्यादा है, सारा कुछ इसके अंदर है। जी हाँ, ये गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में ये कोर्स होता है। हम नंबर बता दे रहे हैं, आप चाहें तो बात कर सकते हैं। नंबर जो टोल फ्री नंबर है हमारा 1800121051, 1800121051, और दूसरा जो नंबर है 9431899002, ये नंबर है। आगे बढ़ें बीएड स्पेशल एडुकेशन के बारे में, आगे बढ़ें उससे पहले आपको याद दिला दें युवा साथियों कि हमने तीन नए कोर्सेज की चर्चा की थी जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, दूसरा कोर्स था परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, और तीसरा कोर्स था बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। इसकी चर्चा हमने इस बुनियाद कार्यक्रम में की थी, आपके रिस्पॉन्सेज आए हैं, लेकिन सच बताऊं तो जितना आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आए। शायद आप ये कोर्स को समझ नहीं पाए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन ये हॉट केक है। एक बार फिर से बता देते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये इसकी प्लेसमेंट होती है। इसी तरीके से परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है और बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज है, सीट बहुत कम है। इसी नंबर 1800121051 या 9431899002 इस नंबर पर आप बात करके जानकारियां ले सकते हैं। बहरहाल अवनीश जी, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में जरा लोगों को बताइए, वहां ये कोर्स होता है, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें जितनी जानकारी हम दे सकते हैं गागर में सागर भर दीजिए।
1: मैं बताना चाहूंगा कि गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी रोहतास जिले, बिहार के रोहतास जिले के जमुआ में स्थित है, और ये करीब 100 एकड़ में फैला हमारा यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज संचालित होते हैं, जिसमें हमारा ये फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस भी है। फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस के ही अंतर्गत ये 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन के 2 स्पेशलाइजेशन के साथ, 2 विशेषज्ञता के साथ बीएड की पढ़ाई होती है, एक इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी

0: से हम बौद्धिक अक्षमता कहलाते हैं, और दूसरा हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब जिनको सुनने या बोलने में समस्या है बच्चों की, उनके शिक्षक की ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ भारतीय पुनर्वास परिषद, जो भारत सरकार की वैधानिक संस्था है, वहाँ से मान्यता प्राप्त है हम लोगों का यहाँ। और इसके अलावा हमारे जो फैकल्टी हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स को, टीचर ट्रेनीज को पढ़ाते हैं, वो वेल क्वालिफाइड हैं, उनके पास अच्छी डिग्री है और इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। साथ साथ हमारे हमारे ही कैंपस में नारायण वर्ल्ड स्कूल है, जो चूंकि टीचिंग प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है टीचर्स को अपने ट्रेनिंग के दौरान, तो उनको प्रैक्टिस के लिए भी हमारे कैंपस में स्कूल है, जो इंक्लूसिव स्कूल है, जिसमें कि सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ते हैं। हमारे कैंपस में नारायण केयर बाल पुनर्वास केंद्र भी स्थापित है, जहाँ पर इस तरह के बच्चे थेरेपी के लिए आते हैं और स्पेशल एजुकेशन के लिए आते हैं। जब ऐसे सेटअप में, स्पेशल सेटअप में, जहां इन बच्चों को अलग से स्कूल के अलावे भी अगर उनको सपोर्ट की जरूरत है तो उस तरह की सेंटर्स हैं। तो जो स्टूडेंट यहां एडमिशन लेंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले कोर्स में, उनको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भी व्यवस्था हमारे यहां है, थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन के लिए लैब उन हमारे पास अवेलेबल है, हमारे यहाँ बच्चे अवेलेबल हैं जिनके ऊपर बच्चे उनको ट्रेनिंग के दौरान उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन असेसमेंट करने के लिए भी व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैंपस में ही हॉस्टल अवेलेबल है, लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल है। हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के माने भोजन उपलब्ध कराने वाली मेस है, जिसमें कि जो भी बच्चे रहते हैं हॉस्टल में उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट, ग्रीन इन्वायरमेंट मिलता है, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा वैसे लोगों से जिन्होंने प्लस टू किया है इस बार साइंस या आर्ट्स में, वो एक बार हमारी यूनिवर्सिटी को विजिट करें, हमारे वेबसाइट पर भी जाएँ और फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस को के साइट को देखें और हमारे प्रोग्राम्स को समझें, हमारे पूरे फैसिलिटी को एक बार देखें। और मैं अपील करूंगा कि वो एडमिशन अगर लेते हैं तो मैं अपनी तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के, अच्छी यूनिवर्सिटी को में एडमिशन लेंगे और उनकी अच्छी पढ़ाई के साथ एक अच्छे मार्क्स के साथ डिग्री लेकर निकलेंगे, जब वो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पार्ट उनका बहुत स्ट्रांग होगा और जहां चाहे वो जॉब कर सकते हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं।
1: मजा आ गई लवनीश जी, वाह, बहुत पूरी तरीके से आपने खोल के बता दिया। लेकिन आपने बाद में रोजगार की बात कही, यहाँ एक सहज जिज्ञासा है, पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा रोजगार सारे यूथ चाहते हैं, गार्जियन भी चाहते हैं, अगर हमारा बेटा भी हो तो हम चाहेंगे पढ़ने के बाद रोजगार लगे, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या व्यवस्था है?
0: जी, हमारे यहाँ अलग से एक प्लेसमेंट सेल है, जिसमें कि हमारे वैसे लोग जो हमारे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं उनके लिए हम लोग प्लेसमेंट के लिए ड्राइव चलाते हैं। बहुत सारे एजेंसीज हैं खासकर जो इस फील्ड में काम कर रही है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज है जो हमारे यहाँ आती है और इन लोगों के का इंटरव्यू लेके और उनके को सेलेक्ट करके और अपने यहाँ ले जाती है और अच्छे पैकेज पे उनको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है।
1: अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ कैंपस में नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी है, तो क्या आप अपने बच्चों को या आपके यहाँ से जो पढ़ के निकले आप अपने यहाँ भी प्लेसमेंट देते हैं उनको?
0: जी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो हमारे बच्चे हमारे कैंपस में काम करना चाहते हैं तो हम उनको चांस देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब हमने अपने बच्चों को एक हाई एजुकेशन दिया है, एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन दिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी, तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे हम लोगों के यहाँ पहले ऑब्जर्व हों। अगर वो अपने एरिया में काम करना चाहते हैं तो हम लोग उनको वो भी मदद करते हैं कि आप जिस राज्य में या जिस शहर में काम करना चाहते हैं तो हमारे लिंक्स हैं, हम लोग उनको वहाँ भी रेफर करते हैं और वहाँ जाके वो जॉब करते हैं।
1: अवनीश जी, रोजगार से संबंधित एक और हम जानकारी चाहते हैं कि स्कूलों में सब बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी बीएड स्पेशल एडुकेशन वालों की बढ़ी है क्या?
0: सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के आने के बाद जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वो सबको सरकार की मैंडेटरी है कि वो इंक्लूसिव सेटअप में उस स्कूल को रखना है, मतलब कि ऐसा स्कूल जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे, तो उस विद्यालयों में इन शिक्षकों की भारी मांग है। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, चाहे वो सीबीएसई के स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो या और दूसरे प्राइवेट विद्यालय हो, जैसे आईसीएसई और सीबीएसई के स्कूल हैं, वो सारे जगह पे मैंडेटरी है कि इन तरह के टीचर्स को उनकी बहाली कंपलसरी है, रखनी है उनको और उनका वहाँ स्कोप है जहाँ वो एज ए टीचर काम कर सकते हैं।
1: वाह, बहुत खूब, थैंक यू अविनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल आए तो आपसे जरूर पूछेंगे, आपको बुलाएंगे इस कार्यक्रम में। तो साथियों, पूरा बिहार और झारखंड आपने सुना पहले कोर्स के बारे में, बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के

0: बारे में, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में, और लंबी बातचीत हुई जॉब को लेकर। हर तरफ जॉब ही जॉब है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बात कर सकते हैं इस नंबर पर 1800 121 0051, 1800 121 0051, और दूसरा नंबर 9431899002, ये नंबर है। और इंटरेस्टेड होना भी चाहिए बीएड स्पेशल एडुकेशन के लिए। और इसके अलावे आज ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आ गई है युवा साथियों, बस गौर करने की जरूरत है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है ये जानने की जरूरत है। अपने बिहार में टेक्निकल पढ़ाई वाला यूनिवर्सिटी है जहां 13-14 अपॉर्चुनिटी है। जैसे अगर आपने बायोलॉजी के साथ किया है तो मेडिकल है, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। इसके अलावा फार्मेसी है, पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, नर्सिंग के कोर्सेज हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर है, आप जा सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल पढ़ाई में आप लॉ, 5 ईयर लॉ कर सकते हैं। इसके अलावे भी लाइब्रेरी साइंस, बीटेक, आईटी, न जाने कितने कोर्स हैं। बस जरूरत है ध्यान देने की। और नंबर वही 1800 121 0051 और 9431899002। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम बुनियाद पूरे बिहार और झारखंड के बच्चों के लिए राजेश को लेकर आने का मौका दिया। चलते हैं, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब हम आपको ले चलते हैं संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास की तरफ। और आज का जो हमारे पास जो स्थानीय संध्याकालीन जो सूचना है वो मैं आपसे शेयर करूँगा, और उसके बाद एक बेहतरीन सा गीत मैं आपको सुनाऊँगा। तो आज का जो संध्याकालीन जो सूचना है वो इस तरह से है कि रोहतास जिले के ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किला एवं पहाड़ी गांवों के विकास, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार तथा पहाड़ी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक रोहतास श्री रोशन कुमार ने स्थलीय जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी ने रोहतासगढ़ पंचायत भवन के पास स्थित नवनिर्मित अतिथि गृह में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में पर्यटन विकास, सड़क संपर्क, विद्युत एवं ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण तथा स्थानीय लोगों के लिए आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने रोहतासगढ़ किला परिसर में स्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के कर्म वृक्ष के संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि का चयन करने का निर्देश जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही रोहतासगढ़ रोपवे परियोजना की गुणवत्ता, निर्माण मानकों एवं कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पहाड़ी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोलर प्लांट की स्थापना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। पहाड़ी गांवों में बिजली पहुंचाने की योजना पर भी मंथन किया गया तथा बताया गया कि वन विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद संबंधित कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई कि रेहल से चौरासन मंदिर तक प्रस्तावित सड़क निर्माण में आ रही प्रशासनिक एवं तकनीकी बाधाओं को शीघ्र दूर कर परियोजना को गति प्रदान की जाएगी। चौरासन मंदिर के क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत कर आवश्यक स्थानों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से रेलिंग लगाने का निर्देश दिया गया। साथ ही मंदिर परिसर के समीप लोगों की सुविधा के लिए शौचालय का निर्माण कराने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी बताया गया कि रेहल थाना भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, नेटवर्क एवं सैटेलाइट कनेक्टिविटी उपलब्ध होते ही थाना विधिवत कार्य करना शुरू कर देगा। अधिकारियों द्वारा बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा रोहतासगढ़ किला परिसर में

में विभिन्न संरक्षण एवं विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि इन कार्यों में संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए ताकि ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण एवं पर्यटन विकास दोनों समानांतर रूप से आगे बढ़ सकें। जिला पदाधिकारी ने कहा कि रोहतासगढ़ किला देश की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। यहाँ सड़क संपर्क, बिजली एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। जिला प्रशासन रोहतासगढ़ क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। इस दौरान उप विकास आयुक्त, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, प्रभारी पर्यटन पदाधिकारी, वन विभाग के अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अभियंता एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। तो दोस्तों, ये थी रोहतास जिले की सायंकालीन सूचना। तो आइए दोस्तों, आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं, और ये गीत हमने लिया है अजीवा फिल्म से। इस गीत को गाया है मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक ने, इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

इसी के साथ ये संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और ज़िले की हलचल आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से।

0: फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले?
4: ना,
3: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और? नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
4: जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: अरे, मेरा वोटर आई कार्ड घर पर रह गया, अब क्या मैं मतदान नहीं कर पाऊंगा?
8: क्यों नहीं, पहचान के और भी कई मान्य विकल्प है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त बैंक या डाकघर पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, पैन कार्ड, सेवा पहचान पत्र, MPR स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, MLC की आधिकारिक पहचान पत्र, आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय योजनाओं के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तथा UDID कार्ड दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है।
7: मतलब वोट जरूर दे सकता हूँ?
8: बिल्कुल, पहचान पत्र की वजह से आपका वोट नहीं छूटना चाहिए।
9: 182 बांकीपुर विधानसभा उपनिर्वाचन 2026 में मतदान तिथि है 30 जुलाई 2026। मतदान के दिन मान्य पहचान दस्तावेज साथ रखें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
10: कोई मतदाता ना छूटे।
11: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
12: जी नमस्कार, मैं सम्राट चौधरी बोल रहा हूँ। राज्य में अग्नि कांडों से होने वाली जान माल की क्षति अत्यंत दुखद और अपूर्णीय है। यदि हम सभी सतर्क रहें और आवश्यक सावधानियों का पालन करें तो इन घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। बिहार अग्निशमन सेवा

0: जनहित में निरंतर जन जागरूकता अभियान के माध्यम से आप सभी के अग्नि सुरक्षा एवं निवारण के प्रति जागरूक कर रही है। यह सेवा राज्य के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर है। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा किया जा रहा सुझाव का पालन करें। आपकी सजगता और सहयोग से हम राज्य में अग्निकांडों को रोक सकते हैं और जान माल की क्षति को न्यूनतम कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर सुरक्षित बिहार का निर्माण करें। जय बिहार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों से सार्थक चर्चा की अपील की। विधानमंडल के मानसून सत्र की आज से शुरुआत। 87,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पेश। मौसम विभाग ने कैमूर, गोपालगंज, रोहतास और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की। कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। और राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता में पश्चिम चंपारण ने खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, यदि दोनों सक्रिय रहें तो वे अत्यंत उत्पादक साबित होते हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों के सत्र में 19 बैठकें होंगी। वहीं केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सत्र के पहले दिन लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। बाद में नीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर 1 बजे कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्य नीट मुद्दे को लेकर अपना विरोध जताते रहे। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की बात पर ध्यान न देते हुए अपना विरोध जारी रखा।
2: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सदस्यों से सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। विधानमंडल के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर पहुंचकर हंगामा किया।

0: विपक्ष नीट परीक्षा पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा था। हालांकि इस दौरान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं पहुंचे थे। विपक्ष के हंगामे पर उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने कहा कि यह परंपरा गलत है, सदस्यों को सदन में अपनी बात रखनी चाहिए।
1: स्वयं हित में जीने वाले लोग कभी बंगला के लिए हट करते हैं, कभी सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं, कब जनहित के मुद्दों को उठाते देखा। और जब भी सदन चलता है नेता विपक्ष गायब रहते हैं, अब इसी से उनके गंभीरता का अंदाजा लगा लीजिए।
0: बाद में मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, विपक्ष कानून को बचाने का काम कर रहा है।
2: नीट पेपर लीक जो मामला हुआ है और कई ऐसे सरकार के द्वारा परीक्षा ली जा रही है जिसकी पेपर लीक हो जा रही है, उसी को उजागर करने के लिए हमारा दल और हमारा गठबंधन ने रोड मार्च करने, नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो भाई वीरेंद्र और अन्य जो भी कार्यकर्ता और नेता है वो तेजस्वी के रूप में काम करते हैं।
0: विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार के भाषण और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही चली। इसके बाद कल 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सत्र के दौरान राज्य के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने 87,383 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इसमें राज्य योजना मद में 24,370 करोड़ रुपए की राशि जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अलग से राशि रखी गई है। सत्र के दौरान 10 विधेयक सदन के पटल पर रखे गए हैं। भगवान सोमनाथ धाम की यात्रा के लिए आज 1,100 श्रद्धालु सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पाटलिपुत्र जंक्शन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
3: आज से हजार वर्ष पहले कई आतंकी आए जिसने बिहार उस सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम किया। वो सिर्फ सोमनाथ को नहीं लूटा था, वो तो बिहार की धरती पर आकर इस बिहार का जो गौरवशाली इतिहास था नालंदा को भी जलाने का काम किया था। लेकिन हम भारत के लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिसने भगवान सोमनाथ को के मंदिर को भी स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय को भी मोदी जी और नीतीश जी।
4: मुख्यमंत्री ने बताया कि गुजरात प्रवास के दौरान श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं गुजरात सरकार की ओर से की गई हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं की यात्रा, भोजन, चिकित्सा, सुरक्षा और अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य समाज को अपनी संस्कृति से जोड़ना, नई पीढ़ी को अपने इतिहास से परिचित कराना और सनातन परंपरा के प्रति गौरव का भाव जागृत करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रद्धालुओं ने राज्य सरकार के इस पहल की सराहना की।
5: आज हम सभी बिहारवासी बाबा महादेव के दर्शन के लिए सोमनाथ की शुभ यात्रा पर निकल रहे हैं। ये हमारे बिहार के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है।
6: जाने का बहुत हम लोग खुशी मिल रहा है। बाबा सोमनाथ का दर्शन होगा। हर हर महादेव और बिहार सरकार को बहुत बहुत आभार।
7: पहला यात्रा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा दिया गया, बहुत ही खुशी की बात।
4: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने आज विधान परिषद में कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप सभी सदस्यों को सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करना चाहिए।
8: नीतीश कुमार जी ने भले ही राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है लेकिन उनका मार्गदर्शन हमारे साथ रहेगा। हमारा गठबंधन, हमारी सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार तो सहयोग हमें मिल ही रहा है। ऐसे में कोई कारण नहीं कि हम लोग विकसित और समृद्ध बिहार न बने।
0: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। से समाचार एक अंतराल के बाद।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।

0: एक्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज कैमूर, गोपालगंज, रोहतास और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सीवान और वैशाली जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार की कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसके कारण कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 52 सेंटीमीटर ऊपर है, जबकि मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी रून्नी सैदपुर में 30 सेंटीमीटर और बेनीबाद में 105 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बालतारा में खतरे के निशान से 73 सेंटीमीटर ऊपर है। इसके साथ ही राज्य में झंझारपुर में कमला बलान और महानंदा समेत अन्य नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। वहीं मुंगेर जिले में भारी बारिश के कारण क्यूल जमालपुर रेलखंड पर कजरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर लगभग 2 फीट पानी जमा हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: रेलवे प्रशासन ने इस रेलखंड पर रेलगाड़ियों का परिचालन अस्थायी रूप से रोक दिया है। इससे कई महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां विभिन्न स्टेशनों पर घंटों तक खड़ी रही। इनमें भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस अभयपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी रही, वहीं जमालपुर चूल DMU को धरारा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया, जबकि गया जमालपुर पैसेंजर दशतपुर स्टेशन पर घंटों तक खड़ी रही। अचानक रेलगाड़ियों के रुक जाने से कई यात्रियों को आगे की यात्रा प्रभावित हुई, जबकि जरूरी कार्यों से जा रहे लोगों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्टेशन परिसर में यात्री ट्रेन परिचालन सामान्य होने का इंतजार करते रहे। बाद में रेलवे प्रशासन ने रेल ट्रैक पर जलस्तर कम होने और सुरक्षा जांच के बाद कुछ रेलगाड़ियों के परिचालन की मंजूरी दी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह।
2: मुंगेर पोलो मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय 65वीं सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता के अंडर 15 बालक वर्ग का फाइनल मुकाबला पश्चिम चंपारण और मुंगेर के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में पश्चिम चंपारण की टीम ने मुंगेर को 0-3 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। इस जीत के साथ पश्चिम चंपारण की टीम अब बेंगलुरु में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य के 20 जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी संदेश का खंडन किया है। इसमें दावा किया गया था कि सरकार ने एक मसौदा नियम बनाए हैं। इन नियमों के कारण 11 करोड़ टीवी चैनल बंद हो जाएंगे और केबल तथा DTH शुल्क 4-6 गुना बढ़ जाएंगे। इसमें भारी लाइसेंसिंग शुल्क भी लागू होंगे और लाखों नौकरियां खत्म हो जाएंगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि सरकार ने ऐसा कोई नियम पेश नहीं किया है। समस्तीपुर जिले में पूसा कस्तूरबा विद्यालय की 12वीं की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार घटना पूसा थाना क्षेत्र के केजिया वार्ड में हुई। मामले की छानबीन की जा रही है। बक्सर जिले के चुरामनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में ऑटो सवार 8 शिक्षक-शिक्षिकाएं घायल हो गए हैं। मधुबनी जिले की पुलिस ने बाबू बरही थाना क्षेत्र से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अरवल जिले में मेहंदिया थाना क्षेत्र के हरदिया मोड़ के पास मोटरसाइकिल सवार 2 युवक के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने के कारण मौत हो गई। मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र के SI और चौकीदार पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 देसी पिस्टल, 3 कारतूस

0: छियालीस ग्राम ब्राउन शुगर, चार मोबाइल और एक लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। सुपौल जिले के सदर अस्पताल में जिलाधिकारी सावन कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर बाबू साहब झा ने संयुक्त रूप से 182 यक्ष्मा रोगियों के बीच निक्षय पोषण किट वितरित किया। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस जिला क्षेत्र के वाल्मीकि नगर पनियहवा रेलखंड पर आज एक जंगली भालू की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। हादसे के कारण करीब 2 घंटे तक रेल परिचालन प्रभावित रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों से सार्थक चर्चा की अपील की। विधानमंडल के मानसून सत्र की आज से शुरुआत। 87,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पेश। मौसम विभाग ने कैमूर, गोपालगंज, रोहतास और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की। कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। और राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता में पश्चिम चंपारण ने जीता खिताब। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे फैमिली नए झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: अरे वाह, यहाँ ठंडा पानी है
7: और देखिए साफ सुथरा शौचालय भी।
6: मेरे लिए रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था भी है। वाह,
8: दिशा सूचक इतने स्पष्ट है कि केंद्र ढूंढना बिल्कुल आसान हो गया। हेल्प डेस्क पर हर जानकारी तुरंत मिल रही है।
9: वाह, मोबाइल रखने की व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, शाम तक रोशनी की सुविधा, सब कुछ है।
10: और ये पोल वॉलंटियर्स कितना सहयोग कर रहे हैं।
8: 182 बांकीपुर विधानसभा उपनिर्वाचन 2026 में आपका मतदान अनुभव होगा सुगम, सहज और सुरक्षित। मतदान केंद्रों पर भूतल पर मतदान केंद्र, ठंडी पेयजल, स्वच्छ शौचालय, स्पष्ट संकेतक, रैंप, व्हील चेयर, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, प्रकाश व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, पोल वॉलंटियर्स और मोबाइल रखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 30 जुलाई 2026 को घर से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
11: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
12: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सारण जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह।
13: नेपाल से लगातार हो रही भारी बारिश से वाल्मीकि नगर बैराज से 2,26,000 क्यूलिस पानी छोड़े जाने के कारण सारण जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की ओर से नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी बनी हुई है। राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 योजना के तहत सारण जिले के 9 प्रखंड तरैया, मकेर, एकमा, दरियापुर, मरहोरा, मसरक, लहलहादपुर, पानापुर और इसुपुर में राजकीय डिग्री कॉलेज का संचालन शुरू कर दिया गया है। प्रारंभिक चरण में चिन्हित सरकारी विद्यालयों के भवनों में कक्षाएं संचालित की जा रही है। साथ ही भवनों की मरम्मत, बिजली, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी कार्य किया जा रहा है। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बढ़ौड़ा छपरा पटना के बीच मेमो ट्रेन चलाने की मांग की है। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस संबंध में अनुरोध करते हुए कहा है कि इससे छात्रों, नौकरी पेशी लोगों और प्रतिदिन पटना आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
14: और सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री का आभार कि आपको इस बड़ी जिम्मेवारी के साथ छपरा की धरती पर, सारण की धरती पर एक ट्रेन के सुपर फास्ट ट्रेन की शुरुआत की घोषणा की। मरहौड़ा से लेकर के छपरा होकर के पटना के लोगों ने बहुत ट्रेनों की मांग की है, तो एक मेमू चलवाए बहुत अच्छा रहेगा।
13: सारण प्रमंडल के लिए जुलाई 2026 का क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण RTA एजेंडा जारी किया गया है। इसमें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक प्राथमिकताओं से जुड़े विषयों पर विचार किया जाएगा। दिल्ली के औषधि विभाग से मिली सूचना के आधार पर एकमा प्रखंड

0: के फुटची खुद्र गांव में औषधि विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में संदिग्ध आयुर्वेदिक दवाएं बरामद की गई हैं। अधिकारियों ने दवाओं के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं और पूरे स्टॉक को सील कर दिया गया है। और जिले में आयोजित ITT टेबल टेनिस प्रतियोगिता में करीब 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में जिले के 2 खिलाड़ियों ने शीर्ष स्थान हासिल किया।
1: और अब प्रस्तुत है सिवान जिले की हलचल। सिवान जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आकाश कुमार।
2: सिवान जिले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान तेज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिक परिवारों को योजना से जोड़ने और 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार का लाभ दिलाने का विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सदर अस्पताल में आयुष्मान कार्ड निर्माण का विशेष कार्यालय भी बनाया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले में हर वर्ष 50,000 से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर जिले में अम्बेडकर भवन और जिला परिषद सभागार में प्रांगणों एवं प्रेक्षकों का प्रशिक्षण जारी है। 15 से 20 जुलाई तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में घर घर सर्वेक्षण, डिजिटल डेटा संग्रह और सरकारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विभिन्न सुविधाओं से जुड़े आंकड़े भी एकत्र किए जा रहे हैं। जिला सदर अस्पताल की व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में है। बीते दिनों अस्पताल में मरीजों की परेशानी और परिसर में कथित दलालों की सक्रियता का मुद्दा सुर्खियों में रहा। लोगों ने व्यवस्था में सुधार और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल प्रबंधन ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जिले में अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान भी जारी है। जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रे और पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने लोगों से नशे के कारोबार की सूचना देने पर तथा युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की है। प्रधानमंत्री किसान निधि, उज्ज्वला योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। संबंधित विभागों ने पात्र लाभार्थियों से आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने विभिन्न मामलों में जाँच और छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। और जिले में सड़क, जल निकासी, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित बुनियादी सुविधाओं के विकास को लेकर कई प्रशासनिक बैठक और जनहित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जिला प्रशासन ने विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आम लोगों की समस्याओं को त्वरित समाधान की बात कही है।
1: अभी आप सुन रहे थे सारण और सिवान जिले की हलचल। सारण जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह, जबकि सिवान जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आकाश कुमार।
3: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, प्रस्तुत है विधानमंडल के कार्यवाही की समीक्षा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है विधानमंडल में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता। विधानसभा की कार्यवाही के समीक्षक हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक चंद्रा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। सदन में 87,383.43 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया गया। साथ ही 4 अध्यादेशों की प्रति सदन के पटल पर रखी गई। सदन की कार्यवाही जैसे ही प्रारंभ हुई, विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक, कानून व्यवस्था और अपराध जैसे विभिन्न मुद्दों का हवाला देते हुए हंगामा शुरू कर दिया। राजद के आलोक मेहता और भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीट परीक्षा में हुई अनियमितताएं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के समान हैं। कई विपक्षी विधायकों ने उनका समर्थन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें शांत कराया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 87,383.43 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। यह बजट संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत अतिरिक्त खर्च की स्वीकृति के लिए लाया गया है। प्रस्तावित अनुपूरक बजट में सबसे बड़ा हिस्सा वार्षिक योजनाओं के लिए रखा गया है। इसके अलावा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए लगभग 30,266 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं केंद्रीय क्षेत्र की

योजनाओं के लिए 39.48 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त बजट से विभिन्न विकास योजनाओं, केंद्र और राज्य की परियोजनाओं के साथ साथ कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य प्रतिबद्ध खर्चों के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब इस अनुपूरक बजट पर 23 जुलाई को विधानसभा में चर्चा होगी, जिसके बाद इसे पारित कराया जाएगा। उन्होंने विधायकों से कहा कि मानसून सत्र राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान अनेक विधायी, वित्तीय और जनहित से जुड़े विषय सदन के समक्ष आएंगे। मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे सदन की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। अध्यक्ष ने सदन की आगे की कार्यवाही के संचालन में मदद के लिए 4 अध्याशी सदस्यों को मनोनीत किया। इनमें राम नारायण मंडल, श्याम रजक, आलोक मेहता और ज्योति देवी को शामिल किया गया है। इसके अलावा कार्य मंत्रणा समिति का भी गठन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष खुद इस समिति के सभापति होंगे, जबकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और लोजपा विधायक दल के नेता राजू तिवारी इसके सदस्य होंगे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, संजीव चौरसिया, मंजीत कुमार, मनोहर सिंह, अख्तरुल ईमान, प्रफुल्ल मांझी, माधव आनंद, अरुण सिंह, अजय कुमार, इंद्र प्रसाद गुप्ता और सतीश सिंह यादव विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार चिकित्सा संशोधन अध्यादेश 2026 और बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन अध्यादेश 2026 पेश किया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजन के लिए समपरिवर्तन अध्यादेश 2026 सदन के पटल पर रखा। इसके अलावा श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन और सेवा शर्त निरसन अध्यादेश 2026 को पेश किया। सदन ने 8 दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय रामेश्वर पासवान, बागी कुमार वर्मा, माधव लाल सिंह, राम प्रसाद सिंह, अनवर रहमत, अंबिका सिंह, नागेंद्र प्रसाद यादव और हरिराम के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। और अब प्रस्तुत है विधान परिषद में आज की कार्यवाही की समीक्षा। विधान परिषद की कार्यवाही के समीक्षक हैं वरिष्ठ पत्रकार किरणेश कुमार। बिहार विधान परिषद के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हुई। सत्र के पहले दिन बैठक की शुरुआत सभापति अवधेश नारायण सिंह के संबोधन के साथ हुई। स्वास्थ्य मंत्री निशांत को आज उनके जन्मदिन पर सभापति सहित सभी पार्टी के सदस्यों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। सत्र के लिए अध्यासीन सदस्यों का मनोनयन किया गया, साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट को सदन के पटल पर रखा गया। सदस्यों ने पूर्व विधायकों और विधान पार्षदों समेत राज्य के गणमान्य लोगों के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि दलहन और तिलहन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार किसानों को विशेष अनुदान दे रही है। सभापति ने कहा कि राज्य सरकार के सौर ऊर्जा संयंत्र योजना को प्रोत्साहन देने के निर्णय का दूरगामी प्रभाव होगा। सभापति ने कहा कि सम्राट चौधरी लंबे समय तक इस सदन के सदस्य रहे हैं। वे आज प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। सदन के नेता के तौर पर आज उनका पहला दिन है। उन्हें हम सब की तरफ से बधाई। उन्होंने कहा कि प्रगति के पथ पर राज्य को और आगे ले जाने के लिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 20 वर्षों तक इस सदन के सदस्य रहे। आज मुझे और इस सदन को उनकी अनुपस्थिति खल रही है। सभापति ने वर्तमान सत्र के लिए जदयू के संजीव कुमार सिंह, भाजपा के प्रोफेसर नवल किशोर यादव, कांग्रेस के मदन मोहन झा और निर्दलीय महेश्वर सिंह को अध्यासीन सदस्य मनोनीत किया। प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार ने बिहार विधानमंडल के सत्र में नहीं रहने की अवधि में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियां सदन के पटल पर रखा। बाद में

राजद के सुनील कुमार सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को महागठबंधन की ओर से जन्म की बधाई दी। इसके बाद जदयू के नीरज कुमार और रीना यादव, भाजपा के प्रोफेसर नवल किशोर यादव और राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कई सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। सदन में पूर्व सांसद और पूर्व विधान पार्षद राम प्रसाद सिंह और अनवर अहमद, पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह और रामेश्वर पासवान, पूर्व विधायक अंबिका सिंह, सैयद गुलाम हुसैन, सतीश कुमार, सियाराम यादव, राधिका देवी, मंसूर आलम, हरिराम, नागेंद्र यादव, बागी कुमार वर्मा और कृषि वैज्ञानिक गोपालजी त्रिवेदी के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल 12 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप विधानमंडल में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता सुन रहे थे। विधानसभा की कार्यवाही के समीक्षक थे वरिष्ठ पत्रकार आलोक चंद्रा, जबकि विधान परिषद की कार्यवाही के समीक्षक

0: राम प्रसाद सिंह और अनवर अहमद, पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह और रामेश्वर पासवान, पूर्व विधायक अंबिका सिंह, सैयद गुलाम हुसैन, सतीश कुमार, सियाराम यादव, राधिका देवी, मंसूर आलम, हरिराम, नागेंद्र यादव, बागी कुमार वर्मा और कृषि वैज्ञानिक गोपाल जी त्रिवेदी के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल 12 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप विधानमंडल में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता सुन रहे थे। विधानसभा की कार्यवाही के समीक्षक थे वरिष्ठ पत्रकार आलोक चंद्रा, जबकि विधान परिषद की कार्यवाही के समीक्षक थे वरिष्ठ पत्रकार किरणेश कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे चुके हैं और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म का नाम है लोफ।

कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य तख्तियां हाथ में लेकर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत रहकर और अपनी सीटों पर लौटकर प्रश्नकाल चलते रहने का देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहाँ चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सदन में तख्तियां लहराने और नारेबाजी को संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि सत्र के पहले दिन सदन नहीं चलने की परंपरा टूटनी चाहिए। प्रश्नकाल में नारेबाजी करना तख्तियां लहराना उचित नहीं है। अध्यक्ष ने इस दौरान सदस्यों से बार बार व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन इसका विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ और सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। हंगामा बढ़ता देख श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं है। असम अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं, देश में और भी कई समस्याएं हैं, आप उन पर चर्चा कीजिए, आपको नियमानुसार समय दिया जाएगा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सैकिया की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे हंगामा करते रहे। इस पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में भोजनावकाश के बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदस्यों को नियम 377 के तहत अपने मामले उठाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। श्री पाल ने कहा कि जनता ने सांसदों को अपने उम्मीदों के साथ लोकसभा में भेजा है, सदन में तख्तियां और बैनर लेकर आना तथा नारेबाजी करना उचित नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कोरम का मुद्दा उठाया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन में कोरम पूरा है। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि सांसदों को सदन में आने से रोका जा रहा है, लेकिन श्री पाल ने इस आरोप को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों से हंगामा बंद कर अपनी अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर

उन्होंने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा और शोरगुल होने लगा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखे जवाब में कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये के कुल बजटीय व्यय के साथ मेक इन इंडिया AI वर्क फॉर इंडिया की परिकल्पना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में शिक्षा हेतु AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश भर में शिक्षार्थियों को AI सक्षम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी का समावेशन करना है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में घोषित कौशल हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत ITI PMSETU योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। श्री मजुमदार ने कहा कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के उद्देश्य से NCERT द्वारा AI विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें 96,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार CBSE भी शिक्षकों को शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में AI उपकरणों के उपयोग और शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन में उनकी उपयोगिता के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 3 वर्ष में 1,234 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें CBSE से संबद्ध विद्यालयों के 64,775 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों के निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। उन्होंने कहा कि NCS परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ राज्यों, संस्थाओं के सहयोग से करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श करियर केंद्र MCC स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक सरकार ने पूरे देश में 407 आदर्श करियर केंद्रों को मंजूरी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास देश से सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है। बैंकिंग आउटलेट उपलब्धता की निगरानी एक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित एप्लीकेशन जनधन दर्शक JDD ऐप द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों, स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कुल शाखाओं का 25% हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति CP राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपने संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनके इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कोई विधायी कामकाज भी नहीं हो सका। इससे पहले दिन में 11 बजे मॉनसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। गुजरात से भाजपा के मुकेश भाई जे राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवच, मेघालय से NPP के जेम्स पगसा कोंकल संगमा, मिजोरम से खिंग्यांगटे लातलू आंकीमा, राजस्थान से भाजपा के डॉ. सतीश पूनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चेक बड़ाइक, सुष्मिता

देव और सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। खेड़ा ने अंग्रेजी में मुकेश भाई जे राठवा, महेश केवट, जेम्स पगसा, कोंकल संगमा, डॉक्टर सतीश पुनिया और प्रकाश गवड़ाइक ने हिंदी में तथा सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय ने बांग्ला में शपथ ली। बजट सत्र संपन्न होने और मानसून सत्र शुरू होने से पहले निर्वाचित हुए कुछ अन्य सदस्य अंतर सत्र अवधि के दौरान सभापति के कक्ष में शपथ ले चुके हैं। सभापति ने नए सदस्यों का सदन में स्वागत किया। इसके बाद सदन में चार दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगा साई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। श्री खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकता न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्यों ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे का मुद्दा उठाने की कोशिश की तथा सदन के बीच में आने का प्रयास किया। हालांकि सभापति राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सभापति ने बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि वो गतिरोध को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने वाले विधेयकों के लिए तय किए गए समय के बारे में सदन को बताया। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। उपसभापति हरवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि सुबह से अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये उच्च सदन है और इस तरह का व्यवधान उचित नहीं है। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सभापति ने सत्र के प्रारंभ में अपने संबोधन में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। सभापति ने कहा, मैं सदन के सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए कि सदन की पवित्रता बनी रहे। व्यवधानों को इसके कामकाज को बाधित नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने सत्र के उत्पादक, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण रहने की कामना की और कहा, मैं राज्यसभा के 271वें सत्र की शुरुआत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सदन की सार्थक चर्चाओं की गौरवशाली परंपरा रही है और मुझे विश्वास है कि इस सत्र उस विरासत को आगे बढ़ाएगा। हमारे सामने 19 बैठकें हैं और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस बहुमूल्य समय का उपयोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करने और उन पर निर्णय लेने में करें। सभापति ने कहा, इस सत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी और विचार विमर्श संबंधी एजेंडा है। मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे कामकाज के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान

देश और उन लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी करता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सत्र से उच्च सदन के सचिवालय ने सदस्यों की सीटों पर लगे मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से 9 भाषाओं में कार्यवाही का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद शुरू किया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इस सुविधा का सभी 22 अनुसूचित भाषाओं तक विस्तार किया जाएगा। उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार के लिए सदस्यों से अपनी प्रतिक्रिया देने को भी कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

अभी आप सुन रहे थे संसद समीक्षा आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है।

एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रवि सचदेवा, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र के साथ। तो वक्त हो चला है उस कार्यक्रम को सुनने का जिसका आप बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और आप बड़े ही प्यार से कहते हैं ई मन पसंद। श्रोताओं, ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम के इस सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बिना किसी देरी के चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और इस कार्यक्रम का ये पहला हमने ईमेल लिया है जो कि आया है फुटानी चौक नरहन स्टेट से। यहाँ से लिखते हैं ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, कुमकुम, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाड़कर, श्रीमती सरिता गवहाड़कर, प्रणीता सिद्धांत गवहाड़कर, अर्जुन गवहाड़कर और टुक टुक। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा। तो ये सभी सुनना चाहते हैं मोहरा फिल्म का गीत जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत विजू शाह का है।

ये अगला ईमेल आया हुआ है ताजपुर मुरवा समस्तीपुर बिहार से। यहाँ से लिखते हैं कारी रायकारी मीनाकारी पूंजराज आरती आकर्षण जयश्री।

छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फुलवाले, दुखनी रानी, सदफ आरजू, जूही इकबाल फुलवाले, इमरान अहमद फुलवाले और कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फुलवाले, लखमीनिया जिला बेगूसराय से शमीम अहमद राइन, अखलाक अहमद फुलवाले और समस्त फुलवाले परिवार। उत्तम पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। घोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और पूरा ढींगिया परिवार। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मौनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। तो ये सभी सुनना चाहते हैं आंटी नंबर वन फिल्म का ये प्यारा सा गीत जिसे गाया है आरजू बानो ने। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत आनंद मिलिंद का है।

ये अगला मैसेज आया है, पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब, गांधी चौक, बाड़मेर, राजस्थान से। यहां से लिखते हैं बबलेश पवार, डैनी पवार।

मनीष पवार, राम डोरा से दिनेश चौहान, लेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश राकेश ऋषिता, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर, आकाशी सासाराम से आलिया कमाल, मिराज सकीबा और निसार। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म श्री 420 का ये प्यारा सा गीत जिसे गाया है मुकेश और कोरस ने, इसे लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत शंकर जयकिशन का है।

ये अगला मैसेज आया है लिसनर मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगी सापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरुन निशा सबिस्ता मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी पुष्पेंद्र कुमार डूडी। दतरंगी से भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़ दयानंद गायकवाड़ ओमकार गायकवाड़ और साईं गायकवाड़। ये सभी सुनना चाहते हैं भ्रष्टाचार फिल्म का गीत जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर ने। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारलाल का है।

श्रोताओं, इस गीत को सुनने वालों में से और भी हमारे शोधक है, जो कि जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े थे। इसके अलावे वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया अंजुम खान, और मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी और रसीद वारसी। श्रोताओं, इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से, तो बने रहिए हमारे साथ एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र के साथ।

0: संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग

0: करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनो में स्टेफान सेल मारिसिस फेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनो में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
1: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवेर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स द्वितीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
2: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन

0: ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं। इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
1: इससे पहले कीर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
3: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेन देन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और

उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार संध्या आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक धारा।

अभी आप सुन रहे थे लोकधारा कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब दीजिए सुनिए कार्यक्रम बंदगी।

कार्यक्रम बंदगी, ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। तो आप बने रहिए हमारे साथ एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। कोई मेरे दिल से पूछे कि तेरे तीरे नीम कश को ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ये शेर सुनते ही आपको चचा गालिब याद आए होंगे और आप सोच रहे होंगे आज के फनकार हैं मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब के किरदार को छोटे पर्दे पर जिन्होंने बखूबी निभाया था वो हैं आज के फनकार।
1: बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश जेर पा, मुए आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का।
0: रोबीला चेहरा, दमदार एक्टिंग, हर किरदार में खूब फबने वाले अदाकार हैं आज के फनकार। जी हाँ, आज के फनकार हैं अभिनेता नसीरुद्दीन शाह।

नसीरुद्दीन शाह हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। नसीरुद्दीन शाह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। अभिनय के इस प्रतिष्ठित संस्थान से अभिनय का विधिवत प्रशिक्षण लेने के बाद वे रंगमंच और हिंदी फिल्मों में सक्रिय हो गए। नसीरुद्दीन शाह की फिल्मों की सूची में समानांतर और मुख्य धारा की फिल्मों का अनूठा सम्मिलन देखने को मिलता है।

मेनस्ट्रीम सिनेमा में नसीरुद्दीन शाह के सफर की शुरुआत हुई 1980 में आई फिल्म हम पांच से। फिल्म भले ही कमर्शियल थी, लेकिन इसमें नसीर के अभिनय की गहराई पैरेलल सिनेमा वाली फिल्मों से कम नहीं थी। गुलामी को अपनी तकदीर मान चुके एक गांव में विद्रोह की आवाज बुलंद करते नौजवान के किरदार में नसीर ने जान फूंक दी। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और राज बब्बर भी थे, लेकिन नसीर के दमदार अभिनय ने उन्हें सबसे अलग खड़ा कर दिया।

1987 में गुलजार की इजाजत नसीर के लिए कामयाबी का एक और जरिया बनकर आई। एक जज्बाती कहानी,

बेहतरीन निर्देशन, शानदार अभिनय और यादगार संगीत। इजाजत ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की और बतौर कमर्शियल एक्टर नसीर का रुतबा और बढ़ गया।

अपनी कामयाबी की कहानी आगे बढ़ाते जा रहे थे तो उनकी अदाकारी के चर्चे सात समंदर पार तक पहुंच गए। सन 2003 में आई हॉलीवुड फिल्म द लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन में नसीरुद्दीन ने कैप्टन नीमो का किरदार निभाया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए में भी उन्होंने शानदार काम किया। देश से लेकर परदेश तक नसीरुद्दीन शाह ने अपनी अदाकारी का लोहा सारी दुनिया में मनवाया है। लेकिन नसीर अपनी काबिलियत को खुशकिस्मती का नाम देते हैं। वो कहते हैं, मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे इतने मौके मिले, लेकिन मैं कमर्शियल फिल्मों से अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ। सन 2008 में आई अ वेडनेसडे ने नसीर की कमाल की अदाकारी का एक और नजराना पेश किया, तो इश्किया, राजनीति, सात खून माफ और डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों के जरिए नसीरुद्दीन शाह ने बार बार ये साबित किया कि एक सच्चे कलाकार को उम्र बांध नहीं सकती।

0: हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मैक्सिमम में भी नसीर की जोरदार एक्टिंग ने पब्लिक को खूब एंटरटेन किया है। वाकई नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स को ना तो देश की सरहदें बांध सकती हैं, ना उम्र की जंजीरें थाम सकती हैं। दोस्तों आपको याद होगा छोटे पर्दे पर मिर्जा गालिब नाम से एक धारावाहिक आता था जिसने किताबों में बंद मिर्जा गालिब को जिंदा कर दिया था। उस धारावाहिक ने छोटे पर्दे पर गालिब की ऐसी तस्वीर उभारी जो सिनेमाई कम हकीकत ज्यादा लगी थी और ये सब मुमकिन हुआ था उस चेहरे के बलबूते पर जिसका नाम है नसीरुद्दीन शाह।
1: ये दुनिया मुझे छोटी लगती है बेगम, ये दुनिया बाजीचा-ए-अतफाल है दुनिया मेरे आगे।

दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गालिब बनने की नसीर की तमन्ना उनके दिल में एक अधूरे ख्वाब की तरह अटकी हुई थी। सन 1988 में धारावाहिक बनाने से पहले गुलजार साहब गालिब पर एक फिल्म बनाना चाहते थे और उस फिल्म में बतौर गालिब उनकी दिली इच्छा थी संजीव कुमार को लेने की। नसीर साहब ने इस बारे में बताते हुए कहा, मैंने गुलजार भाई को चिट्ठी लिखी और अपने फोटोग्राफ्स भेजे। मैंने लिखा कि

आप ये क्या कर रहे हैं? इस फिल्म में तो आपको मुझे लेना चाहिए था। उन्हीं दिनों की बात है, अभिनेता संजीव कुमार को दिल का दौरा पड़ गया था और सेहत उनका साथ नहीं दे रही थी। फिर उसके बाद गुलजार साहब के दिल में उस रोल के लिए अमिताभ के नाम का ख्याल आया, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी और आखिरकार गालिब पर फिल्म बनाने का प्लान ही ठंडे बस्ते में पड़ गया। शायद उस वक्त गुलजार को भी नहीं मालूम होगा कि इस किरदार पर तो तकदीर ने किसी और का ही नाम लिख दिया है। कई साल बाद गुलजार साहब ने एक दिन नसीर को फोन लगाया। नसीर ने बताया, एक दिन मुझे गुलजार भाई का फोन आया कि सीरियल में काम करोगे? मैंने पूछा कौन सा सीरियल, तो उन्होंने बताया गालिब पर है। मैंने बिना कुछ सोचे फौरन हाँ कर दिया। ये नसीर की पहली ख्वाहिश थी जो देर से ही सही लेकिन पूरी जरूर हुई और उन्होंने गालिब के किरदार को यादगार बना दिया।

नसीर साहब की एक और दिली ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश थी गांधी के रोल को करने की। कहते हैं जब रिचर्ड एटनबरो गांधी फिल्म बना रहे थे तो वो उसके लिए ऑडिशन भी देने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया और रोल मिला बेन किंग्सले को। नसीर की तमन्ना अधूरी ही रह गई। सन 1982 में गांधी के रिलीज होने के 18 साल बाद कमल हासन ने बनाई थी फिल्म हे राम, जिसने नसीर साहब की दूसरी अधूरी तमन्ना को पूरा कर दिया। इस फिल्म में उन्हें गांधी का किरदार निभाने का मौका मिला। सधी हुई अदाकारी और बेजोड़ अंदाज से उन्होंने न केवल गांधी के किरदार में जान डाल दी, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर उनके टक्कर का कोई दूसरा एक्टर बॉलीवुड में नहीं है। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म निशांत से की थी, जिसमें उनके साथ थी स्मिता पाटिल। निशांत एक आर्ट फिल्म थी। ये फिल्म कमाई के हिसाब से तो पीछे रही, पर फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के अभिनय की सबने खूब सराहना की। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मंडी, मोहन जोशी हाजिर हूँ, अर्धसत्य, कथा वगैरह वगैरह कई आर्ट फिल्में की। आइए सुनते हैं अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की फिल्मों के कुछ गाने। ये फिल्म है इजाजत।

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को सन 1987 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को सन 2003 में पद्म भूषण से नवाजा गया। सन 1969 में फिल्म स्पर्श, सन 1984 फिल्म पार, सन 2006 फिल्म इकबाल के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला नसीरुद्दीन शाह को। कुछ पाने

अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 1981 में आई फिल्म आक्रोश के लिए फिल्मफेयर मिला नसीरुद्दीन शाह को। सन 1982 फिल्म चक्र, सन 1984 में फिल्म मासूम के लिए मिला फिल्मफेयर पुरस्कार। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान से भी नवाजा गया।

0: दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, आलेख और प्रस्तुति शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

हम बोल रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

थे वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेंदला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्त संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें नए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धन पालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास

0: विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति।
1: प्रश्न। माननीय सदस्यगण, प्लीज आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज, प्रश्नकाल, प्रश्न नंबर वन, धवन लक्ष्मण भाई पटेल।
2: प्रश्न नंबर एक।
3: प्रश्न संख्या एक। क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा के डिजिटीकरण, परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है? घ ये पहल भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है? और अंग क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
4: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के ढोडिया, कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है?
5: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने प्राण लेलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण दिलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, तो तीसरा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैनुस्क्रिप्ट है। ये मैनुस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा और ये ज्ञान भारत मिशन

0: द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैन्युस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुके हैं और उसमें से 3,74,000 मैन्युस्क्रिप्ट आज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैन्युस्क्रिप्ट होगी तो उसको भी वो सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके प्रति संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
1: माननीय सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह है आप सदन के अंदर साथ चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना तथ्या लेराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
2: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। इस वक्त रात के 10:13 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं काशिफ अहमद की गज़लों को हमारे कार्यक्रम गुलदस्ता में।

अभी आप सुन रहे थे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही में के रिकॉर्डिंग का प्रसारण। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग्स की तरफ और सुनवाते हैं कार्यक्रम रस रंग।

दोस्तों, ये गीत अभी जो आप सुने बहुत ही प्यारा सा गीत था और इसे गाया था अनुराधा पौडवाल ने। इस गीत को लिखा था आसिफ बिजनौरी ने और संगीत गुलाम लिखी थी। आपकी खिदमत में एक और ऐसे ही खूबसूरत गीत मैं पेश कर रहा हूँ।

अभी आप सुन रहे थे एहसास एल्बम का ये प्यारा सा गीत, और इससे पहले आपने सुना था अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में अफसाना एल्बम का बहुत ही प्यारा सा गीत। और इस गीत को गाया था अनुराधा पौडवाल और शंकर महादेवन ने, लिखा था समीर ने और संगीत लुईस शंकर का था।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

अभी आप सुन रहे थे एल्बम सॉन्ग का ये कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, मैंने के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो घड़ी में रात के 10:30 हो चुके हैं। आइए श्रोता हूँ, अब आपको लिए चलते हैं उस कार्यक्रम की तरफ जिसका आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और आप बड़े ही प्यार से आप कहते हैं चित्रपट तराने। तो हिंदी फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सबसे पहले सुनवाएंगे आँखें फिल्म का एक प्यारा सा गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत रवि का है।

अभी आप सुन रहे थे आंखें फिल्म का ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। अब लीजिए सुनिए कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म है दिल आसना है। इस गीत को लिखा है मजरू ने और संगीत आनंद मिलिंद का है।

अभी आप सुन रहे थे दिल आसना है फिल्म का ये प्यारा सा गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। अब लीजिए सुनिए अजूबा फिल्म का गीत जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

इस गीत के साथ ही हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो घड़ी में रात के 10:50 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब एक नज़र डाल लेते हैं कल यानी कि 21 तारीख की कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

5:51 पर आकाशवाणी संकेत धुन, 5:53 पर वंदे मातरम, 5:56 पर आरंभिक उद्घोषणा मंगल धुन, सुबह के 6 बजे हिंदी समाचार, 6:05 पर वंदनवार चिंतन श्री रामचरित मानस संगीत सरिता भूले बिसरे गीत, 7:30 पर नमस्ते रोहतास प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। सुबह के 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से, 8:15 पर देशभक्ति संगीत, 8:20 पर आप सुनेंगे पत्र आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी, 8:45 पर हम आपको सुनाएंगे प्रादेशिक समाचार एवं संदेश आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से, और 9:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

सुबह के 9:10 पर आप सुनेंगे गीत मल्लिका, हिंदी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह के 9:10 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। कल सुबह के 10 आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से, और 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आवाज। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीत लोक माधुरी। 10:45 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग रसधार, और सुबह के 11 आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग, विविध भारती का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह के 11। 12 आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से, और 12:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम यादों की महफिल। दोपहर के 2 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से, 2:05 पर हम आपको सुनवाएंगे इलाकाई खबरें आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से, और 2:10 पर आप सुनेंगे रोजगार सूचना आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से, और 2:15 पर आप सुनेंगे मध्याह्न समाचार आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से, 2:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम सदाबहार नगमे, फिल्मी गीत सखी सहेली और हेलो फरमाइश। शाम के 5 आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से, 5:05 पर हम आपको सुनवाएंगे उद्घोषणा एवं कार्यक्रम विवरण।

5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन, 5:30 पर हम आपको सुनवाएंगे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, शाम के 6 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत, 6:05 पर हम आपको सुनवाएंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन, 6:10 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों और बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। शाम के 6:40 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत, 7:15

पर आप सुनेंगे संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। इसके तहत हम आपको सुनवाएंगे स्थानीय गतिविधियां, साथ ही साथ आप सुनेंगे हिंदी फिल्म के कुछ चुनिंदा नगमे। 7:25 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। 7:50 पर हम आपको सुनवाएंगे विधानमंडल समीक्षा आकाशवाणी के हमारे पटना केंद्र से, और शाम के 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से।

8:15 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। 8:45 पर हम आपको सुनवाएंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। रात के 9 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत का कार्यक्रम लोकधारा। 9:15 पर आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। रात के 10 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आकाशवाणी के हमारे दिल्ली केंद्र से। और 10:15 पे हम आपको सुनवाएंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग रस रंग। रात के 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। 10:55 पर हम आपको सुनवाएंगे अगले दिन का कार्यक्रम विवरण एवं मौसम पूर्वानुमान। रात के 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार। 11:05 पर हम आपको सुनवाएंगे अंग्रेजी समाचार। और 11:10 पर हमारी कल की सभा समाप्त हो जाएगी। तो श्रोताओं, ये थी कल प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की सूची जो कि हमने अभी आपको बताया। तो आप बने रहिए हमारे साथ एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र के साथ। और अब से कुछ ही पलों में यानी कि रात के 11 बजे हम आपको सुनवाएंगे हिंदी समाचार और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार। तो आप बने रहिए हमारे साथ एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र के साथ।

0: संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो

0: संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note today. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the neat paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue.